ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

महला पहला नानक मेरे शरीर का करत है करतवाह दुर्जग फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है सात जो ग्रास संतोख का धर्म गरतवाह तेरे तेरा तुझे देखा जोर या गरतवाह द्वापर रथ तपे का सात गरतवाह कल जुग रथ गण का कूड़ या गैरतवाह।

छूत जट गंडी सत वट ऐ हो जनेऊ जी का है ता पांडे पत ना हो तुटे ना मल लगे ना हो जने ना जाए तन मानस नान का जोगल चले पाए चौकर मल अनाया बै चौके पाए सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण पिया ओ हुआ ओ चढ़ पिया।

खुदा मेरा गिला दी बेदी पाओ बात कर नहीं हर हर की जय राम राजे अंतर कपट विकार है तेरा रोए का की जय हर हर का सब

0: हर भगत हर लीत हर लीत
1: पहला गौ ब्राह्मण का कर लावो गोबर कर न जाय जप माली दान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़े कते बसंत तुर का पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
2: मालिश खाने करे निवाज श्री बगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाज यो न ना पे आवे ओसा कुड़ी रास कूड़ा बापा कूड़ बोल करे आहार संत का डेरा दूर नानक कूड़ा भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण आख्या का कुठा बकरा खाना चौकी फिर किसे न जाना देखे चौका कड्डी का ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा पिटे तन पिटे फेर करे न मन जूठे चुली परे कहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाइए पौड़ी
1: तेरे अंदर सबको
2: देखना दिली ये तू चलाए दाए।

ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9,870 किलोवाट से ताईं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप एंड डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। डिटेल्स कुझु निकिता आहिनि। थोरी देरि में तव्हां हमीशा भगत करम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो, पोइ तव्हां लोकगीत प्रोग्राम तहत अॼु मां लाॾा ॿुधंदा। ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। याद आहे असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कराम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधो।

कलाम साहब के बुजुर्ग आकाशवाणी जी सिंधी सरसाए हिंसर पेश है तबसरो भारत के तजारत ए हुनर वजीर पीयूष गोयल भारत जापान भाईवारे की हिकमत अमली अहमियत उन्हीं के रोशनी मिलो इन अलावा जापानीज व्यापारियों के भारत में वधिक सीड़प ए भाईवारी करण जो सॾु ॾिनो श्री गोयल उत्तर प्रदेश सरकार पारा नई दिल्ली में 18 अगस्त 2026 एक जापानीज मेड़ के सदन आजय में कोठायल डिनर से खिताब कर रहे हो मीटिंग में उत्तर प्रदेश जो वडो वजीर योगी आदित्यनाथ पिण हाजिर हो मेड़ के खिताब कदे श्री गोयल चयो त भारत ए जापान जा पाण में मुझे लगापा एवजी भाईवारी रही है सदन अभिलाषाओं अमन तरक्की ए खुशहाली ते खास करे इंडो पैसिफिक ते बयान जी करायो त यामानाशी प्रेफेक्चर मां मेड़ जी हाजिरी भारत जे सूबन ए इलाकन में वधंदड़ बाहमी भाईवारी जो रिफ्लेक्शन आहे अक्स आहे श्री गोयल चयो त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पारां सत धारा जेके क़ौमी तरक़ी जूं सत धाराऊं आहिनि पैदावार ज़रायत टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचो तवानाई ऐं बचाव ग्रीन ऐं ब्लू इकोनॉमी ऐं भारत जो वधंदड़ शहरी सॉफ्ट पावर सभु उहे इलाइक़ा आहिनि जिते भारत ऐं जापान हिक ॿिए खे हथी ॾेई सघंदा आहिनि हुन चयो त माशीवाद खां अॻिते भाईवारी आलमी वाधारे में मुसलमान भाईवारनि जी निशानी आहे उत्तर प्रदेश के वधंदड़ माशी कुवत के रोशनी में आणंदे श्री गोयल चयो त सूबो प्रधानमंत्री सूबो वॾे वज़ीर श्री योगी आदित्यनाथ जे सरबराही तहत अॼु 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जी इकोनॉमी ॾांहुं अभिलाषी निशान ॾांहुं वधी रहियो आहे हुन चयो त उत्तर प्रदेश जी वसीअ ऐं अभिलाषाई आदमशुमारी सदरंदर गलापो चुरपुर स्किल्ड वर्कफोर्स जापानीज़ टेक्नोलॉजी ऐं इमारत लाइ हिकु मज़बूत प्लेटफॉर्म खे मुयसर कराइनि जो भारत खे नौजवान कम कंदड़ वर्कफोर्स आहे ऐं फैलजंदड़ मार्केट पिणु आहे सोई भारत जापान सालानी समिट जेका दिल्ली में जुलाई 2026 में थी तंहिंजो हवालो ॾींदे श्री गोयल रोशनी में आंदो त हिकमत अमली अभिलाषा जेका लाभापनि ते दारोमदार रखे थी तंहिंमें जापान जो मक़सदु आहे भारत में ईंदड़ ॾहाके दौरान 10 ट्रिलियन येन जी सीड़प करणु हुन चयो त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमी कंडक्टर क्रिटिकल मिनरल्स बैटरी तवानाई ऐं ईंदड़ पीढ़ी जे मोबिलिटी में सीड़प तंहिं सां ॿिन्ही इक़्तिसादतनि खे मुस्कम में अहम रोल अदा करण लाइ मिलंदो श्री गोयल चयो त वधंदड़ भारत जापान भाईवारी अॻु में हक़ीक़त में ॾिसण में अची रही आहे पंहिंजो हुन मिसाल ॾिनो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट तंहिंखां अलावा जापान जी इमदाद ते दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु चेन्नई में मेट्रो सिस्टम्स इन खां अलावा 8 सूबनि में 11 जापानीज़ हुनरी शहर हुन ॿुधायो छा करे त 1400 खां वधीक जापानीज़ कंपनियूं अॼु भारत में कमु करे रहियूं आहिनि तंहिंमें घर घर में मशहूर नालैंड सुज़ुकी टोयोटा ऐं होंडा मोबिलिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी नालो मशहूरु आहे होना इंजीनियरिंग

में हिताची एमएस सुबिशी जद बितरफ व्यापार साल माली साल 2025-26 में 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहो और जापान भारत जो पंजो नंबर वडे में वडो सिंधी पड़ेसी रत में वेवार मुल्क है तेम पतो तो पे कि माशी लागापन के बधाने जी अजाज जो स्कोप मौजूद है जापान जी फिलोसॉफी कैसन की रोशनी मिलने श्री गोयल चाहत भारत साही उत्साह से अगत वी रो है भारत व्यापार के सवलो किया है बुनियादी ढांचे के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीमोडल लॉजिस्टिक तमाम घणो वो है और भारत जैपनीज बोली के कत के पढ़ा रो है तैसा सिलप लाए तरक्की लाए एक बेहतरीन माहौल तैयार थी रो है तो उत्तर प्रदेश जो भारत जो टो नंबर वसी इक्तसादी सूबो है तंखे 9 मिलियन का भी एमएसएमईज रवानगी में 5 नंबर वे में वो सूबो है ध्यान से कर काफी इदारा जड़ो के स्कॉट्स कुबोता सीको एडवांस अग में सूबे के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में योगदान दे रहे हैं रोशनी में आंदो तो जेवार आर्मी हवाई अड्डो यमुना एक्सप्रेस वे अलावा जेएससीए सपोर्ट से वेस्टर्न डेडिकेट फ्राइट कॉरिडोर इनके अलावा 27 हुनरी क्लस्टर्स ए इकोसिस्टम जो बचा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में कम कर रहे हैं से उत्तर प्रदेश के ताकत के पदरों था कन इनमें जापान की ऊनी भाईवारी है श्री गोयल बुधाया था 24-27 अगस्त 2026 दरमियान जापान की यात्रा ते वेंदो जिते वो सरकार के वसी समिति ते गालियों कंदो तो खास हिकमत अमली ए आलमी भाईवारी के जेका भारत ने जापान मान जाए तंहिंखे वधीक पुख्तो मनाए वञे बिन मुल्कन मंझ सभ्यता लागापन के रोशनी आणंदे श्री गोयल ध्यान च कर तो भारत ए जापान मंझ इतिहासिक गांढापा बुध जी सिख्या खां वठी करे आहिनि जापानीज वापरनि खे नींढ ॾिनी त भारत उत्तर प्रदेश में तव्हां सीड़प कयो तंहिंखे तरक़ीअ जो मर्कज़ बणायो गॾोगॾु जापानीज इनोवेशन खे इनोवेशन जो मर्कज़ बणायो जेको आलम भर में इंडो पैसिफिक में पंहिंजो योगदान ॾींदो तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ।

हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हिंदर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। अॼु सिंगापुर में भारत सिंगापुर वज़रात राउंड टेबल जो चौथो राउंड शुरू थींदो। अॼु नई दिल्ली में बचाव वज़ीर श्री राजनाथ सिंह पंहिंजे जापानीज़ सानी शिंज़िरो कोज़ुमे सां तरफ़ी गॾिजाणी कंदो। 35 सालनि जे लंबे विछोटी खां पोइ बांग्लादेश पंहिंजियूं सदर जूं चूंडूं अॼु कराईंदो। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर मर्कज़ ऐं जम्मू ऐं कश्मीर सरकार पारां यूनियन टेरिटरी में सुरक्षा हालतुनि खे बहितरीन बणाइण लाइ सदन साराह कई आहे। बैडमिंटन में इंडियन शटलर्स अॼु नई दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्री क्वार्टर फाइनल्स में अॼु पंहिंजो मुक़ाबिलो कंदा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे. वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो यानी की भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे. तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई कर.

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबर्ग साइड तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved five projects worth over 13,000 crore rupees, including four railway and one highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared four multi-tracking projects of railways covering eight districts across four states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
1: Five
3: major decisions have been taken. The first four projects are related to the railways, while the fifth is a highway project. The first four railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The fifth project is the construction of a four-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
1: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet mein approved kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of the National Highway 22 in Bihar to a four-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. The Ministry of Education has informed that the last date for online registration for Yuva Sangam Phase 7 has been extended till the 31st of this month. The Ministry said that the extension will provide an additional opportunity to eligible youth from across the country to register and participate in this unique youth exchange program. Earlier, the last date to register for Yuva Sangam Phase 7 was 18th of August. Interested youth aged between 18 to 30 years, including students of higher education institutions, NSS volunteers and young professionals, can register through the official Yuva Sangam portal. For Yuva Sangam Phase 7, 20 higher education institutions including IITs, IIMs, Central Universities and NITs have been identified as nodal institutions to host and facilitate the exchange program. Defence Minister Rajnath Singh will hold a bilateral meeting with the Defence Minister of Japan, Shinjiro Koizumi, in New Delhi today. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region. The two ministers will exchange views on deeper maritime security cooperation and closer defence equipment and technology collaboration under the Make in India framework. Defence Ministry said that the meeting provides an opportunity to provide a roadmap for further advancing bilateral defence and security cooperation. On his maiden visit to India, Shinjiro Koizumi visited the Western Naval Command in Mumbai yesterday, where he held discussions with the Chief of the Naval Staff, Admiral Krishna Swaminathan, and Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Sanjay Vatsyayan. The fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable will be held in Singapore today. The participating ministers from the Indian side are Finance Minister Nirmala Sitharaman, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Commerce, Industry, Electronics and IT Jitin Prasad. The mechanism of the India-Singapore Ministerial Roundtable is an important platform to drive cooperation, including in new and emerging areas. Its inaugural meeting was held in New Delhi in September 2022, followed by the second meeting in Singapore in August 2024 and the third meeting in New Delhi in August 2025. Bangladesh will hold its presidential election today, with lawmakers set to choose between the ruling BNP stalwart Mirza Fakhrul Islam Alamgir and 11-party opposition alliance candidate Colonel Oli Ehmat. The voting will take place for the first time in a presidential election after a gap of 35 years. The voting will be held at the Parliament, Jatiya Shamshad, from 2 p.m. to 5 p.m. today. In badminton, Indian shuttlers will be in action on the pre-quarterfinals day of the BWF World Championships at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi. Indian ace and former world champion PV Sindhu will lock horns with third seed Wang Jiyi of China in the women's singles. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संगीतिका में शालिनी त्रिपाठी के भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका में शालिनी त्रिपाठी के भजन, और इनके साथ थे मीरा चक्रवर्ती के भी भजन। आपके साथ संगत दे रहे थे हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर दानिश असलम और तबले पर थे पशुपतिनाथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग।

तो सुबह सुबह रेडियो की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज की सुबह जरा ठहर कर नहीं, थोड़ा झूम कर, थोड़ा मुस्कुरा कर और पूरी ताजगी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज निकलने का नाम नहीं होता। सुबह वो एहसास है जब खिड़की से आती रोशनी कहती है, चलो आज ना फिर कुछ अच्छा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। तो जरा चाय की पहली चुस्की संभालिए गुरु, चेहरे पर मुस्कान लाइए और आवाज का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आज के गीतों में है सुबह की चमक भी और दिल की धड़कन भी और मूड को एकदम फ्रेश कर देने वाली मिठास भी। कहते हैं ना, दिन कैसा जाएगा ये सुबह तय नहीं करती, लेकिन सुबह को खूबसूरत बना लिया जाए तो दिन अपने आप खूबसूरत लगने लगता है। और इसी खूबसूरत शुरुआत के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें प्यार भी है, शरारत भी और सुबह जैसी खिलखिलाहट भी। लीजिए दोस्तों, आप ही के नाम ये प्यारा सा गीत।

क्या बात है दोस्तों, ऐसे गीत के बाद सुबह थोड़ी और रंगीन तो हो ही जाती है। और अगर आपकी सुबह अभी अभी शुरू हुई है तो जरा अपने आसपास देखिए, कहीं ट्रेन की आवाज है, कहीं सड़क पर निकलती पहली गाड़ियां हैं, कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी और कहीं रसोई से आती चाय की खुशबू। यानी शहर अभी पूरी तरह जगा भी नहीं है, लेकिन जिंदगी ने अपना पहला पन्ना खोल दिया है। सुबह की सबसे खूबसूरत बात यही है, कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का पन्ना बिल्कुल नया है। तो पुराने हिसाब किताब थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए, आज किसी को देखकर मुस्कुराइए, किसी अपने को बिना वजह फोन कीजिए और खुद से भी कहिए, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होने वाला है। और अब एक गीत जो इस भरोसे को और मजबूत कर देगा।

क्या बात है दोस्तों, कभी कभी कोई गीत कानों से नहीं सीधे मन से सुना जाता है और सुबह का संगीत भी कुछ ऐसा ही है। ये हमें जगाता कम है, हमारे भीतर की ऊर्जा को ज्यादा जगा देता है। तो जिनकी आंखें अभी पूरी तरह खुली नहीं है, उनके लिए ये अगला गीत एक छोटी सी म्यूजिकल कॉफी है, और जिनका मूड पहले से शानदार है उनके लिए रही उस मूड पर एक और प्यारी सी मुस्कान।

अब जिंदगी में थोड़ी रफ्तार पकड़ ली है और सुबह भी थोड़ी हसीन हो गई है। वैसे सुबह की भागदौड़ में एक बात हम अक्सर भूल जाते हैं, हम दिन भर का सबका ख्याल रखते हैं लेकिन अपने मूड का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, काम कितना भी हो चेहरे की मुस्कान को ओवर टाइम नहीं करवाना है। ट्रैफिक मिलेगा, काम मिलेगा, फोन की घंटियां मिलेंगी, कभी कोई नाराज भी होगा लेकिन हम कहेंगे भाई पहले सुबह तो अच्छी हो जाने दो। और इसी हल्के फुल्के अंदाज में ये लीजिए एक और भरोसा की।

तो श्रोताओं, मुझे उम्मीद है आपको ये गीत भी बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ गीत सचमुच पंख लगा देते हैं। और अब जरा उन श्रोताओं की तरफ चलते हैं जो इस वक्त अपने घर से निकल चुके हैं। कोई ऑफिस की ओर जा रहा है, कोई दुकान खोलने की तैयारी में है, कोई बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा है, और कुछ शायद चुपचाप खिड़की के पास बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं। आप जहां भी हैं, आज की सुबह में हमारी तरफ से एक प्यारी सी मुस्कान आपके नाम, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी चीजों से नहीं, अक्सर इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से खूबसूरत बनती है। एक गर्म चाय, मनपसंद गीत, किसी अपने का सुप्रभात और कुछ पल अपने लिए, बस इतनी सी तो जरूरत है दिल को खुश रखने की।

आइए, मैं हूँ आपके अपनी दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह में हमने मिलाए थोड़े गीत, थोड़ी बातें और थोड़ी सी शरारत थी सरिता की। अब अगली मुलाकात तक के लिए अपने दिन को बेहतरीन बनाइए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और खुद को मुस्कुराने की वजह जरूर दीजिए। इसी बात के साथ, हर सुबह सूरज नहीं लाता, कुछ समय उम्मीद भी लेकर आती है। इसी खूबसूरत उम्मीद के साथ सुनते हैं आज के इस सुबह का ये अंतिम गीत। सुनते रहिए ये गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: यह प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों

0: और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4 संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4 संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद BNP के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केवंझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
6: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमरीकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिन्दुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।

0: Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टलफेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के 4 और शाहराहों का 1 प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर कयादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के 4 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रूपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को 4 लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जनूबी जोनल काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवालम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वज़राए आला और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जज़ायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में 6 वज़राए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वजीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वजीर आला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वजीर आला रंगासामी शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकतदारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसायल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाजात समेत कई अहम मौजूदात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR

शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सौरभ बनोथा का बांसुरी वादन, राग था नट भैरव। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे थे जितेंद्र स्वाइन। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
1: हम सब जानते हैं कि भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और देश के आर्थिक विकास में रोजगार की उपलब्धता में इस स्कीम का बहुत फायदा भी दिख रहा है। इसके लिए विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो या CSIR हो। इन लोगों ने रिसर्च एंड इनोवेशन के द्वारा स्टार्टअप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सुविधाएं दी है। अटल इनोवेशन मिशन एक बहुत बड़ी योजना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी चर्चा हो रही है, बहुत जगह यूज हो रहा है, तो नवाचार और विज्ञान संचार के लिए किस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके लिए जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस तरह से कारगर हो सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित है अनुराग पांडे। अनुराग पांडे जी DST के ITBI अटल इनोवेशन मिशन आदि से जुड़े रहे हैं। अनुराग पांडे जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: अनुराग जी, सबसे पहले हमें बताइए कि जो विज्ञान है, तकनीक है, तो स्टार्टअप और उद्यमिता की यात्रा में जो आपने शुरुआत की है वो कैसे शुरू की, किस तरह के अनुभव लिए, किस तरह से आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं?
2: मैंने अपनी जर्नी शुरू करी 15 साल पहले, जब मैं IIT यूजर एक्सपीरियंस कोर्स कर रहा था, तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस इकोसिस्टम में बहुत चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स तक ही नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, और स्टूडेंट आजकल सिर्फ लिमिटेड नहीं है अपनी प्लेसमेंट्स को लेके या किसी एक करियर पाथ को लेके, वो मल्टीपल डाइवर्स चीजों पे देख रहा है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का जन्म भी हुआ। तो मैं जब वहां पे था और मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ बिजनेस आइडियाज पे जब मैं काम कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि IIT के अंदर रहते हुए भी काफी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या फिर काफी ऐसी पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, जो हमें पता नहीं लग पा रही हैं या हमें बताया नहीं जा पा रहा है, कोई नेटवर्क या चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने तब से ही मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि क्यों नहीं कि मैं खुद ही डीप डाउन जाके इसको समझूं और इसे जानूं। उसके बाद मैंने काफी स्टार्टअप्स में अपना लक आजमाया है। मैं डीप टेक में स्टार्टअप कर चुका हूं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, ट्रेवल टेक्नोलॉजी में, और कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी मैंने काम किया है उनके स्टार्टअप को डेवलप करने में, इन्हीं फील्ड्स में। साथ ही साथ मैंने पैरेलली अपने वेंचर्स भी बिल्ड किए हैं और वो अभी भी रनिंग कंडीशन में ही है, उनको फंडिंग भी मिला, अच्छा स्केल भी करे, बट कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से अलाइनमेंट टूटता ही रहा, कभी भी गवर्नमेंट से स्कीम अलाइनमेंट नहीं हो पाया मेरे इनिशिएटिव्स पे। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करते हैं। तब मैंने सबसे पहले एक बार अप्लाई किया था स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो हरियाणा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और उसमें मैं एज अ इकोसिस्टम मैनेजर सेलेक्ट हुआ। मेरे को फरीदाबाद रीजन दिया गया, वहां पे 4 कॉलेजेस दिए गए और पूरा इकोसिस्टम दिया गया फरीदाबाद का। तब मैं पहली बार गवर्नमेंट की पॉलिसी से रूबरू हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ उनकी पॉलिसी देखता था, उनको रिपोर्ट करता था, और सेंट्रल बॉडीज जो हमारी चंडीगढ़ में बैठती थी उनको देखता था। तो उससे मेरे को पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो बहुत ही लोकल स्टेट लेवल स्कीम थी। फिर मुझे लगा कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को भी देखना चाहिए, परखना चाहिए। और साथ ही साथ तब मैं नीति आयोग में सिलेक्ट हो गया था एज अ रीजनल मेंटर ऑफ चेंज, तो मैं काफी स्कूल नेटवर्क्स के साथ काम करता था, मेरे को फीचर भी किया गया नीति आयोग के मैगजीन में अच्छे वर्क के लिए। तब फिर मुझे मोटिवेशन आया, मैंने DST का एक ओपन रोल था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, उसमें मैंने अप्लाई किया और फिर मैं सिलेक्ट हुआ। और फिर मैंने पॉलिसी मेकिंग से लेके फंडिंग से लेके सारे टर्मिनोलॉजी सब मैंने खुद डिफाइन करी, बनाई और उस पर काम करवाया। तब जाके फिर मैंने आउटपुट भी देखा उसका 1.5 साल तक। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, जितना शायद मैं कभी सीख नहीं सकता था उतना मैंने उस जॉब में, उस पोजीशन में सीखा। तब से मैं इस इकोसिस्टम का बहुत क्लोज पार्ट हूँ।
1: आपने बताया कि आप DST के ITBI के CEO के रूप में भी आपने काम किया है, तो ये जो DST ITBI क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
2: DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक विभाग है, उसके अंदर आता है इंक्लूसिव टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर, एक स्कीम है, निधि स्कीम के अंदर आता है। निधि के अंदर और भी बकायदा स्कीम्स हैं, तो इस स्कीम्स के अंदर मुझे एज ए CEO अपॉइंट किया गया। जैसे कि हर एक स्कीम अपने एक बजट दायरे में रहती है, हमारे पास भी कुछ करोड़ का बजट था जिसको हमें स्टार्टअप में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और साथ ही साथ मुझे बाकी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की थी, एमएसएमई की स्कीम हो गए, निधि की और भी स्कीम्स, फिर साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इन स्कीम्स में भी काम करने का मौका मिला। बट अगर मैं डीएसटी की स्पेसिफिक बात करूं, डीएसटी टीबीआई की बात करूं, तो ये एक आइडिएशन स्टेज का एक ग्रांट है जो कि आपको एज एन इनोवेटर, अगर आप कोई इनोवेशन पे काम करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई आविष्कार करते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे फंड कर सकती है 5 से 10 लाख रुपए, और अगर आप स्टार्टअप बनाते हैं तो भी आपको फंड मिल सकता है इससे बड़े अमाउंट का, ताकि आप अपने स्टार्टअप को एक रिसर्च लेवल तक ले जा सके या उसको एक मार्केट रेडी प्रोटोटाइप तक बना सके। मतलब आपके सोच आइडिया को ही गवर्नमेंट फंड करती है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है जिसका आपने प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, तो आप स्कीम में ऑल ओवर इंडिया जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं उनमें आप अप्लाई करके स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
1: दो बातें आती है, एक तो होता है कि जैसे आपने विचार की बात किया आइडिया की, तो आइडिया को एक मूर्त रूप देने में स्टार्टअप बदलने की प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा, कई बार स्टार्टअप असफल हो जाते हैं, उसके कारण क्या होते हैं।
2: एक आइडिया आपका थॉट है जो आपके मन में विचार आए, विचार तो हमारे दिमाग में बहुत तरीके से घूमते हैं, उनमें से कोई ऐसा विचार जो आपको लगता है जिससे आप मनी को सर्कुलेट कर सकते हो, पैसा को सर्कुलेट कर सकते हो और लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो अलग स्टेजेस में, ताकि एक्सपैंड हो सकती है पूरी इंजन बोल सकते हो आप इसको, एक इंजन बना सकते हैं, तो वो एक स्टार्टअप बन जाता है। अगर वो आइडिया ही रहेगा तो सिर्फ एक ईंधन बन के रह जाएगा, ये एक फ्यूल बन के रह सकता है, लेकिन अगर आपने उसके आसपास बॉडी लगा दी, चक्के लगा दिए, तो वो एक व्हीकल बन गया, वो एक स्टार्टअप बन गया। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आइडियाज एंड गुड टीम मेंबर एंड वंडरफुल इकोसिस्टम विल मेक अ वेरी गुड आइडिया टू अ स्टार्टअप स्टेट। मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल दिया है तो उसी से समझाता हूँ। जिस प्रकार से उस गाड़ी में बहुत चीजों का रोल होता है, एक तो ड्राइवर होता है, एक फ्यूल ठीक से डालना होता है, उसमें सारे पार्ट्स का सही मेंटेनेंस होना चाहिए, और ऊपर से गाड़ी अगर तेज भाग रही है तो उसमें अलग मेंटेनेंस चीजें लगेंगी, तो उसी तरीके के हर स्टेज पे स्टार्टअप को सही मात्रा में सपोर्ट मिलना चाहिए।
1: सही मात्रा मतलब क्या हुआ, किस किस तरह की सपोर्ट चाहिए? जैसे गवर्नमेंट तो ने अपने विभागों के द्वारा इंक्यूबेशन पीरियड एक रखा है, लेकिन इसके अलावा एक व्यक्ति के टीम में किस तरह की योग्यता होनी चाहिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या उपाय रखने चाहिए?
2: जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अलग अलग स्टेजेस पे गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है। सबसे पहले तो आइडिया स्टेज पे हम बात करते हैं। अगर आपके पास बस आइडिया है, आप चाहते हैं इसको एक स्टार्टअप में चेंज करना, तो सबसे पहले आपको एक टीम रखनी होगी जो बहुत स्ट्रांग अलग अलग एरियाज में काम कर रही होगी। ऐसा नहीं हो कि एक ही एरिया पे तीन लोग काम कर रहे हैं। बहुत स्पेसिफिक टीम बनाइए, इक्विटी डिविजन करिए, बीच में हिस्सेदारी रखिए, और उसी के साथ साथ फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस नीश में पोजीशन कर रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, नीश एंड पोजीशनिंग। स्टार्टअप बोलते हैं कि हम आएंगे और हम कोई भी एक चीज को बेच देंगे, एडवर्टाइज कर देंगे और ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इनोवेशन की आपने बात ही नहीं करी है। यही चीज को आप इनोवेटिव तरीके से बताते तो एक स्टार्टअप कहलाता। तो उसी तरीके से आपको हर एक तरीके से इसको इनोवेशन को समझना होगा और उसको टीम में डिवाइड करना होगा। और जहां तक बात आती है फंड की, देखिए वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक तरीका है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, एक नॉन डायल्यूटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपके शेयर्स डायल्यूट ना हो और आपको पैसा मिल जाए। ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स या सीएसआर स्कीम्स या कॉम्पिटिशन्स होते हैं मार्केट में, आप पहले वो एक्सप्लोर करिए ताकि आपके शेयर ज्यादा लूज ना हो और आप एक स्टेज तक पहुंच जाए, फिर आप उसमें फंडिंग लीजिए। बहुत इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल भी हैं, इंडियन भी हैं, जो आपको पैसा देके उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए। अब वो पैसा देंगी तो आपसे पैसा वापस लेके उसको मॉडिफाई कर सकती है। तो यही प्रक्रिया है, बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। आप एक बार एक स्टार्टअप करेंगे, जल्दी फेल होंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। हम कहते हैं फेल क्विकली टू लर्न क्विकली इन दिस इकोसिस्टम।
1: इसीलिए शायद आजकल कहा गया है कि जो छात्र अपनी डिग्री लेते हैं तो शुरुआत नौकरी के स्टार्टअप से होनी चाहिए, ताकि वहाँ उन्हें सीखने को अधिक से अधिक मिलता है। आपके बातों से जैसे हमें समझ में आया कि स्टार्टअप के लिए सहयोग बड़ी जरूरी है, खास करके सरकारी संस्थाओं में, उद्योगों में, और जो अपने निजी निवेशक हैं उन सब के बीच में तभी विकास होगा। जो युवा इनोवेटर्स किस तरह से फंडिंग अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सकते हैं?
2: सबसे पहले जरूरी है कि आप समझिए कि आपकी जरूरत किस चीज में है, राइट? अगर आप सबसे पहले आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि इंडियन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है, तो इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग आप उस मार्केट को देखिए जहाँ पे वो सारा का सारा टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाए। अगर वो मार्केट जो है या टारगेट ऑडियंस है वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू बाउंड है, बहुत टाइम ऐसा होता है इंडिया में या कोई भी नेशन में, बहुत सारे ऑडियंस एक गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इसी तरीके से डिवाइड किया है। ऑब्वियसली बात है, खाली तो वो पब्लिक में तो फंड्स देती नहीं है या पब्लिक में तो सर्विसेज देती नहीं है, कोई स्पेसिफिक अर्बन एरिया है तो वहां पे

0: उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, वहां पर रोड बनाई है, उसके हिसाब से सर्विसेज चीजें दी हैं, तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस क्या है, जिसको क्रैक करने के बाद आप उन ऑडियंस को, अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वो पता लगाने के बाद आप उस गवर्नमेंट बॉडीज को जाके अप्रोच करिए, उनको अपने प्रोपोजिशन को समझाइए, वो खुद ही आपको अलाइन कर देंगे कि ये सही एरियाज है जहां पे आप आगे गवर्नमेंट की स्कीम, सब्सिडीज, चैलेंजेस, एमएसएमई स्कीम या सीएसआर फंड का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इतना अच्छा सक्सेस रेट है गवर्नमेंट पॉलिसीज का कि अगर आप सही जगह पे करते हैं तो वो खुद एक्सेप्ट करते हैं आपको और खुद आपको मेंटर करके इन कर लेते हैं ग्रांट में। इंक्यूबेटर्स का देखिए काम क्या था, इंक्यूबेटर्स फंड डिस्पर्स करने के लिए बनाए गए थे। इनको बोला गया था कि आप स्टार्टअप को सिखाइए, समझाइए, फिर उस ग्रांट को दीजिए, तो पूरे तैयार है उसके लिए, बट आप सही तरीके से सही जगह पहुंचना जरूरी है हमें, नहीं तो आप गलत दरवाजे पे अगर आप नॉक करेंगे
1: निश्चित रूप गलत जगह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने बात की जो एक तो अटल इनोवेशन मिशन सेंटर था और आपने नीति आयोग में भी कहा मेंटर फॉर चेंज की बात होती है, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, इनोवेशन में उनकी रुचि किस तरफ बढ़ी है?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगा एकेडमिशियंस और जितने भी टीचर्स या रिसर्चर्स हैं कि आप जब भी कोई पेटेंट बनाएं या कोई भी चीजों के बारे में आप इनोवेशन करना चाहें तो सबसे पहले किसी इंडस्ट्री बॉडी से आप कंसल्ट जरूर करिए ताकि आपको पता चले इसका कमर्शियल एंगल क्या है। मैंने शारदा यूनिवर्सिटी में काम किया है, मैंने जब उनकी पेटेंट लिस्ट देखी, ऑल्दो दे आर मेजर फाइलर ऑफ अ पेटेंट, बहुत सारे पेटेंट फाइल करते हैं वो यूनिवर्सिटी के तौर पे, बट कोई भी पेटेंट मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ जो कमर्शियलाइजेशन के एंगल पे जा सकता है। फिर भी मैंने 10 पेटेंट ऐसे सेलेक्ट किए जिनको मैं थोड़ा गाइड करके भेज सकूं, बट वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है कि बस प्रोफेसर्स पेटेंट बनाना तो जानते हैं बट उसको जब कमर्शियलाइजेशन की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कमर्शियल करेंगे तो शायद खामियां निकल आएंगी और वहां के भी नहीं रह जाएंगे। मेरी अब संस्था है, इनका यही काम है बेसिकली कि आपको सही ग्रांट्स के प्रति अवेयर कराया जाए, सही नॉन डायल्यूटिव कैपिटल फंड्स के बारे में अवेयर किया जाए, चाहे वो कॉम्पिटिशन है, चाहे वो एक एमएसएमई का स्कीम है, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट का फंड है, वो सब चीजों के बारे में सही तरीके से एआई की मदद से अलाइन किया जाए ताकि आप समझ जाए कि ये चार एरिया है जहां पे आपको फिट हो रहा है, वो सही डोर आपको मिल जाए, फिर आप जाके उधर नॉक करिए और आपको जरूर एंट्री मिले वहां पे। तो यही मेरा मकसद है और यही हम एआई के थ्रू कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म।
1: मतलब आप लोग जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आप रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं,
0: सही रास्ता। और मैं कहना चाहूंगा कि एआई के तहत एक बिल्कुल निष्पक्ष, मतलब कोई भी कंटेमिनेशन नहीं, बिल्कुल जो एक्चुअल है वही रास्ता दिख रहा है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है उसमें। ह्यूमन इंटरवेंशन बाद में आएगी, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जो आपको हैंड होल्ड भी करके वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहला रास्ता एआई के थ्रू आप देखेंगे, साफ सीधा रास्ता जिस पे आप चल सकते हैं।
1: चलिए बहुत अच्छा, आपने एक बात की कि लोगों को जानकारी नहीं होती है सही सही, ऐसी स्थिति में जरूरी होता है वैज्ञानिक जागरूकता की,
0: बिल्कुल,
1: और लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की बात होती है। आपने खुद भी विज्ञान संचार के क्षेत्र में काम किया, साइंस राइटिंग की है, तो सुनने वालों को बताइए कि आपकी नजर में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं आम जनता तक पहुंचाना सरल भाषा में क्यों जरूरी है?
0: बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं जिस तरीके के इनोवेशंस को या फिर वैज्ञानिक रिसर्च को देखता हूं, ठीक है, आप मानेंगे नहीं, कंपनीज इन चीजों के लिए बहुत पैसा खर्च करती है इन्हीं रिसर्च को सही तरीके से समझने में और इसको खुद के तरीके से करने में। एक R&D का बजट ही होता है हमारा जो 20-30% हमारी कंपनी का जाता है उसमें। अब आप सोचिए कंपनी 20-30% मिनिमम अगर R&D में खर्च कर रही है तो आप समझिए कितना इम्पोर्टेंट एरिया होगा वो। एक इंसान के लिए भी रिसर्च को जानना अपने लिए ही नहीं, सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने विकास के लिए बहुत जरूरी है और इसके लिए उसको समय समय पर ऐसे जो चैनल्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो माध्यम है और ये लोगों को जानकारी मिलती रहेगी, आप ऐसे लोगों को बुलाते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एआई की मदद से जरूर इसके प्रति जानना चाहिए कि आपके लिए क्या सही रास्ता है और ऐसे प्रोग्राम जहां पे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग विभागों से आके कुछ बता रहे हैं अपने विभाग के बारे में उसको जरूर सुन के प्रचारक भी बनना चाहिए उसका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ हम यूज करते हैं क्योंकि जब तक आप टेक्नोलॉजी को साइंस के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे और आप भी एक प्रचारक की तरह काम नहीं करेंगे वो वहीं नीचे ही दबा रहेगा वो चीज।
1: निश्चित रूप से यही जो एक विज्ञान संचारक और प्रसारक की जो है उत्तरदायित्व तो होता है और आकाशवाणी इसमें अपने शुरुआत से ही काफी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है और इसी के कारण हमारे यहाँ डेडिकेटेड साइंस सेल्स है हर स्टेशन पे हर जगह जो विज्ञान की समझ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास और साथ ही साथ लोगों तक सरल भाषा में शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि आदि की बातों को पहुंचाने का काम करता रहा है जिसके तहत हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अनुराग पांडे जी।

0: अभी आप प्रोग्राम सुबुगाही के तहत ये भजन सुन रहे थे। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी है। पेश है आज सवेरे
1: और कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज होती हैं रेनू जैसे, लेकिन हमें पता ही है, लेकिन कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास की दिशा बदल देती हैं। 20 अगस्त भी ऐसी ही एक तारीख है, तो श्रोताओं को बताते हैं आज के दिन क्या कुछ खास रहा। 1828 में आज ही के दिन राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में एकेश्वरवादी उपासना की सभा शुरू की, जिसे ब्रह्म समाज आंदोलन की औपचारिक शुरुआत माना जाता है
2: जी।
1: और आगे बढ़े तो इस तारीख से जुड़ी एक ऐसी खोज है जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाने की दिशा में रास्ता खोला। 1897 को ब्रिटिश चिकित्सक सर रेनॉल्ड्स रॉस ने कलकत्ता में अपने शोध के दौरान मच्छर के भीतर मलेरिया परजीवी की मौजूदगी का महत्वपूर्ण प्रमाण पाया था। और इन्हें बता दूं कि इसी काम के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
2: वेरी ट्रू वैष्णवी, इन द ईयर 1857 ऑन दिस डे फिजिशियन सर रेनॉल्ड्स रॉस आइडेंटिफाइड द एनोफिलीस मॉस्किटो द कॉज ऑफ मलेरिया व्हाइल वर्किंग एट द प्रेसिडेंसी General Hospital in Calcutta, which is now Kolkata. This day is now known as the World Mosquito Day in celebration of this important discovery. बहुत बहुत ही एक important discovery थी, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि malaria कितनी बड़ी एक बीमारी है।
1: आने वाले समय में बिल्कुल यही मौसम शुरू हो जाता है मच्छरों का।
2: जी बिल्कुल, सो हम सबको बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस इज टूडे इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे, तो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं वो जरूर ध्यान दें कि उनके घर के आसपास कहीं पानी ना इकट्ठा हो, या पानी में आप कोई ऐसी दवाई छिड़क दें जिससे कि जो मस्किटोज अपने लार्वा या कुछ छोड़ते हैं तो वो वहां पर खत्म हो जाए।
1: बल्कि बाहर बच्चों को भी भेजे तो वो भी ध्यान रहे कि कहीं गंद जगह में तो नहीं जा रहे हैं।
2: प्लीज मेक श्योर दैट दे आर वेयरिंग फुल

0: जींस और पूरे पैंट्स और ट्राउजर्स पहन के बच्चे बाहर जाएं खेलने के लिए इस मौसम में जरूर।
1: बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, 1921 में आज ही के दिन केरल के मालाबार क्षेत्र में विघटनक्रम शुरू हुआ जिसने आगे चलकर मालाबार या मोपला विद्रोह का रूप लिया था। प्राचीन भारत के इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझने वाले इतिहासकार प्रोफेसर रामशरण शर्मा को भी आज हम याद कर रहे हैं। उनकी किताबें एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया और इंडियाज एंशिएंट पास्ट इतिहास के विद्यार्थियों के बीच विशेष रूप से चर्चित रही। उन्हें विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े पुरस्कार और एचके बरपुजारी पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले हैं। ओडिशा साहित्य की दुनिया में जिनका नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है वे हैं गोपीनाथ मोहंती। आज गोपीनाथ मोहंती की पुण्यतिथि है। उनके उपन्यास अमृतर संतान और दाना पानी जैसी रचनाओं ने ओडिया साहित्य को नई पहचान दी। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण सहित कई सम्मान मिले हैं। वे 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले शुरुआती प्रमुख ओडिया लेखकों में भी शामिल थे। पथ पर चलते रहो निरंतर, सूनापन हो या निर्जन हो, पथ पुकारता है गत स्वप्न हो पथिक, चरण ध्वनि से दो उत्तर, पथ पर चलते रहो निरंतर। इन पंक्तियों के रचनाकार थे हिंदी के प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री। यहां वे कहते हैं कि रास्ता चाहे कितना भी सोना या कठिन क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। पथ की पुकार का उत्तर हमारे कदमों की आहट से ही मिलनी चाहिए, यानी जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो आगे बढ़ते रहना ही हमारा रास्ता है। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म आज ही के दिन 1917 को हुआ था। उनका मूल नाम वैसे तो वासुदेव सिंह था। सहज भाषा में आम जीवन, गांव और मानवीय संवेदनाओं को कविता में उतारने वाले त्रिलोचन की प्रमुख कृतियों में ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ और अर्घन शामिल है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मानों से नवाजा गया। उनकी कविताओं में जीवन की सच्चाई भी है और लगातार आगे बढ़ते रहने का हौसला भी। और आगे बढ़ते हैं, भारत के आईटी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने वाले उद्यमी एनआर नारायण मूर्ति का आज जन्मदिन है। नारायण मूर्ति ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की और उसे दुनिया के प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और फ्रांस का लीजियन डी ऑनर जैसे सम्मान भी मिले। और आगे बढ़ते हैं, अब बॉलीवुड के इस दौर को याद कीजिए श्रोताओं, जब बाल कलाकार भी अपनी मासूमियत और अभिनय से पर्दे पर गहरी छाप छोड़ दिया करते थे। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली बाल कलाकार थी कुमारी नाज, जिन्हें पर्दे पर बेबी नाज के नाम से जाना गया। 20 अगस्त 1944 को जन्मी कुमारी नाज ने बचपन में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा और फिल्म बूट पॉलिश से खास पहचान बनाई। रेनु, अब बूट पॉलिश की बात हुई है तो यहाँ पे मैं श्रोताओं को एक गाना जरूर सुना चाहूंगी उस फिल्म का, आइए सुनते हैं।

0: इस फिल्म में उनके अभिनय को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली थी। आगे देवदास और एक शोला जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। अब आगे उनके बारे में वैसे तो बहुत चर्चाएं हैं, लेकिन पहले श्रोताओं को एक और फिल्म उनकी फिल्म लजवंती का
1: लजवंती मूवी से ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स वी वॉच्ड दिस मूवी एंड दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स। जब आप बच्चे होते हो तो आपको बहुत प्यारा लगता है ये गाना। तो जरूर लेट्स लिसन डियर लिसनर्स, प्लीज लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मई

0: कौन से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
1: नमस्कार। सो बेसिकली जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकेंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29% जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री के है, एंड 15-29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं। तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस है कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में है। तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाते हैं, तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाए जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है। ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18-29 साल के बच्चे हैं, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग और बैंक में कम विजिट करते हैं, तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रांग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाते नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजेक्शन में यूज करें, तो ये पर्पज है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
0: बिल्कुल अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए भी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विथ स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा है कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स है या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से है, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
0: तो मशीनें काम नहीं कर सकती, और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझें और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म असाइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आएंगे जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग अच्छा उसका भी क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, सिविल होगी कि पहली बार लोन है, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कलेक्टर से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनको चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग जो हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे सर ने बोला कि अब कस्टमर आते ही नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा।

0: तो ह्यूमन टच, और ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन जहां बैंकिंग है या कस्टमर दोनों ह्यूमन बींग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सिगर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफ स्टाइल वोचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो हमारा फ्यूचर है बैंकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे उस दिशा में कोशिश की जाएगी। अश्विनी, एक बड़ी चुनौती यह है कि आज का यूथ इंटरनेट पर रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहते हैं, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पर नुकसान भी हो जाता है, युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो, निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो, बस ये है कि भाई उसके अंदर उनके समय के अनुसार अपने आप में बदलाव ये जरूरी है। तो जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है कि भाई इस तरह की एड आती है है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की एड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए और लोन लेने की, और इतने भ्रामक प्रचार है उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। तो पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के एड भी बैन किए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पर क्रिएट होते। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है, इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने के लिए हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन ने बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें यूथ का जैसे आपने बताया कि यही था, एफएम का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, राइट फ्रॉम एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को कस्टमर फॉर लाइफ हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक जॉब्स मिलती है तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दिस पीपल यंग जो है वही हमारा मुद्दा है इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे, तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा। और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ, बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज है इनको फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाए।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई थी, वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की है। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
0: प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका फिर अभी एनपीए तो काफी रिजॉल्व हो गया, जो 4.60.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज्यादा फोकस आ गया। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका फोकस भी गया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशियली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज्यादा की नंबर और टारगेट पर होना चाहिए, कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होना चाहिए ताकि जिस पर्पज या फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपीए की वजह से हम लोन तो दे देते हैं पर उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस गई कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रूल्स काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग होता है एनपीए को एक बार कम हो गया, ये नहीं कि दोबारा हो, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी,
1: डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी। बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी न रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आप लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलो अप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भाई हाँ भाई ज्यादा तो लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए, कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचे और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहां आप कोई चीज को अचीव करना है, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आज जैसे डिपॉजिट की बात मोबिलाइजेशन की, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहां से करो? तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते
1: जी। और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई, एक थीम थी उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: एक सोच है बाई टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है और नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है, वो तो उसको आप किसको दे रहे हैं, हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है।
1: यदि कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा तो एक तरह से एनपीए भी कहेगा।
2: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
1: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं।

0: नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि आपके पास एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीआई बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया है। हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर, टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट के कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट, डिजिटल रिस्क जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, आईफोसी इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके, बट वो ये कि जितना अवेयरनेस आएंगे जितने लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो लोगों को ओटीपी समझेंगे कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फॉरम में, इवन बैंक अपनी मीटिंग में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोला कि हर तरह का अवेयरनेस आए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में, तो इसलिए काफी बैंक, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहां पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी 1930 और ये www.saiber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिलेगा।
0: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो है इशू करते हैं टाइम टू टाइम, किस तरह के, अब जैसे एसएमएस है, तो एसएमएस मतलब किसी बैंक के नाम का आया है और उसके आगे एस लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक एस अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो, या मेल है bank.in, बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट ऐसा आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें आरबीआई कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑलरेडी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजेक्शन है वो मूव होती है, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल एम्प्लॉय की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, कम से कम जो टेक्नोलॉजी के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर एम्प्लॉय मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा ये सुझाव है हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
0: और नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
1: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए हैं, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हुआ, मुझे इन सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखे, तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगी। अल्टीमेटली देखो, डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही है, तो कोलैबोरेशन

0: मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज कि आईटी और डिजिटल ये सबको एक और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन तो जैसे अश्विन सर ने बोला कि बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है उसी के बेस पे और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा। और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन ये उठेगा कि पब्लिक सेक्टर एक नंबर ऑफ ब्रांचेज है उनका स्केल काफी बड़ा है टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब हम लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस और धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट तो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप ये होगी जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कम्युनिटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है तो वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा।
0: देखिए दोनों ही क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल को 120 तो वो तो हमारा रहेगा बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें है क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये क्योंकि अभी अगर 30 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी और उसको कैसे हम सिक्योर तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ईमेल क्वेश्चन है अवेयरनेस है तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नॉट डिजिटल ही है उसको हम बैक नहीं जा सकते हम तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: अश्विन जी 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है और वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करता है तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहा है तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंड सेट चाहिए। अगर आप उस माइंड सेट के साथ जाएंगे उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे उस जेल के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है तभी आप उनको अटैक कर सकते हो उसके लिए वैसा आपका माइंड सेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदन जी एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे फिर वहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वो ही है सेविंग है करंट है या फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट बट अभी जो यूथ अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं। तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, और बैंक्स कई बैंक्स ने टाइप भी किए हुए कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूनिट प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा

0: रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या FD के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह आप सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते हैं अल्टीमेटली। तो ये कि अब जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है बैंकिंग कस्टमर भी, ये सबसे बड़ा चैलेंज जाएगी। डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जैसे कह सकते हैं, चाहे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह, तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा। अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा, तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बना पड़ेगा, यंग जन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है, तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हो या जिनको उनको लगे कि ये उसके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारे पास काफी है, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का ये ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है, और ये हमारा सामाजिक मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों में तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है, तो इसलिए मैम ने बोला कि सीधा मैम ने कि हम कॉलेजेस पे जाएंगे, वहां पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इम्पोर्टेंस पता चलेगी, तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको अगर इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो फाइनेंशियल और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने प्रोडक्ट्स को यूज करें।
1: अश्विनी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो तो वो क्या होगा?
2: ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब कभी जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, MSME है, सब कई इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए, तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमली जामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेशो खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर और ऋषि आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा था पड़ोसन फिल्म से। अब सुनिए लता मंगेशकर और गीता दत्त को फिल्म है यहूदी।

लता मंगेशकर और आशा भोसले को आपने सुना आए दिन बहार के फिल्म में। अब सुनिए नया दौर फिल्म का नगमा आशा भोसले और शमशाद बेगम का गाया हुआ।

दर्द फिल्म का नगमा था सुरैया और उमा देवी का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए डॉक्टर शमीम हनफी का तहरीर करदा ड्रामा अकेलेपन की भीड़।

0: क्या है कौन है कौन कौन कौन
1: क्या बात है जमाल, आप किससे बातें कर रहे थे? क्या हुआ?
0: कुछ नहीं, कुछ भी चला हुआ तो क्या बेगम, कुछ नहीं, तुम सो जाओ।
1: मगर आप भी तो सो जाइए।
0: सो ही तो रहे थे।
1: सो रहे थे, फिर ये रोशनी?
0: रोशनी तो उस वक्त भी बहुत थी जब हम सो रहे थे।
1: नहीं, आप ही ने तो लाइट ऑन की थी।
0: हमने? पता नहीं,
1: ख्वाब तो नहीं देख रहे थे जमाल?
0: नहीं तो ख्वाब, कैसा ख्वाब?
1: अब हम क्या बताएं, ख्वाब भी कई तरह का हो सकता है, अच्छा बुरा डरावना।
0: मगर ख्वाब भाई, ख्वाब देखने के लिए शायद सोना जरूरी होता है कि नहीं?
1: तो आप सो नहीं रहे थे? जी तो ठीक है आपका।
0: हाँ ठीक है, शायद हम सो ही रहे थे।
1: फिर बत्ती क्यों जलाई, नींद तो चढ़ गई?
0: हाँ शायद ऐसा लगा सकीना, बहुत से लोग हैं।
1: ख्वाब में?
0: पता नहीं, हो सकता है जागते में अचानक

0: कैसी बातें कर रहे हैं जमाल, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
1: हाँ हाँ एकदम ठीक है, लो अगरबत्ती बुझाई देते हैं, तुम भी सो जाओ। हाँ अब सो जाओ, सो जाओ।

0: Nana, Ona.
1: हाँ बुआ, चिल्ला क्यों रही हो? पास ही खड़े हैं हम.
0: तो हमरा बुलाना, चिल्लाना हो ही गया. अरे आंख उछल पहाड़ उछल. अरे हमका जाने तुम कहाँ हो, दरवाजे से चिपके खड़े हो कि आंगन में हो. जरा सा पुकार लीना, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बुरा मान गए.
1: ओहो, बुरा कौन मान गया बुआ, आखिर हमने कौन सी बात कह दी. तुम तो नाक बतंगड़ बना लेती हो जरा सी बात का. लियो, हम अपना होटल ही सी लेंगे.
0: हाय हाय, अरे छोकरे तेरी मत तो नहीं मारी गई, होटल ही सी लोगे. नाक पर गुस्सा धरा रह वे है, आई जरा सा बोलो तो गजब हो जाए. लो, हम अब तुमसे बात नहीं करेंगे.
1: देखो बुआ, तुम ही कहो कि दाना पानी छोड़ दोगी तो हम मान ले, उन्हीं कि तुम बात ही ना करोगी हम तो मान सकते नहीं. तो और होट सी लो, ये तो हो ही नहीं सकता, समझी बुआ.
2: ओहो, कयामत है, कब से पुकार हो रही है मगर तुम दोनों तो कज बहसी में उलझे हुए हो, फिर भला सुनता कौन.
0: वो असल में ऐसा हुआ कि वो
2: ऐसा हुआ वैसा हुआ नहीं, ये बताओ अंडे का खागीना बन गया और पराठे.
0: पराठे बन गए हैं, पर ई मुन्ना अभी अंडे लाया ही नहीं, हम क्या करते. आए मुन्ना
1: जी,
0: जरा लपक के अंडे तो ले आइयो.
1: अभी लाते हैं बुआ जी.
2: अच्छा देखो, हम मुंह धो लें जरा, ख्याल रखना जमाल उठ गए हैं, अब अखबार की तलब लग रही होगी. जैसे ही रेहान अखबार लाए भिजवा देना मुन्ना से, समझी.
0: जी, दुनिया जहान की फिक्र सबको है, हमारी फिक्र किसी को नहीं. अखबार में सात समुंदर की बात पढ़ लियो, सब जान लियो कहां का हुआ. पर आदमी के अंदर जो आंधी तूफान मचा हुआ है उनका पता पास वाले को भी, कोनों को नहीं, कोनों

0: सुन
1: क्या है सरीना?
0: सुन रहे हो? वो ये दीवाना लड़का गा रहा है।
1: हाँ सुन तो रहा हूँ, रोज ही गाता है वो।
0: शहर के हंगामों से दूर कैसी अच्छी लगती है उसकी आवाज। आसपास के तमाम बूढ़े बूढ़िया रोज की तरह पार्क के बेंचों पर आ जमे होंगे, गीत सुन रहे होंगे।
1: क्या करें बेचारे खाली लोग, मसरूफ जिंदगी की हदें पीछे छोड़ आए, अब उन्हें करना ही क्या है।
0: रोज इस वक्त मुझे अब भी याद आ जाते हैं और अम्मी भी। हम भी बिला वजह कहां फंसे।
1: क्या मतलब?
0: अरे अपने मुल्क में होते, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, यहां सब कुछ कितना अजनबी, कितना पराया सा लगता है।
1: तो तुम्हारा मतलब है अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लौट चले?
0: मैं ये तो नहीं कहती।
1: फिर क्या, तुम रोज याद करती हो उस शहर को, बस्ती को, उस घर को, अम्मी और अब्बी को, और बुआ की बड़बड़ाहटे।
0: मगर ठीक है, वापसी इतनी आसान नहीं होती। मैंने तो कभी

0: किसी को कहीं वापस जाते देखा नहीं, सब आगे बढ़ते जाते हैं।
1: जो लम्हा गुजर जाए ठहर जाता है, पत्थर बन जाता है, बेजान।
0: अब बेजान तो मत कहो उसे।
1: क्यों?
0: अम्मी और अब्बी और बुआ, याद करो वो हमेशा गए दिनों की बातें करते हैं।
1: इसलिए कि आने वाले दिनों में उनके लिए अब कुछ नहीं, वो अकेले लोग हैं, एक थका देने वाले रूटीन का शिकार।
0: रूटीन? और ये सब, ये शोर शराबा, भाग दौड़, आठों पहर की ये मसरूफियत, ये हाँपता हुआ शहर, ये सब रूटीन नहीं है।
1: मगर हम तो शहर से दूर सबर्ब में पड़े हुए हैं। शहर जाते हैं, अपना काम खत्म करके वापस आ जाते हैं, टीवी देखते हैं, रोज सुबह इस दीवाने गिटारिये का गीत सुनते हैं।
0: ये भी तो रूटीन है।
1: मगर दिन भर शिकागो में एक पल के लिए भी तो कुछ सोचने की मोहलत नहीं मिलती, बस काम काम काम। यही तो फर्क है मशरक और मगरिब में।
0: मशरक और मगरिब?
1: हाँ, मशरक में रोज बस सूरज निकलता है फिर डूब जाता है, और दिन को भी दुनिया कैसी सोई सोई सी लगती है। भाई मैं तो हफ्ते भर में ही थक जाता हूँ वहाँ।
0: थक जाते हो?
1: हाँ, बैठे बैठे। अभी और अम्मी से कितनी देर बातें की जाए, और फिर वहाँ बाहर भी क्या है, कोई नई बात नहीं। आदमी को मसरूफियत जिस तरह थकाती है उसी तरह खालीपन भी थका देता है। ये तमाम बूढ़े और बूढ़ियां जो इस वक्त गिटार पर धुन सुनने में मगन है, दरअसल

0: मुन्ना, अभी आओ मुन्ना।
1: हाय हाय, काहे को पुकार रहे हैं आप उसे?
0: भाई वो अखबार,
1: अखबार आया होता तो वो दे जाता।
0: सुबह का पहला अखबार तो अपना मुन्ना ही है।
1: आए, सुबह का पहला अखबार?
0: मुन्ना नुक्कड़ वाली दुकान से अंडे लेने गया होगा ना, उसने रुदात नहीं सुनाई अभी तक हमें।
1: कैसे रुदात?
0: यही तो तुम समझती नहीं सकी ना, हमारे घर के दरवाजे से गली के नुक्कड़ तक एक पूरी दुनिया फैली हुई है।
1: 200 कदम के अंदर? क्यों, इस जरा सी गली में जहाँ मुश्किल से 20 घर होंगे और 2-3 दुकानें।
0: हाँ सकीना बेगम, एक पूरी दुनिया फैली हुई है इतनी सी दूरी में।
1: और हजारों मील दूर की वो दुनिया जहाँ
0: जहाँ जरीना है, सलीम है, हमारे बच्चे हैं। ठीक है, वो भी एक दुनिया है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग, एक और तरह की दुनिया। मगर सकीना बेगम, अमेरिका में हमारे बच्चे नौकरी करते हैं बस, अपने आका तो नहीं है। याद है जरीना जब पिछली बार यहाँ आई थी तो क्या कहती थी?
1: क्या कहती थी?
0: कहती थी सुबह से शाम तक सिवाय वीकेंड के एक से दिन एक एक पल की मसरूफियत, सब भाग दौड़ से भरे हुए जैसे सब ख्वाब में हो, उन्हें अपना ख्याल भी नहीं रहता।
1: मगर जमाल।
0: हाँ कहो कहो सकीना, रुकी
1: हमारे बच्चे खुश तो हैं उस दुनिया में, आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर नहीं वहाँ हमेशा के लिए जा बसे, कोई तकलीफ होती तो लौट ना आए होते।
0: लौट आते, कैसे लौट आते, उस दुनिया में वापसी के सफर का कोई रास्ता नहीं सकीना बेगम।
1: आए हाय, हमारे बच्चे साल के साल आते नहीं हमारे पास?
0: आ जाते हैं, आ जाते हैं फिर चले जाने के लिए। यह भी कोई वापसी का सफर है सकीना?
1: आप जाने कैसी बातें करते हैं, मेरा जी डूबने लगता है कभी कभी।
0: देखो बेगम, नई मियाँ वहीं के हो रहे, अच्छा भाई के दामाद को जर्मनी के एक दूर उफ्ताता कस्बे में नौकरी मिली थी, बस वहीं का हो रहा। उम्र विस्कॉन्सिन में है, इफ्तिखार भी है लंदन में, अख्तर रियाद में है, नसीम मस्कट में, अजीज टोक्यो में, और सुरैया को तो अब पेरिस के अलावा कोई शहर अच्छा ही नहीं लगता।
1: ओहो, तो इसमें हर्ज भी क्या है? ठीक है, रिजवान भाई का बेटा बंबई चला गया, जमीला आपा बेटी के साथ हैदराबाद में है, खलील बेंगलोर में, जफर कलकत्ते में, खानदान और जान पहचान के कितने लड़के घर छोड़कर इधर उधर चले गए। आखिर फर्क भी क्या है लंदन और शिकागो और बंबई और बेंगलोर में?
0: तुम शायद ठीक ही कहती हो, कोई फर्क नहीं है।
1: तो फिर आप परेशान काहे को होते हैं?
0: हम अपने लिए नहीं बेगम, अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। मगर ये भी बस एक वहम है, कोई किसी और के लिए परेशान हो ही नहीं सकता। परेशानी अपनी हो या दूसरे की कोई फर्क नहीं पड़ता सकीना, ऐसी हर बात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती जब तक कि हम उसे अपनी हस्ती के हवाले से न देखें।
1: अपनी हस्ती का हवाला?
0: हाँ बेगम, यही तो हमारी आंख है, इसी से हम अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने बच्चों को, अजीजों को, अजनबियों को, सबको देखते हैं। इसी आंख से हम अपने घर को, अपने बस्ती को देखते हैं, और हजारों मील दूर बसे उस घर को जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है, मगर जिसकी दीवारों में हमारी अपनी दुनिया का एक इलाका बसा हुआ है।
1: आप शायद बहुत याद कर रहे हैं।
0: किसको?
1: जरीना को, सलीम को।
0: बस इतना ही,
1: और किसे?
0: जरा याद करो, याद करो बेगम जरीना का बचपन, जब उसने पहला जुमला बोलना सीखा था। तो हम उसे जब पहली बार स्कूल ले गए थे, और जरीना का भी बस एक ही चेहरा तो नहीं, साल भर की जरीना, दो साल की जरीना, पांच साल की जरीना, याद है? उसकी पांचवी सालगिरह पर सुनू ना उसके लिए जो खिलौना।
1: कितनी लड़ाई हुई थी उस रोज राखी और समीना में, और बात कितनी जरा सी थी।
0: और अंजलि, दीपा, आशीर, अधिका, अंबिका, कितनी प्यारी बच्चियां थी जरीना के साथ की सारी बच्चियां, याद है? शायद 17वीं सालगिरह थी जरीना की। अरे भाई, जब उसने ऑनर्स के पहले साल में दाखिला लिया था, कैसे तमाशे किए धुन सबों ने, फैंसी ड्रेस, गाने और तरह तरह की शरारतें।

0: या तो मैं उसके घर चला जाता था या फिर वो हमारे घर आ जाता। तो उस रोज बहुत दिनों बाद पहले उसका फोन आया, फिर वो खुद और उसके साथ एक गुड़िया। तुम्हारी मम्मी को हंसी आ गई ये देखकर कि हमारे पास भी एक नन्नी मुन्नी सी गुड़िया लिए चला आ रहा है। हाँ, तो उस गुड़िया की कमीज में दो बटन लगे हुए थे। असल में ये बटन नहीं, स्विच थे। दोनों को अलग अलग दबाओ तो गुड़िया दो अलग अलग गीत गाती थी। और इस इत्तेफाक करें या कुछ और, कि वो दोनों गीत बचपन में तुम भी गाया करती थी। एक तो वो था जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, और दूसरा वो जॉनी जॉनी यस पापा। तो हुआ ये कि तुम्हारी अम्मी और मैं, हम दोनों बार बार इस गुड़िया के बटन दबाते रहे और ये गीत सुनते रहे। कैसी ताकत थी इन गीतों में, वक्त के धारे का रुख ही इन गीतों ने बदल दिया। जोशी ये समझा कि हम दोनों सनक गए हैं। कुछ देर बाद उसने वो गुड़िया तुम्हारी अम्मी को नजर कर दी और हंसता हुआ वापस चला गया। अब वो गुड़िया हमारे पास है।
1: नहीं तो मैं रो क्या रही हूँ सलीम।
2: यूरिया छोटी लड़की, तुम रो रही थी अभी। अच्छा, मैं लाइट ऑफ करता हूँ, अब सो जाओ। सो जाओ आप।
1: पता नहीं अभी और अम्मी जाग रहे होंगे कि सो रहे होंगे। अब्बी को बहुत दिनों से कच्ची नींद आती है।
2: क्यों?
1: आप बहुत देखने लगे थे, कहते थे आप देखते देखते आंखें थक जाती हैं।
2: और जागते जागते?
1: जागते जागते भी आंखें थक जाती हैं। आंखें खुली रहे या बंद रहे, मुश्किल दोनों में।
2: अरे पगली। अच्छा बस, अब बहुत हो चुका। अब्बा और अम्मी दोनों मजे में हैं। कितना अच्छा खत लिखा है उन्होंने। पर तुम्हें फिक्र किस बात की है?
1: कितने अकेले हो गए हैं अब्बी और अम्मी।
2: अकेले?
1: हाँ सलीम, एकदम अकेले। सुनो, क्यों ना ऐसा करें कि कुछ दिनों के लिए उन्हें यहाँ बुला ले।
2: यहाँ? यानी कि यहाँ स्टेट्स में?
1: हाँ सलीम, हाँ।
2: मगर यहाँ उनका दिल लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि
1: आओ, वो क्यों है सलीम?
2: तुम देखते हो उन उगताए हुए, आप अपना बोझ बने हुए सिंध सीधा मर्दों और औरतों को होम में पड़े रहते हैं। सुबह शाम थोड़ा देर के लिए पार्क में जमा हो गए उस दीवाने गिटारिये के गिर्द, शायद ही कभी कोई उनसे मिलने आता हो। कितने अकेले दिखाई देते हैं ये लोग, जजीरों की तरह अंधी हवा के थपेड़े खाते हुए, पटकते मंडलाते पत्तों की तरह, भूले बिसरे गीतों की तरह। अब उन्हें कोई नहीं दोहराता। आपस में ये कभी ना कभी अपने बेटों और बेटियों की बातें तो करते होंगे। पता नहीं उन बेटों और बेटियों को कभी उनका ख्याल भी आता है।
1: सलीम।

0: मुन्ना
1: आ जाओ अंदर।
0: जी
1: बुआ क्या कर रही हैं?
0: नाश्ता बना रही हैं।
2: देखो मुन्ना वो अखबार आ गया।
0: साहेब वही तो लाए हैं हम।
2: अच्छा और बताओ क्या खबरें हैं हमारे शहर की मोहल्ले की?
1: आपको भी हर रोज सुबह सुबह ये क्या आदत पड़ गई है जमाल?
2: अरे भाई बाहर की दुनिया से हमारा रिश्ता इसी मुन्ना के वास्ते से तो बना हुआ है।
0: साहेब नन्नू की बहू लौट आई है।
2: लौट आई ना?
0: हाँ
2: हम तो पहले ही कहते थे मगर उस नन्नू को भी बेटे बहू के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। चलो खैर और सुनो वो सरदार के बेटे का क्या हुआ? पास हो गया?
0: हाँ साहेब पास होएगा वह।
2: उससे कहना हमसे मिल ले हम उसे इनाम देंगे।
0: साहेब वही जौन चोरी हुई रही लाला जी के हुआ।
2: हाँ हाँ क्या हुआ?
0: पकड़ लिए गए चोर।
2: पकड़ लिए गए कब?
0: साहेब कोनू बाहर के तो रहे नहीं। हम तो पहले ही कहते रहें कि कोनू घर वाले का काम हुई है।
2: तो भाई कौन था?
0: लाला जी की अपनी भौजाई और भाई
2: है।
0: पुलिस आके डांट लगाइस तो सब कबूल दें।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अब तुम जाकर नाश्ता लगवाओ।
0: जी
1: बुआ से कह दो हम आ रहे हैं।
0: अच्छा जी।
1: कौन आ गया सुबह सुबह?
2: मुन्ना। ओ मुन्ना
0: आए रहे हैं साहेब। ई लियो साहेब।
2: भाई क्या है ये?
0: जरीना बाजी का खत।
1: जरीना का खत? अरे कौन लाया है?
0: वो इसार साहब है ना।
1: हाँ हाँ।
0: इसार वकील उन्हीं का नौकर लाया है। कहत रहा कल रात निसार भैया अमेरिका से आए रहे उन्हें कहा जरीना बाजी एक खत भिजवाए ने।
1: अच्छा।
0: साहेब निसार भैया शाम तक आपके पास आए हैं।
2: और देखो मुन्ना वो
0: साहेब।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अब बाकी सब बाद में पूछ लीजिएगा जरीना का खत तो पढ़ना है।
2: अरे हाँ अच्छा। अब्बा आप और अम्मी कितने अकेले होंगे?
3: हर वक्त हमें आप दोनों का ख्याल लगा रहता है। सलीम ने ये तय किया है कि हम बहुत जल्द कुछ दिनों के लिए आप दोनों को यहाँ बुला लें। आप दोनों के सफर के सिलसिले में सारी कार्रवाई जल्दी ही पूरी कर ली जाएगी फिर हम टिकट भेज देंगे। आप दोनों अब यहाँ आने की तैयारी शुरू कर दीजिए। इन दिनों यहाँ बहुत ठंड है दिन को भी बर्फीली हवाएं चलती हैं मगर हमारे घर में धूप आती है खूब आती है। पास ही एक पार्क है और एक होम जहाँ आप दोनों की उम्र के बहुत लोग रहते हैं एकदम हॉस्टल की तरह। आपकी उनसे खूब दोस्ती हो जाएगी और अम्मी को भी ये जगह पसंद आएगी। घर से थोड़ी दूर पर शॉपिंग सेंटर है मैं अम्मी को अपने साथ ले जाया करूंगी। इतना जरूर है कि दिन भर आप दोनों घर में अकेले रहेंगे मगर अकेले तो वहां भी रहते हैं। खैर शाम 7 बजे तक सलीम घर आ जाते हैं और मुझे कोई आधा घंटा और लग जाता है वापसी में। घर आप बुआ के सुपुर्द कर दीजिएगा और मुन्ना भी समझदार है चाहे तो कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद से सरफराज चाचा को।
1: हंसी की क्या बात है? ये ना जरा हमें दे दीजिए।
2: अच्छा हम ही बड़े देते हैं मगर हमारी बेटी भी अभी तक एकदम बुद्धू है लिखती है।
3: इलाहाबाद से सरफराज चाचा को बुलवा लीजिए वो भी जगह बदलने से खुश होंगे। अकेले इलाहाबाद में घबराते होंगे यहाँ बुआ और मुन्ना का साथ तो रहेगा। और हाँ आइए तो कम से कम 2 महीने के लिए। हमको ये सोच सोच कर उलझन रहती है कि आप दोनों बहुत अकेले हैं।

Jason Kitra. अकेले अंधी हवा के थपेड़े खाते भटकते मंडराते पत्तों की तरह अकेले भूले बिसरे गीतों की तरह

0: अकेले अकेले अकेले
1: ये आप हाफ क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: अकेले हम अकेले हैं क्या?

0: क्या हुआ जरीना?
1: अम्मी का खत आया है।
0: क्या लिखा है?
1: न तो अम्मी आने पर आमादा है और न अम्मी।
0: क्यों?
1: लिखा है काम बहुत है, सुबह से शाम तक घिरे रहते हैं।
0: कौन घिरे रहता है उन्हें?
1: ये लिखा तो नहीं मगर मगर मैं समझती हूँ।
0: कौन?
1: याद है।
0: किसकी?
1: गए दिनों की, खोए हुए चेहरों की, डूबते लम्हों की।
0: सरीना, सरीना प्लीज। अच्छा ऐसा करते हैं, हम दोनों खुद चले चलते हैं दोस्तों के लिए। हा?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: मना किया है अभी ने। लिखा है।
0: और तुम लोग भी परेशान होकर यहां मत आ जाना। तुम दोनों वहां रहते हुए भी हमारे साथ हो, आठों पहर साथ। हर रोज हम दोनों तुम दोनों से कितनी बातें करते हैं और हम कितने मगन रहते हैं और वक्त कितनी सहूलत से गुजरता जाता है। हम गुजरते जाते हैं और वक्त ठहरा।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा था आमने सामने फिल्म से। सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म है सीता और गीता।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये नगमा था दस नंबरी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में फिल्म है छोटी सी मुलाकात।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे

किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था पिघलता आसमान फिल्म से। अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म है हसीना मान जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दुकानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है शाह वलीउल्लाह देहलवी।
1: करने वाले उलमा ने शाह वलीउल्लाह देहलवी का नाम बहुत नुमाया है। शाह वलीउल्लाह का अहद 1702 से 1762 तक का है। शाह साहब दिल्ली के अजीम मुहद्दिस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। शाह साहब ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को न सिर्फ ये कि इस्लाम की बेहतरीन इकदार का दर्ज दिया बल्कि हुब्बुल वतनी का सबक भी सिखाया। शाह साहब को एहसास था कि उन्हें न सिर्फ अपने अहद के लिए बल्कि आने वाले जमाने के लिए भी इस्लामी फिक्र का एक नया महवर तलाश करना है। उन्होंने इस्लामिया की तमाम शोबों पर शाह साहब ने मुस्तहदाना अंदाज से कलम उठाया और तमाम मौजूद पर सैर हासिल बहस की। कितने ऐसे मजामिन और मौजूद हैं जिन पर बहस करना

0: अव्वलियत का शर्त शाह वलीउल्लाह को हासिल है। इस्लाम को एक ऐसे मुरतब और मुकम्मल निजाम की शक्ल में पेश करना जो इंसान और मुआशरे की रूहानी, अखलाकी, कानूनी, फिक्री, सियासी और मुआशी जरूरत का कफील बन सके, फिर इस मुकम्मल निजाम के हर एक पहलू को इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक और अक्ल इस्तदलाल के मीजान में पूरा उतरने वाला साबित करना शाह साहब के बड़े कारनामों में से एक है। शाह साहब ने कुरान हकीम की बेहतरीन तफसीर लिखी और कुरान हकीम के मजामीन का उन्होंने खमसा के एतबार से इशारिया तैयार किया और अहादीस से मुतालिक अहम तरीन कारनामे अंजाम दिए। शाह वलीउल्लाह की तसानीफ के अलावा उनके अफकार और ख्यालात के बायस हिंदुस्तान में इस्लामी फिक्र का ऐसा अहद शुरू हुआ जिसकी तरवीज का सिलसिला आज तक जारी है। शाह वलीउल्लाह अहया इस्लाम के तहरीक के सबसे ज्यादा जिद्द पसंद और तामीर मुफक्किर तसव्वुर किए जाते हैं। वो अपने अहद के सियासी हालात से भी बखूबी आशना थे। उन्होंने अपने अफकार में ये बात तस्लीम की थी कि चंद खानदानों में दौलत का इज्तिमा और उसकी गैर मसावी तकसीम ऐसी खराबियां हैं जो लाजमी तौर पर समाज में तनाजुल और अफरा तफरी के सबब होती हैं। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौमी दौलत की मुनसिफाना और मसावी तकसीम हो और साथ ही समाज का एक मुतवाजन ढांचा हो और मेहनत करने वालों की सलामती और उनकी समाजी मजलिसी आजादी की जमानत हो। शाह वलीउल्लाह ने मुगलिया सल्तनत के जवाल का सबब उन भारी और नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों को करार दिया जो किसानों, कारीगरों, ताजिरों और दूसरे लफ्जों में पैदावार में मशगूल लोगों को पूरे तबके के ऐशो आराम की फराहमी के खातिर अदा करना पड़ते थे। उन्होंने एक तरफ तो खिलाफत और अमानत के अकायद के दरमियान खरीद को पाटने की कोशिश की और दूसरी जानब शरीयत और तरीकत यानी अदामत पसंदी और तसव्वुफ के दरमियान फासले को कम किया। शाह वलीउल्लाह 19वीं सदी के उन मुफक्किरीन में से हैं जिन्होंने बरतानवी हुकूमत के खिलाफ दर दर पर शोरशों की तंजीम और क़यादत की। शाह वलीउल्लाह के नजरियात से मुतासर होकर हिंदुस्तान भर में मुजाहिदीन की वो तहरीक शुरू हुई जिसकी क़यादत सन 1857 के जमाने में सैयद अहमद बरेली ने की। ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान में सरगर्म रही और मुजाहिदीन ने जुनूब से शुमाल तक और मशरक से मगरिब तक अपनी सरगर्मियों को जारी रखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद को जारी रखा। इस तहरीक के सिलसिले में पाकिस्तान के मुमताज आलिम मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने अपनी किताब सरगुज़िश्त मुजाहिदीन की तहरीक की जिसके दो हिस्से हैं और जिसमें हजरत शाह वलीउल्लाह और उनके जेर असर सैयद अहमद बरेलवी और दीगर हजार मुजाहिदीन जिन्होंने हिंदुस्तान को बैरूनी हुक्मरानों के दाम से बचाने के लिए जिद्दोजहद की एक तवील दास्तान बयान की गई है। दिल्ली में हजरत शाह वलीउल्लाह की यादगारें आज भी मौजूद हैं और उनके इन फैज हिंदुस्तान की जमहूरी और सेक्युलर समाज में शामिल हैं।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था शाह वलीउल्लाह दहलवी। तहरीर थी महमूद हाशमी की और रावी थी मरियम काजमी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। कुछ और फिल्मी नगमे प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा।

तेरी मेहरबानियां फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाजें थी अनुराधा पोड़वाल और शब्बीर कुमार की। अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ उदित नारायण को फिल्म है वीर जारा।

लता मंगेशकर के साथ आपने सोनू निगम को सुना। फिल्म का नाम था मुझसे दोस्ती करोगे। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ।

0: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: शगुफ्ता यास्मीन से आलमी खबरें सुनिए। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद हो रहा है। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी में फौरी इसलाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती कौंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर के आलमी हकायक की अक्कासी होनी चाहिए। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मौशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मौशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और एफआईएच हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टलफिन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज आईएसएमआर का चौथा दौर आज सिंगापुर में हो रहा है। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद शिरकत करेंगे। आईएसएमआर का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफार्म है। आईएसएमआर की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी सीएसपी रोड मैप वजह किया गया, जिसकी नकाब कुशाई गुजश्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालकृष्णन के साथ शामिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिंजिरो कोइजोमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तावन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खत्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वुजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तावन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई और सिक्योरिटी तावन को मजीद बढ़ाने का रोडमैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी में फौरी इसलाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती कौंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीकेकार से मुतालिक यूएनएससी के खुले मुबासे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अकवामे मुत्तहिदा में भारत की शार्जे दफेयर योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इसलाहात की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा वाजह तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अकवामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती कौंसिल को उस दौर के हालात के मुताबिक तरतीब नहीं दिया जा सकता। भारत ने मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल रुकनियत दोनों में तौसी के अपने मुतालबे को दोहराते हुए ग्लोबल साउथ के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की मांग की। मोहतरमा पटेल ने कहा कि इसलाहात का अमल वाजह पड़ाव और मुकर्रा मुद्दत के अंदर तहरीरी बातचीत पर मबनी होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। चार रोजा इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू होगा। इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी बिरादरियां सकाफत, रिवायात और अवामी ताल्लुकात का जश्न मनाने के लिए यकजा होंगी। इस फेस्टिवल का एहतमाम मॉस्को के गॉस्टिनी लिवो में किया जाएगा। सकाफतों के इत्तेहाद, लोगों की दोस्ती, کے موضوع کے تحت منعقد کیے جانے والے اس فیسٹیول میں مختلف پروگرام ہوں گے. تقریباً 20 خصوصی زون میں حاضرین کو یوگ، شطرنج، بھارتی شادیوں کی روایات، رقص اور آیوروید سمیت بھارتی ثقافت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے گا. اس فیسٹیول میں روس اور دیگر ممالک کے انسٹرکٹر سمیت تقریباً 75 یوگ سکولوں کی شرکت کی امید ہے. نیز بھارت اور روس کے 200 سے زیادہ ڈانسرز اپنے فن کے ذریعے بھارتی رقص کے تنوع اور فنکارانہ روایات کو پیش کریں گے. بھارت میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کو بھارت کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکز اور ریاست کی حکومتوں نے جموں کشمیر میں سلامتی کی صورتحال کو بہتر کرنے سے متعلق کئی اقدامات کیے ہیں. امریکی سفیر کل سری نگر میں جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. اس دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ ملاقات کے دوران بھارت امریکہ تعلقات پر توجہ مرکوز کی گئی اور ان شعبوں پر غور و خوض کیا گیا جہاں امریکہ جموں کشمیر کے ساتھ مصروف عمل ہو سکتا ہے. جناب عبداللہ نے مزید کہا کہ ملاقات کے دوران مثبت مصروفیات اور مستقبل کے اشتراک پر زور دیا گیا. بنگلہ دیش میں آج صدارتی انتخاب منعقد ہوگا جس میں ارکان پارلیمنٹ، حکمراں بی این پی کے مرزا فخر الاسلام عالمگیر اور 11 پارٹیوں کے اپوزیشن اتحاد کے امیدوار کرنل اولی احمد میں سے کسی ایک کو ملک کے صدر کے عہدے کے لیے منتخب کریں گے. بنگلہ دیش میں 35 سال بعد صدارتی عہدے کے لیے پہلی بار ووٹ ڈالے جائیں گے. ووٹنگ ملکی پارلیمنٹ جاتیہ سنسد میں آج دن میں 2 بجے سے 5 بجے تک ہوگی. بی این پی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے عالمگیر نے بی این پی کے ارکان پارلیمنٹ سے آج کے صدارتی انتخاب میں انہیں ووٹ دینے کی اپیل کی. منتخب صدر کو کل شام بنگ بھون کے دربار ہال میں بنگلہ دیش کے صدر کے عہدے کا حلف دلایا جائے گا. بنگلہ دیش کے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کے قریبی ساتھی محمد شہاب

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद हो रहा है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल यानी यूएनएससी में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर के आलमी हकायक की अक्कासी होनी चाहिए। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है और एफआईएच हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टरडम में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पहली मजलिस की नशरियात अभी तक आपने सुनी मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। फिलहाल आज की पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो राजेश खन्ना जो कि अशोक मेहरा के किरदार में है, वे एक धनी उद्योगपति होते हैं जिनका व्यवसाय सौंदर्य प्रसाधनों का होता है। उनका वैवाहिक जीवन पूर्णिमा से सुखमय रहता है। बेटी मिनी के जन्म के बाद पूर्णिमा को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं और डॉक्टर उन्हें बचाने में असमर्थ होते हैं। अशोक इस घटना से बेहद दुखी हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अशोक मिनी की माँ के प्यार के लिए इतने तड़प उठते हैं कि वह अपनी बेटी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। मिनी का व्यवहार इतना बिगड़ जाता है कि कोई स्कूल उसे पढ़ाने को तैयार नहीं होता और ना ही कोई गवर्नेंस उसकी देखभाल करने को। अशोक का व्यवसाय विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो जाता है। अशोक एक विज्ञापन अभियान के लिए फोटोग्राफर राज बेदी जो कि राज बब्बर होते हैं उनको काम पर रखते हैं। समुद्र तट पर मॉडल की तलाश करते समय बेदी की मुलाकात राधा से होती है और वह उसे अपने लिए पोज देने के लिए मना लेता है। दोनों में प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। अब बेदी राधा की तस्वीरें अशोक को देने को तैयार नहीं होता और वह अनुबंध तोड़ने की कीमत चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति बेच देता है। बेदी की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है और उसका करियर धराशायी हो जाता है। जब वह अपने परिवार के लिए एक साधारण जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा होता है तभी बेदी एक गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है।

श्रोताओं, जब राधा के पति बेदी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तब राधा घर चलाने और अपने पति के इलाज के लिए पैसा बचाने के लिए नौकरी करने का फैसला करती है। लेकिन कोई भी विवाहित महिला को नौकरी देने को तैयार नहीं होता। वे अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में झूठ बोलने का फैसला करती है। नौकरी की तलाश में वे अशोक मेहरा के दफ्तर पहुंचती है, जहां उनके सहयोगी मिनी के लिए एक गवर्नेंस की तलाश कर रहे होते हैं। उसे तुरंत ही ये पद दे दिया जाता है, क्योंकि

दिवंगत पूर्णिमा मेहरा से काफी मिलती जुलती है। हालांकि ये बात उससे छुपाई भी जाती है। मिनी थोड़ा शुरू में सख्त लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार नरम हो जाता है। राधा के विवाहित होने से अनजान अशोक को उससे प्यार हो जाता है।

0: तब बेदी को अपनी पत्नी राधा की वैवाहिक निष्ठा पर संदेह होने लगता है। राधा के करीब आने की अशोक की कोशिशें और बेदी के दखलंदाज दोस्त असरानी, जो कि चंदू के किरदार में थे, उनके व्यवहार से उसका संदेह और बढ़ जाता है। अशोक और बेदी दोनों के साथ की बहस के बाद राधा मिनी की देखभाल करने से मना कर देती है। मिनी के नखरों को सहन न कर पाने के कारण अशोक उसे एक छात्रावास में भेज देता है। राधा को स्वार्थी समझने और अपनी बेटी को माँ के प्यार से वंचित करने के लिए अशोक को अपराध बोध होता है। जब राधा द्वारा खरीदी गई लॉटरी का टिकट जैकपॉट जीत जाता है तो अशोक अपने सहयोगी को पुरस्कार राशि राधा को देने के लिए भेजता है, जो बेदी के इलाज के लिए अमेरिका में व्यवस्था करती है। हवाई अड्डे पर अशोक के उनसे मिलने पर तीनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। उड़ान में देरी का फायदा उठाते हुए अशोक मिनी को राधा और बेदी द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है। फिल्म की आखिरी पंक्ति अशोक मेहरा द्वारा रेखा के दोनों किरदारों को संबोधित करते हुए दर्द भरे लहजे में बोली जाती है, मैंने तुम्हें एक बार प्यार किया लेकिन दो बार खो दिया।
1: पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, ये थी इस फिल्म की कहानी और हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो आइए उन संदेश को हम पढ़ते हैं। पहला संदेश जो है वो है सुदर्शन शाह का, और इनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से लेकर भेज रहे। नितेश दिवांगन का अगला संदेश आया है, इनके साथ हैं दुर्गा प्रसाद दिवांगन, पराग टेलर, पूना राम दिवांगन, कृष्ण दिवांगन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी पिंगावाला चौक गुराया जलंधर से। सुनील पाठक जी का संदेश आया है और इनके साथ है कमल पाठक और गाफिया मल्होत्रा, और ये हमें लिख कर भेज रहे हैं अनारकली बाजार जकराव पंजाब से। अगला जो संदेश है वो है धर्मेंद्र छीपा का, इनके साथ है कपिल छीपा, पूजा परिहार। उन्होंने हमें लिख कर भेज रहे हैं कि फिल्म अगर तुम ना होती के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला संदेश है वो है स्वर्ण सिंह, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, लाल सिंह, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला जो संदेश आर कुमार का है, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, राधे श्याम दिवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, के साथ है चंपा दिवांगन, इंदिरा नगर भवरपुर से। अनिल मोहन का अगला संदेश है, इनके साथ है उषा मोहन, टिल्लू नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांडा से। सुधाकर जाधव हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव और इनके अन्य सदस्य। सुदर्शन मुखी हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से। तो श्रोताओं, चलिए सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत और अगले संदेशों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में।

0: que luego yo no. No. श्रोताओं, अगला संदेश आया है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ से, और इन्होंने, इनके साथ है अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और इनके अन्य परिवार के सदस्य विरम गांव से ये लिखकर भेज रहे हैं। जो अगला संदेश है वो है बिट्टू गजनेजा का, जलालाबाद वेस्ट से, और इनके साथ है पूनम दिशानी निमित। अगला संदेश है हीरामणि वर्मा का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटा पारा से। उषा मोहन का अगला संदेश आया है, और साथ ही जो अगला संदेश है वो है गुरमीत सिंह का, इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें लिखकर भेज रहे हैं, साथ में शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हैं।
1: अरे कल तो संडे की छुट्टी है, फिर किस बात का रोना है।
0: श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और इस फिल्म, आज की जो हमारी फिल्म थी वो है अगर तुम ना होते। ये फिल्म, इस फिल्म के लिए जो इसका जो टाइटल सॉन्ग है अगर तुम ना होते, उसके लिए किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था, और साथ ही राज बब्बर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, और गीतकार गुलशन बाबरा को मिला था सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार। सन 1983 में राजेश खन्ना ने कोलंबस इंटरनेशनल फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए अभिनय के लिए विशेष पुरस्कार जीता था।
1: सच है ये कोई इल्जाम नहीं है,

स्वान सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, ठाकुरा वाला सिंह के साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और जो अगला संदेश है वो फारूक अली खान का है और प्रकाश वर्मा जी हमें लिखकर भेज रहे हैं, के साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से।

श्रोता, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम को लेकर ठीक दिन के 1:10 पर।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों की रहा है। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मर्तबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज शाम FIH हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला के दौरान बहरी सलामती में इजाफा करने, मेक इन इंडिया दिफाई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक एतमाद को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों वजीरों ने बहरी सलामती
1: हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जनाब कोइजुमी ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय बहरिया की जानिब से फराहम की गई इमदाद को सराहा। जनाब कोइजुमी ने कहा कि इससे इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात का इजहार होता है जिसमें दोनों ममालिक मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत के लिए एक खास मकाम है। मलापुरम के नजदीक कोवालम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग का आगाज हुआ जिसमें जनूबी रियासतों के रहनुमाओं और सीनियर अहदेदारान पैन रियासती तनाजियात, सिक्योरिटी और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कौमी अहमियत के हामिल वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल जारी है जिसमें तेज तर तहकीकात के लिए फास्ट ट्रैक खसूसी अदालतों के कयाम और खवातीन और बच्चों के खिलाफ इस्मतदरी के मामलात के जल्द निपटारे समेत तालीम से मुतालिक मामलात भी शामिल हैं। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में हुआ। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद ने शिरकत की। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोडमैप फजा किया गया जिसकी नकाब कुशाई गुजश्ता

0: साल सितंबर में सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वॉन्ग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसलरी कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालकृष्णन के साथ शामिल हुए। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तामीर करदा 2,35,000 मकानात की चाबियां मुस्तफिदीन के सुपुर्द की। बापू सभानगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नौ मुंतखब मुस्तफिदीन को इजाजतनामे भी तकसीम किए।
1: बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी।
0: जनाब चौहान पटना के BAMETI में कृषि जन कल्याण संवाद में भी शिरकत करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ममलिकत हर्ष मल्होत्रा ने आज दिल्ली के काबीना वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के हमराह नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधे लगाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी हुकूमत इख्तदार में आई है तब से सभी शोबों में मुसलसल तरक्याती काम हो रहे हैं जिसमें माहौलियात का तहफ्फुज भी शामिल है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाब होगा जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इतिहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट यानी जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल करने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुजशत माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था जिसके सबब सदारती इंतखाबात कराना जरूरी हो गया था। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत को लोगों पर मरकूज और इंसानियत पहले के जज्बे से तहरीक याफ्ता बनाने की खातिर पुरअज्म है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अंग्रेजी के एक रोजनामे में अपना मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि ब्रिक्स की भारत की सदारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए काम कर रही है जहां कुरे अर्ज को जामे और पायदार तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वजीर आजम थे। केरलम के सभी साहिली जिलों में आज शाम तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। साहली इलाकों में पानी इकट्ठा होने से मुतालिक भी अलर्ट जारी किया गया है। बैडमिंटन में नई दिल्ली में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी BWF आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वें दर्जे की जोड़ी को शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अल्बी फरहान से होगा। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जुनेद आरिफ और रॉय किंग का प्री क्वार्टर में सामना करेंगे। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्पटेलफिन के विगनियर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मंगल के रोज जनूबी अफ्रीका को 6-1 से हराने के बाद भारतीय खवातीन टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارت بحر الکاہل خطے میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور سیکیورٹی کو مستحکم کرنے کی خاطر

0: India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारी मेरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और

0: औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात

0: में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरूआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। बिना 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो आइए सुनते हैं। कार्यक्रम एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बिना शोर मचाए दिल की गहराइयों में ये उतर जाती है। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई अचानक सामने आता है तो तन्हाई भी हसीन लगने लगती है। रणदीप हुड्डा के किरदार हमेशा से खामोश समंदर की तरह रहे हैं, बाहर से शांत लेकिन अंदर जज्बातों का उफान। जब पहली बार किसी का चेहरा आंखों में ठहरता है तो दिल का हर कोना बस उसी की याद से सराबोर हो जाता है।

श्रोताओं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, किसी को सोचना सिर्फ ख्वाहिश नहीं, एक आदत बन जाता है। फिर दिल चाहता है कि लम्हा यहीं ठहर जाए और वह इंसान कभी भी नजरों से ओझल ना हो। उस एहसास में एक अलग ही तड़प और ताजगी होती है जब आप उस नजदीकी को ताउम्र महसूस करना चाहते हैं।

हमारी श्रोता सुन रहे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार हैं फिल्म अभिनेता रणदीप हुडा। श्रोताओं, जब दो रूहें आपस में जुड़ती हैं तो अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। रणदीप साहब की आंखों में वो संजीदा गहराई है जो बिना बोले सब बयां कर देती है। उनकी मुस्कान, उनकी झुकी हुई नजरें, वो सब कह जाती हैं जो शायद हजार पन्ने भी ना लिख सके। लेकिन मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, एक लंबा सफर है। जहां कभी कभी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, जब जिंदगी इंसान को तनहा रास्ते पर ला खड़ा करती है, तब सच्चा प्यार एक मरहम बनकर बिखेरने से हमें रोकता है। उस बियाबान सफर में भी एक अनजान अपनापन महसूस होने लगता है।

दोस्तों, कठिन कठिन राहों से गुजरने के बाद जब दिल को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें वक्त और दूरी भी नहीं मिटा सकते, तो खामोशी भी एक नगमा बन जाती है। कुछ अनकहे सवाल और अनकहे जवाब हवाओं में तैरने लगते हैं।

दोस्तों, जब कठिन राहों से गुजरने के बाद जब दिल को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें वक्त और दूरी भी नहीं मिटा सकते, तो खामोशी भी एक नगमा बन जाती है। कुछ ऐसे अनकहे सवाल, अनकहे जवाब हवाओं में तैरने लगते हैं, जैसा अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया। सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये पाने से ज्यादा देने में और दुआओं में यकीन रखता है। जब आप खुद को भूलकर सिर्फ अपने चाहने वाले की लंबी उम्र और सलामती की कामना करते हैं, तो यह प्यार अमर हो जाता है।

सामिन अदर्स, ये आकाशवाणी है। सपेर के 3 बज चुके हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के नशियात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस के नशियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर नाले प्रोग्रामों पर। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नक में मेरी पसंद।

0: वीडियो में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हो जाते हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: खबरें सुनिए। भारत और जापान ने दिफाही साझेदारी को मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बहरी सलामती शराख से मुतालिक मफाहमत के एक इकरारनामे पर दस्तखत किए। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर हुआ। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मरतबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तेरेसा जोली और गायत्री गोपी चंद BWF आर्मी चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं और आज शाम FIH हॉकी आर्मी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। खबरें तफसील से। भारत और जापान के वज़रा दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। वज़रा दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हम मनसब ने मीटिंग की मुश्तरक तौर पर सदारत की। बातचीत के दौरान बाहरी सलामती में इजाफा करने, मेक इन इंडिया दिफाई टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक एतमाद को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों वजीरों ने बाहरी सलामती से मुतालिक मफाहमत के इकरारनामे पर दस्तखत किए। अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब सिंह ने जापान के कुमामोतो खित्ते में आए तबाहकुन जल्जले में नुकसान पर सरकार और भारत के अवाम की हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। जनाब कुइजुमे ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय बहरिया की जानिब से फराहम की गई इमदाद को सराहा। जनाब कुइजुमे ने कहा है कि इससे इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात का इजहार होता है जिसमें दोनों ममालिक मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत के लिए एक खास मकाम है। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में हुआ। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलकत जितिन प्रसाद ने शिरकत की। ISMR का मैकेनिज्म नए उभरते हुए शोबों में इश्तराक को वसत देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की पहली मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जाम स्ट्रेटजिक शराकत दारी रोड मैप वजह किया गया। इस दौरान डॉ जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हमनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जाम स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत वसत देने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इसके बाद डॉ जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसलर कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालाकृष्णन के साथ शामिल हुए। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत को लोगों पर मरकूज और इंसानियत पहले के जज्बे से तहरीक याफ्ता बनाने की खातिर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर अंग्रेजी के एक रोजनामे में अपने मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि ब्रिक्स की भारत की सदारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए काम कर रही है जहां कुर्रे अर्ज को जामे और पैदा तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू ने आइंदा ब्रिक्स समिट 2026 की तैयारियों के सिलसिले में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। ब्रिक्स समिट नई दिल्ली में आइंदा महीने की 12 और 13 तारीख को होगी। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब संधू ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बिला रुकावट तालमेल और सभी महाजों पर मुकर्रर वक्त में काम मुकम्मल होने की जरूरत पर जोर दिया। भारत की बरामदात में आजाद तजारती समझौतों को बरोए कार लाकर मैन्युफैक्चरिंग में इजाफे के लिए पीएलआई का इस्तेमाल करके सप्लाई चेन को मुस्तहकम और मार्केट्स को मतनवे बनाकर तेजी लाई जानी चाहिए। कॉमर्स महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी यशवीर सिंह ने यह बात भारतीय सनत मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव की तीसरी कॉन्फेडरेशन के इफ्ताही इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नए आजाद तजारती समझौतों से एक मोतबर और आलमी मुसाबकती मैन्युफैक्चरिंग मरकज बनने के सिलसिले में भारत के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाब हो रहा है जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर पिछले महीने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके सबब सदारती इंतखाब कराना जरूरी हो गया था। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वजीर आजम थे। भारत ने काबुल में एक सरकारी अस्पताल को दवाएं और दिगर तिब्बी अशिया फराहम की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत के इस कदम से अफगानिस्तान के दोस्त अवाम की हिफ्जान सेहत की जरूरतों में मदद करने के भारत के मुसलसल अज्म की अक्कासी होती है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई मिसाइल दागे जिससे 6 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। यूक्रेन की हंगामी खिदमात के अधिकारियों ने बताया है कि 3 जिलों में 12 ठिकानों पर हमले किए गए जिससे रिहायशी इमारतों, एक अस्पताल और एक तालीम इदारे को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने के वाके में तकरीबन 12 मकान तबाह हो गए जबकि 2 मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। जम्मू शहर से 12 किलोमीटर दूर वाके खेरी और बंतालाब से मुतसिल इलाकों में जमीन धंसने के वाकयात पेश आ रहे हैं। हुक्काम नुकसान का जायजा ले रहे हैं और सूरत हाल पर नजर रख रहे हैं। बैडमिंटन में नई दिल्ली में तिरिसा जूली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वें दर्जे की जोड़ी को शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगा। मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जुनैदी आरिफ और रॉय किंग का प्री क्वार्टर फाइनल में सामना करेंगे। एफआईएच हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। यह मैच वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त मुताबिक शाम 6:30 शुरू होगा। मंगल के रोज जनूबी अफ्रीका को 6-1 से हराने के बाद भारतीय खवातीन टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत और जापान ने दिफाई साझेदारी को मुस्तहकम करने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बहरी सलामती इश्तराक से मुतालिक मुफाहमत के एक इकरारनामे पर दस्तखत किए। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का 4th दौर हुआ। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली बार सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तिरिसा जूली और गायत्री गोपीचंद बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज शाम एफआईएच हॉकी عالمی کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
0: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند. اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش رفیع صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت نغمہ.

और यह भीगी रात फिल्म का दुगाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ। नगमा निगार मजरूह, मौसीकी रोशन की।

मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश है अदालत फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नवानिगार राजेंद्र कृष्ण और मौसीकी तरतीब दी मदन मोहन ने।

और ये है मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म छैला बाबू का नगमा, हसर जयपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश और इसके साथ ही अपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत। मेरे वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशात का सिलसिला आकाशवाणी से जारी है। और ये जब सुनिए अंदाज़े नजर, मौजू है टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम, नई राहें और चुनौतियां।
1: से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सरेके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अब ये कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तमाम सामीन की खिदमत में मुदस्सर राशिद शमसी का पुरखलूस आदाब। सामीन अंदाज़े नजर प्रोग्राम में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। यह वो प्रोग्राम है जिसका हर लम्हा उम्मीद, जज्बे और हौसले की खुशबू से महकता है। जी हाँ,

0: हिस्सा बनती जा रही है और दुनिया की बेहतरीन किताबें और रिसर्च सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या टेक्नोलॉजी ने तालीम को वाकई ज्यादा आसान और इम्पैक्टफुल बना दिया है, या फिर इसने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शंस, मालूमाती अफराद और शॉर्टकट्स की तरफ भी धकेल दिया है? क्या डिजिटल तरक्की के इस सफर में हमारी तहजीब, जुबान और तनकीदी सोच भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? इन्हीं अहम सवालात और उनसे वाबस्ता पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम, नई राहें और चुनौतियां। इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे नौजवान मेहमान मौजूद हैं जो अपने अपने शोबों की नुमाइंदगी करते हुए अपने तजुर्बात और अफकार हमारे सामने तक पहुंचाएंगे। तो आए बगैर किसी ताखिर के उनका तारुफ कराते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शाहनवाज हाशमी सर, जिनका ताल्लुक सहाफत से रहा है, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफात साहब, जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं और साथ ही साथ लॉ के स्टूडेंट भी हैं। तो सफात साहब, अपने बारे में बताएं और साथ ही साथ लीगल एजुकेशन पे टेक्नोलॉजी का क्या असर रहा है?
1: मेरा नाम मोहम्मद सफात खान है। मैंने अपनी LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी, फैकल्टी ऑफ लॉ से। मेरे को करीब 1 से 1.5 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस लड़ता हूँ। मेरा लॉ से नाता करीब 2017 से जुड़ा हुआ है, जब मैंने अपना CS का कोर्स स्टार्ट करा था, और तब की और आज की पढ़ाई में काफी बड़ा अंतर आ चुका है। उस टाइम पे किताबों पे रिलायंस ज्यादा थी, ऑनलाइन सिर्फ आपको आर्टिकल पढ़ने को मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप AI से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। तो इसका पढ़ाई पे तो ऐसा असर पड़ा है कि कहीं ना कहीं चीजें ढूंढनी बहुत आसान हो गई हैं। जो कभी मोटी मोटी किताबें हमें पढ़ने पड़ती थी, अब हम सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं। इसका डाउनसाइड ये रहा है, इसी सिनेरियो में अगर हम देखें, सीधा AI से सवाल पूछ सकते हैं तो एक कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन और डीप लर्निंग जो हुआ करती थी, डीप रीडिंग और थोरल रिसर्च, वो सब अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि एक ही सर्च, एक ही सेंटेंस में हम सीधा अपना सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसका फील्ड में मैं बोलूंगा कि उससे भी पॉजिटिव भी रहा है इम्पैक्ट एज एन वकील, पर अगर कोई नया ज्वाइनर है तो उसके लिए काफी बुरा इम्पैक्ट भी माना जा सकता है। क्योंकि AI बहुत अच्छा है डेटा एनालिसिस में, तो AI आपके काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत जल्दी पढ़ के आपको आउटकम दे सकता है। जिन चीजों में पहले महीने लग जाते थे हजारों डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में, AI अब वो 1 घंटे में कर सकता है। इससे नुकसान ये रहा है कि जैसे कि AI के और भी फायदे हैं कि AI आपके लिए रिसर्च कर देगा, केस को समराइज कर देगा, जो भी लीगल स्ट्रेटजीज आप लगाना चाहते हो AI उसके साथ आप AI के साथ बात कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग AI आपको आंसर्स भी ड्राफ्ट कर देगा। AI आपको पहले से एनालिसिस करके बता सकता है जजेस की जजमेंट पढ़ के कि ये जज किस टाइप की जजमेंट देगा, जिससे आप अपना केस उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। इससे चीजें काफी ज्यादा ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, और आने वाले टाइम में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे पहलू भी निकल के आएंगे। एक जो नया पहलू निकल के आ रहा है वो है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बेसिकली जिसके लिए पहले आपको वकील हायर करना पड़ता था, अब आपको जो AI की एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी है उससे ही आप सीधा जाके अपने डिस्प्यूट रिजोल्व करा सकते हो। ये खासकर जो आपके छोटे डिस्प्यूट हैं या कोई फैमिली के रिगार्डिंग डिस्प्यूट हैं, उन चीजों को सॉल्व करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले टाइम पे। और सरकार ने इस पे एक लीगल रिसर्च पेपर भी जारी किया था। इम्पैक्ट इसका बुरा इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका, कि एक तो अब क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, तो जो खासकर बड़ी लॉ फर्म्स हैं या बड़े डेटा सेंटर हैं जहां पे बहुत सारा डेटा इकट्ठा हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि उन डेटा को चुरा के एडवांटेज ली जा सकती है। और क्योंकि जो खासकर AI है टेक्नोलॉजी, वो एल्गोरिदम पे वर्क करता है, और जो एल्गोरिदम है पिछले डेटा के ऊपर वर्क करता है, तो जो भी पिछले डेटा में बायसेस हैं या चीजों को लेके फर्क रखा गया है, वो सारी चीजें अब AI के अंदर भी आ रही हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एग्जांपल ये हुआ था कि 2022 या 23 में ये चीज निकल के आई थी कि अमेरिका में जो काले लोग होते हैं उनके डॉक्टर जो उन्हें रिकमेंड कर रहे थे वो अप टू द मार्क नहीं था जो गोरे लोगों को दिया जाता था, سے رزلٹ یہ رہا.

0: फिर ये चीज निकल के आई कि कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन था जो एआई के थ्रू डिटेक्ट हुआ।
1: जी सफर साहब, आपसे बात करेंगे और आपने किताबों के बारे में बहुत अच्छी बात कही, किताबों को रिप्लेस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है किताबों को रिप्लेस कर रही है एक तरह से। जी शहनवाज साहब, तो जैसे कि अभी पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप सहाफत से ताल्लुक रखते हैं और अभी जैसे सफाज साहब बता रहे थे, जैसे किताबें जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी जो है रिप्लेस कर रही है, तो ये कहां तक नौजवान को लिए अच्छा है?
2: देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि किताबों का जो मसला है, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि मैं शहनवाज हाशमी हूं और दरसो तदरीस के साथ साथ मेरा सहाफत से भी रिश्ता रहा है, मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी हूं और जो चीजें मैंने देखी है। और किताबों के हवाले से अगर हम बात करें, किताबों के हवाले से आपने कहा कि रिप्लेस किया जा रहा है, किताबों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पहली चीज तो ये अपने जहन में बिठा लीजिए कि किताब की जो अहमियत है वो मुसल्लम है, थी, है और आइंदा भी रहेगी। हम बात करते हैं पढ़ाई पे, यहां जो चीजें आ रही हैं, नो डाउट जो चीजें हमारे बीच में आती हैं, अपने साथ जो भी इनकलाबात हर जमाने में हुए हैं, अपने साथ कुछ खुश आईन चीजों के साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी लेकर आती हैं, वो चीजें आज हमारे सामने मौजूद हैं। आज के नौजवान यानी हम लोग जो है एआई पे बिल्कुल बेस्ड होते जा रहे हैं, उसमें मुनहसर होते जा रहे हैं, ये चीज हमारे लिए एक तशवीश का बायस है कि हम उसके ऊपर मुनहसर होते जा रहे हैं, उसके बिना हम कोई काम ही नहीं कर सकते। दूसरी बात कि सहाफत की अगर हम बात करें, जिससे मेरा ताल्लुक है, कि सहाफती दुनिया में एआई ने बड़ा इंकलाबी रोल अदा किया है
1: जी।
2: और होना भी चाहिए, क्योंकि पहले हम कुछ लिखते थे, कोई रिपोर्ट लिखते थे, कोई खबर लिखते थे, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को जांचना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था, उसके बाद हम उन चीजों को लिख पाते थे। एआई ने अब ये हमारे लिए ये आसान कर दिया है, इस मसनूई जहानत ने आसान कर दिया है कि हमें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को एक क्लिक में ही, जैसा आपने शो में कहा कि एक क्लिक में ही वो सारी चीजें बता देते हैं कि इन चीजों पर पहले लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, कैसे किया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपका रिश्ता किताबों से रहा है तो आप वहां तक पहुंचेंगे और समझ पाएंगे कि जो बता रहा है, जो मसनूई जहानत हमें अपने जहन की तरफ मुतवज्जो कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है।
1: सही बोल रहा है जी सर। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डिपेंडेंट नहीं होना है, आजकल हम जो है डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई पे, नौजवान जो डिपेंडेंट होता जा रहा है, और जैसे अभी आप बात कर रहे थे डीप फेक की, जो आजकल बढ़ता जा रहा है, तो सफाज साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो आप नौजवानों को क्या लेसन एक सीख देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, ये कैसे वो इससे बच सकते हैं?
0: जी, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम जब साइबर क्राइम की बात करते हैं और डिजिटल फ्रॉड की, तो जो मैं नियम मान के चलता हूँ, इन्हें मैं गोल्डन रूल बोलता हूँ, वो ये है कि कभी भी अपना ओटीपी या फिर यूपीआई का नंबर या पासवर्ड या कोई भी अपनी बैंक की डिटेल्स पब्लिकली शेयर या फिर किसी को भी व्हाट्सएप पे ना। दूसरी चीज जो मैं करता हूँ हमेशा, जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आती है कि फलाना के पास इतने, फलाना को इतने पैसे चाहिए, या आपके अकाउंट में इतने पैसे गलती से आ गए, या फिर एक आजकल बहुत चल रहा है कि आपकी फलाने जगह पे जाते हुए ड्रग्स पकड़ी गई हैं और आप इतने पैसे दे दीजिए नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। सो ये सारी जो चीजें हैं ये साइबर फ्रॉड के तरीके हैं। इनमें सिर्फ तरीका यही है कि आप प्रोसीजर को समझिए कि अगर कभी भी पुलिस आपको अप्रोच करेगी तो वो बिना वारंट के नहीं करेगी, और अगर आपको बिना वारंट के करेगी तो आपको सीधा जेल लेके जाएगी। कभी भी वो आपको फोन पे ये नहीं बोलेगी कि इतने पैसे आप भिजवा दीजिए नहीं तो आपको अरेस्ट कर दिया। ये आपको सिर्फ अरेस्ट कोर्ट के ऑर्डर पे ही करा जा सकता है,
2: बिल्कुल,
0: और किसी तरीके पे से नहीं करा जा सकता।
2: कई बार ऐसा होता है सुभाष साहब कि मेल भी आते हैं लोगों के पास, और मेल पे बाजाबता कोर्ट का नाम भी होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ ये किया है, तो इसको आप क्या कहते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? और देखिए, आम आदमी इसको देख करके तो डर जाता है, वो थाने में जाए या फिर उस एड्रेस पे जाए, क्या करे वो?
0: देखिए, जब भी आपको कोई कोर्ट से ऑर्डर आए या केस का नंबर आए तो आप सबसे पहले एक वकील से जाके क्रॉस चेक करवा लीजिए, क्योंकि अगर केस का नंबर आया है तो केस चल रहा है, और अगर केस चल रहा होगा तो वो कोर्ट के रिकॉर्ड में हमेशा अवेलेबल होगा, उसके पे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं आपको, डिटेल्स भी मिल सकती है। और जैसे दिल्ली हाईकोर्ट का ही आपने एग्जाम्पल लिया, तो दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो इन चीजों से आप घबराए ना, लिहाजा आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि ये सब एक चुनौती की तरह आती है लेकिन इनका कोई आउटकम नहीं होता।
2: सुभाष साहब, आप ये बताइए कि आपने जैसा अपना तारुफ करवाया कि आप

0: मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, आप किताबों से ज्यादा क्या वेबसाइट पे या इंटरनेट पे या मसलन जहालत?
1: मैं नहीं मानता कि किताबों से ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएं। मैंने वही कहा कि डिपेंडेंट अगर आप किसी चीज पे हो जाते हैं तो आप समझिए अपना क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, जो आप खुद सोच का जो माइंड है आपका, वो आप खत्म कर जाते हैं अगर आप डिपेंडेंट होने किसी चीज पे। तो टेक्नोलॉजी पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना है। आप टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चल सकते हैं। आज का जो आगे वाला जो दौर आ रहा है उसमें अगर हम जैसे हम देखते हैं आजकल किताबें जो हैं वो फुटपाथ पर आ गई हैं और मोबाइल जो है वो शोरूम में नजर आते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें किताबों को वापस उसी जगह पे लेके जाना है, क्योंकि हम लोग किताबों की आज अहमियत नहीं दिखती है हमें। आज का नौजवान जो है, आप देखिए कितने लोगों के हाथ में आपको किताबें दिखेंगी। मैं भी यहाँ से स्टूडियो तक आ रहा था, रास्ते में मेट्रो में देख रहा था, एक नौजवान के हाथ में किताब नहीं थी, पर सबके हाथ मोबाइल फोन था, टेक्नोलॉजी थी। तो इसमें हम डिपेंडेंट इतने हो चुके हैं कि हम किताबों को छोड़ते जा रहे हैं। जहां हमें किताबों को अपना दोस्त बनाना है, आज हम मोबाइल को दोस्त बना रहे हैं।
0: आपके दोस्तों में से ही इंक्लूडिंग यू, आप भी उसमें शामिल हैं कि किताबों के साथ कितना वक्त गुजार।
1: बिल्कुल, आज के दौर में किताबों के साथ जो वक्त है वो मेरा भी बहुत कम होता जा रहा है, जबकि मैं कोशिश करता हूं कि मोबाइल को जितना हो सके उतना दूर रखा जाए। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी को आज इतना कहना चाहिए कि हम मोबाइल के इतना ज्यादा आदि हो चुके हैं कि उसके बगैर तो शायद आज किसी के जेब में कुछ हो ना हो, मोबाइल जरूरी है और मोबाइल में इंटरनेट होना बहुत जरूरी है आजकल। तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना है आपको। हाँ, कह सकता हूँ मैं कि जब पहले के दौर में जब डिक्शनरी एक बहुत बड़ी चीज है, डिक्शनरी के टाइम में आपको सर्च करना होता था कि भाई डिक्शनरी में ढूंढना होता है, आज एक क्लिक पे आप अपना कोई मीनिंग ढूंढ सकते हैं।
0: लेकिन डिक्शनरी के एक फायदे भी थे, आप एक लफ्ज को ढूंढने जाते थे और आप कम से कम 20 से 50 नए लफ्ज से आपकी शनाशाई हो जाती थी, लोगों से आपकी जान पहचान हो जाती थी, इतने लफ्जों से आपकी जान पहचान हो जाए करती थी। बिल्कुल
1: जी। तो जैसे कि लाइब्रेरी में अगर मैं देखूं तो अपनी हमारी जो लाइब्रेरी थी कॉलेज की, आज लाइब्रेरी में किताबें धूल खा रही हैं। और यहां तक कि मैंने देखा लाइब्रेरी में बच्चे फोन चला रहे होते हैं। तो ये आज की हालत हो चुकी है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो जहन है, जो हमारा कहना चाहिए, और जो तालीम में जो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है कि आप के पास क्रिएटिविटी हो।
0: बिल्कुल।
1: और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग जो है रोजगार के पीछे दौड़ रहे हैं आजकल। ये बिल्कुल सही बात है। और हमें ये बात, जैसे उर्दू की अगर मैं बात करूं तो आज की जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू पढ़ नहीं पाती, उर्दू लिख नहीं पाती, लेकिन उर्दू सुनती है तो लुत्फ उठाती है। तो आजकल हम कहां जा रहे हैं, हम रोजगार की तरफ ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कहां रोजगार है, नहीं जा रहे हैं। जबकि हम ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि रोजगार जिंदगी के लिए होता है, जिंदगी रोजगार के लिए नहीं होती है।
0: साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले भी आपने कहा था और अभी आपने ये कहा कि जब हम परेशान होते हैं, जब हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं, जब हम अपने आप को तफरी के बीच में यानी इंटरटेनमेंट रखना चाहते हैं, तो हम उर्दू की तरफ जाते हैं, उर्दू सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा खमियाजा हम ये देख रहे हैं, जैसे हम किताबों से अलग होते जा रहे हैं, मसनूई जहानत के करीब होते जा रहे हैं, तो हम यही बात नहीं आ जाती है फिर मसनूई जहानत को हम किस तरह से अपने अंदर लेकर आए और किस तरह से उसका सही इस्तेमाल कर पाए। जब तक हम उस लफ्ज को समझेंगे नहीं, उस लफ्ज से मेरी शनासाई नहीं होगी, हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उस लफ्ज के करीब हम कैसे पहुंचेंगे। हमने एआई से कहा कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं अपने दोस्त को एक शेर सुनाना चाहता हूं। अब एआई ने एक ऐसा शेर मेरे सामने रख दिया जिसमें ऐसे ऐसे लफ्ज थे जिसके माने मुझे खुद पता नहीं, और मैंने वो अपने दोस्त को सुना दिया। तो अब क्या होगा उसका, क्या उस दोस्त को अगर आती है उर्दू और उसने समझा उस शेर में, उसने कहा कि ये मेरी तारीफ नहीं बल्कि मेरी तोहीन है, तो आपने तारीफ के बजाय तोहीन कर दी किसी की, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी ना। तो लेकिन एक ये सच है कि एआई जो है, लोगों की जो मेहनत है, जो पढ़ने लिखने की जो ताकत थी, जो सलाहियत थी, उसको कम करती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है, मुझे जाती तौर पर मुझे लगता है कि बाजार में उर्दू के या दूसरी जबानों के रोजगार में भी मौके में कमी आ रही है।
2: जी
0: सफा साहब, आप कुछ कहेंगे कि इस मौके को कैसे बढ़ाया जा सकता है या किस तरीके से इसको दूर किया जाए?
2: जी देखिए, मैंने जो अपनी जिंदगी में उर्दू के बारे में देखा है या फिर और भी भाषाओं के बारे में, वो ये है कि जब हम उसे अंग्रेजी भाषा के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका मीडियम कितना वास्टली अवेलेबल है इंग्लिश का। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट में हिंदी या उर्दू, खास करके उर्दू को, तो हम देखेंगे कि उर्दू के ना तो कोई बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर है।
1: तो सफान साहब, मुझे आपसे थोड़ा सा ये जानना था कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है। आज कुछ टेक्नोलॉजी है, एक महीने बाद कुछ टेक्नोलॉजी हो जाएगी. जैसे अगर हम एआई की बात करें तो बदलता जा रहा है, नए नए उसके जो वर्जन है वो आते जा रहे हैं. तो ऐसे दौर में सुनील क्या करे, कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाए, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ लेके चले इसको.
2: जी इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट करता था तो एक प्रिंटिंग प्रेस जब थी वो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, तो यूरोप ने उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करा पर ऑटोमन एम्पायर ने उसके खिलाफ एक फतवा निकाल दिया कि ये गैर इस्लामिक है. इससे ये फर्क पड़ा कि यूरोप जो है वो बहुत तेजी से डेवलप करता चला गया और जो ऑटोमन एम्पायर था वो पीछे चला गया. यही फिलॉसफी जो है मैं मानता हूँ दुनिया की सारी आती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर अडेप्ट होती है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो जितनी भी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही हो आप कभी पीछे नहीं हट सकते उसे अडेप्ट करने से. अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आप अपने आप को पीछे कर रहे हैं समाज से.
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी चीज के खिलाफ अगर हम जाते हैं उसका रद्द अमल ये होता है कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करें, जबकि वो हवा बहुत तेजी से आ रही है और हम उस हवा के साथ नहीं जाते हैं बल्कि उसके मुखालिफ शरीफ में जाते हैं. तो मुखालिफ से भी हमें ऐसा तैयार करना चाहिए जो उससे कहीं तेज हो. अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम पीछे होते हैं, ये तो सच है.
1: जी तो साहब एक बात मुझे आपसे थोड़ा सा जाननी थी. हमने बताया आप नौजवानों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं, तो आपने बताया कि जो नौजवान है वो एआई को अपना दोस्त मान रहा है, टेक्नोलॉजी को दोस्त मान रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे जो है जो जो बच्चा है जिसका जो असल जो दोस्त होना चाहिए वो उससे दूर हो रहा है, अपने माँ बाप से दूर हो रहा है, जो उसको अपने दोस्त बनाने चाहिए वो उनसे दूर हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ज्यादा करीब आके वो अपने आप को कहीं ना कहीं क्या चाहिए इंट्रोवर्ट करता जा रहा है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. किसी शायर ने भी कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहां से बच के निकलना है और कहां जाना जरूरी है, कि अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है. तो ये मामला तो हमेशा से रहा है कि आप अपोजिट चीजें आपके पास आती हैं, लेकिन ये आप क्या हैं यहीं पे सवाल आता है. और आपने जो कहा कि एआई को लोग जो है अपना दोस्त मान रहे, दोस्त नहीं मान रहे हैं. एक बात मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे नौजवान हैं हमारे जो साथी हैं वो उसको दोस्त नहीं मान रहे हैं बल्कि उसको एक फरार का रास्ता मान रहे हैं कि हमें ये बचा लेगा. दोस्त नहीं है. दोस्त तो क्या करता है, सवाल भी करता है ना. दोस्त से तो उससे उम्मीद भी करता है ना. दोस्त जैसे मैं आपका दोस्त हूं तो मैं चाहूंगा ना कि आप मेरे पास भी आए, मुझे भी वो दे, सिर्फ मैं ही आपको दोस्त क्यों दूं. लेकिन अगर आप किसी को फरार का रास्ता कहते हैं कि इसके नाम पर हम बच जाएंगे, तो आपने फरार का रास्ता चुन लिया है कि आप अपनी मेहनत को बचाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आपको अपने इल्म से भागना है, अपने मेहनत से भागना है, अपने करियर से भागना है, अपने समाज से भागना है, अपने घर से भागना है, अपने रिश्तों से भागना है. इन सारी चीजों से फरार का जो रास्ता आपको नजर आया वो मस्नूई जहानत नजर आया कि आप उसके पास चले जाते हैं और आपसे कोई काम कहा जाता है कि ये पढ़ कर आना, ये समझ कर आना, आप उसको कह देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, वो आपको जवाब दे देता है, वही जवाब आपके मनमान आकर बयान कर देते हैं, तो सामने वाला समझता है कि आपने उसको पढ़ा है समझा है.
2: जी इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो आपने बात करी है वो दोनों ही सही है, क्योंकि ऐसा भी चल रहा है कि आजकल एआई का इस्तेमाल करके लोग एआई को प्रॉम्प्ट ऐसा दे देते हैं कि वो उनके दोस्त ही बन जाए और वो सिर्फ उनसे दोस्तों की तरह बात करते हैं. कहीं ना कहीं ये वो फरार भी है कि उन्हें असली दोस्त ना बनाने पड़े समाज में. कहीं ना कहीं वो इसे एज एन फाइनल रेजोल्यूशन भी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो इसे कंपेनियन भी देख रहे हैं कि यही अब हमारा दोस्त है.
0: नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैंने क्या कहा कि अगर दोस्त बना रहे हैं तो आपको उसके साथ वक्त गुजारना होगा ना. वही तो मैं भी कह रहा हूं आपको कि वक्त गुजारना पड़ेगा. आप वक्त नहीं गुजार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि जब जरूरत होती है तब उसके पास जाते हैं. आप जरूरत के अलावा भी उसके पास जाइए, उससे बात कीजिए, उसे समझिए, अपनी बात उसको समझाइए, तो समझ में आएगा ना कि वो क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं.
1: जी जी जी शाहनवाज साहब, चलो शाहनवाज साहब ने जैसे अभी सफा साहब कहा कि वो हमें बचा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जॉब जो है वो बचा रहा है या जॉब को खा रहा है एआई?
2: देखिये एआई के साथ जो है, एआई जैसे जब आते हैं सॉफ्टवेयर्स खास करके, जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी आती है तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी होती है, जैसे जब आईफोन आया था मार्केट में तो बैंकिंग जो थी वो ऑनलाइन हो गई थी. इससे क्या हुआ था, जो बैंक टेलर्स होते थे उनका जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई थी. अभी भी बैंक टेलर्स होते हैं लेकिन अब उतने नहीं होते जितने पहले के जमाने में होते थे. तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी बंदे का काम ऐसे कर दे कि वो कंज्यूमर अपने हाथों से खुद कर दे, जैसे कि एआई आज के टाइम पे कर रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ, एआई आजकल कर रहा है आपके उसके साथ क्या कहते हैं विजुअल बनाने के साथ, या फिर पोएट्री लिख देता है या फिर म्यूजिक बना देता है, तो ये सारी जॉब्स में सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारी लीगल फील्ड में भी ड्राफ्टिंग और रिसर्चिंग में सीधा इम्पैक्ट इसका देखा जा सकता है।
0: बिल्कुल देखा जा सकता है, मैंने जैसा कहा था फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने दोस्त बनाया है तो दोस्त बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको जानते हैं। आपने अगर एआई को समझ लिया तो आपके लिए जॉब ओरिएंटेड है, जॉब क्रिएटर है। अगर आपने उसको सिर्फ फरार का रास्ता बनाया हुआ है, यानी जब जरूरत पड़ती है तो उसके पास जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह बना रहा है, तो आपकी जगह तो खत्म कर दिया क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। और जमाने की जो मांग है, जो डिमांड है, वो क्या है कि जल्दी है। अब जल्दी जब आप समझ ही नहीं पा रहे तो आपकी जरूरत तो वहां होगी नहीं। तो आपने जैसा कहा कि जॉब खा रहा है, बिल्कुल जॉब खा रहा है। अगर आप एआई को नहीं समझते हैं, मस्नूई ज़हानत के जहन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी जॉब तो
2: इधर एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि जो जॉब्स में वो कंज्यूमर ओरिएंटेड ना हो के प्रोफेशनल ओरिएंटेड है, जैसे कि रेडियोलॉजी में एआई के थ्रू डिटेक्शन करी जा सकती है
0: बिल्कुल
2: परेशानी की, तो वहां पे रेडियोलॉजिस्ट बढ़ रहे हैं। तो एक जगह जहां नौकरी खत्म भी हो रही है वहां नौकरियां बढ़ भी रही हैं, और ये डिपेंड करता है कि एआई का कमांड किसके हाथ में, उससे पता चलेगा।
1: बिल्कुल यही बात। और अगर सहाफत की बात करें तो सहाफत में कहा जाता है कि जो एआई है, टेक्नोलॉजी है, वो उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रही है।
0: देखिए, रिप्लेस नहीं कर रही है, मैं फिर वही कहता हूँ कि रिप्लेस नहीं कर रही है, तेज कर रही है। अगर तेज कर रही है और आप उस तेजी के साथ उसके कदम से कदम जब आप नहीं मिलाकर चल पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप पिछड़ जाएंगे, और आप जब पिछड़ जाएंगे तो कोई दूसरा जो उस तरह से उसके अंदर उतनी तेजी है, उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आएगा। और तेज चलने वाले आप देखेंगे कि हर जगह अगर 10 लोग चलने वाले हैं तो 10 लोगों में से तेज चलने वाले 50% नहीं होंगे, मुश्किल से 30% होंगे, यानी तीन लोग ही, 10 में से 3 लोग ही तेज चल पाएंगे, तो बाकी 7 लोग तो पिछड़ गए ना। तो इस तरीके से नौकरियां भी खत्म होंगी, नो डाउट। अब इसमें यह हुआ है कि सहाफती दुनिया में जहां पे हमें बहुत तहकीक की जरूरत पड़ती थी, रिसर्च की जरूरत पड़ती थी, उस तहकीक और रिसर्च को इसने बहुत आसान कर दिया है कि जब हम उसको डालते हैं, प्रॉप्ट डालते हैं, तो सारी चीजें हमें बता देता है, एक क्लिक में बता देता है कि ये चीजें कहां कहां कैसे हुई हैं, और इस सानहे को, इस वाकये को, या इस खबर को यहां तक पहुंचने में किन किन चीजों के साथ मिलकर के यहां तक पहुंची है, या किन चीजों का इनको सामना करना पड़ा है, ये एक चीज समझ में आ जाती है तहकीक के हवाले से। दूसरा मामला ये आता है कि पहले हम ग्राफिक के जरिए फोटोग्राफी करते थे, वीडियोग्राफी करते थे, बनाते थे, चीजों को बनाते थे, तो उसमें भी वक्त दरकार होती थी, काफी वक्त लगता था उसमें, और कई लोग मिलकर के एक ग्राफिक तैयार कर पाते थे। अब क्या हुआ है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और वो ग्राफिक सेकंड में तैयार कर देता है, मिनट में नहीं बल्कि सेकंड में तैयार कर देता है। तो जाहिर सी बात है जो ग्राफिक बनाने वाले जो लोग थे उनकी जगह तो कम होगी, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, अगर ग्राफिक बनाने वाले ने एआई को अपना दोस्त बना लिया है, एआई को वो समझता है, तो वो उसके अंदर भी कमियां निकालेगा और उससे कहीं बेहतर ग्राफिक खुद तैयार करेगा, उससे लेने के बाद भी उसमें एड ऑन करके वो अपनी चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगा, तो उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी।
1: जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी उसमें ये कॉपीराइट का बहुत बड़ा सवाल आता है फाज साहब, एक सवाल आता है कॉपीराइट का, जैसे उन्होंने बताया कि जनरेटेड जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है, टेक्नोलॉजी कोई भी कंटेंट बना रही है, तो उसका कॉपीराइट का हक किसके पास है, कौन उसका ओनर कहलाएगा?
2: यहाँ पे एआई के मामले में क्या परेशानी चल रही है कि अभी एआई में जो एआई बनाने वाली कंपनियां हैं और जो प्रॉपर्टी या कॉपीराइट ओनर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसमें आगे जाके हम लीगल केसेस भी देख सकते हैं। इस सिनेरियो में अभी बोलना मुश्किल है कि आउटकम क्या रहेगा, क्योंकि ये पता चलेगा कि जजमेंट किसके फेवर में फ्यूचर में आती है। एक टाइम था जब ना गूगल में भी फ्री बुक्स अवेलेबल हुआ करती थी, फिर गूगल का बहुत फेमस लीगल केस चला था जब ना गूगल हार गया था, तो उसके बाद से गूगल बुक्स स्टोर पर आपको पेड बुक्स मिलने लगी थी, लेकिन ये जो चीजों के आउटकम है ये अभी एग्जैक्टली नहीं बताए जा सकते। एक इसी से जुड़ा हुआ मेरे मन में एक लीगल सवाल भी आता है
0: जी,
2: जिसका भी मैं खुद भी जवाब ढूंढ रहा हूँ, वो ये है कि अभी कुछ महीने पहले एक केस आया बड़ा इंटरेस्टिंग
0: जी,
2: एक बच्चा एज एन कंपेनियन की तरह एआई को इस्तेमाल कर रहा था, वो डिप्रेस था
0: जी,
2: और एआई को इस्तेमाल कर रहा था एज एन थेरेपी, तो उसने सुसाइड कर ली। और जब इसकी तहकीकात हुई तो पता चला कि एआई जो था उसे प्रमोट कर रहा था सुसाइड करने में।

0: तो जब ऐसे सिनेरियोज आते हैं या फिर कोई गलत एडवाइस आ रही है या कोई एआई जो है आपको कहीं नुकसान पहुंचा देता है इंटरेक्शंस में, सोशल इंटरेक्शन में, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर किस पे आएगी?
1: बिल्कुल।
0: तो इसका कहीं ना कहीं, क्योंकि ना तो हम बंदे के ऊपर नाम डाल सकते हैं।
1: बेहतर सफा साहब, आपने जो कहा वाकई ये सोचने का मकाम है और इस पे सोचा भी जा सकता है और सोचा जा रहा है यकीनन, कि जैसा इन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए उसको आगे बढ़ाया, एआई ने उसको प्रमोट किया। उसके अलावा आज जो पढ़ने वाले जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, जो अपना असाइनमेंट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, पेपर देने के लिए उसका इस्तेमाल करता है, अपनी किताबों की समरी हासिल करता है उससे,
0: जी
1: तो क्या आपको लगता है कि हमारा नौजवान तबका इससे बाहर निकलकर एआई को उसी अंदाज में इस्तेमाल करेगा जिसकी वो हकीकतन उसकी जरूरत है, या फिर वो वैसे ही फरार का रास्ता इख्तियार करेगा?
2: देखिए, अभी मुझे जहां तक लगता है जो नौजवान नस्ल है, जो हम लोग हैं, वो एआई का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर मैं छोटी सी अगर छोटे से एक आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखने के लिए भी बच्चा आजकल इस्तेमाल कर रहा है एआई का, तो अगर उसे एक एआई एक एप्लीकेशन खुद से लिखना नहीं आएगी तो वो आगे जाके क्या करेगा? तो उसको अगर इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का, करे, पर उसको साथ लेकर चले। खुद का जहन का बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज आई, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, कंप्यूटर आया, जो भी चीजें आई, उसने कभी भी ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल ही उसकी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं असर डाला। जैसे टीवी आया था तो उसने बहुत हद तक बच्चों के जो सोचने का तरीका था या उसका जो क्रिएटिव माइंड था उसको कहीं ना कहीं असर डाला। बहुत सारे राइटर्स ने लिखा भी इस बारे में, पर एआई जो कर रहा है वो उनका दिमाग बन रहा है। हमें उसके साथ लेकर चलना है। हम नौजवान नस्ल अभी तैयार इतनी हद तक नहीं है, पर हम तैयार हो सकते हैं।
1: नहीं, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको?
2: इसके पीछे नहीं चले, हम लोग इसके डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इसको पकड़ के चल रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना है।
1: बहुत बेहतर आपने कहा कि हमें इसका डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मुनहसिर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसे साथ लेकर चलना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि दोस्त बनाना चाहिए, न कि फरार का रास्ता चाहिए।
2: जी, बहुत अच्छी बात कही आपने शनवाज साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया सफा साहब आपका भी। आपसे भी हमने बहुत चीजें जानी कि लीगल के रिलेटेड भी जानी और साइबर क्राइम के रिलेटेड भी, और शाहनवाज साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सामईन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज नजर। आज की गुफ्तगु से एक बात वाजे होती है कि टेक्नोलॉजी ना अच्छी होती है न ही बुरी होती है, असल बात उसके इस्तेमाल की होती है। हम नौजवानों के लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग हैबिट, इंसानी अखलाक और अपनी जुबान और तहजीब से भी मजबूत रिश्ता कायम रखें। मैं अपने तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने कीमती वक्त दिया और अपने अफकार हमारे साथ बांटे। मैं हूं मुदस्सिर राशिद शमसी, अब आपसे लेता हूं इजाजत।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाज़े नजर। इस मुबाहिसे का मौजूद था टेक्नोलॉजी के दौर में तालीम, नई राहें और चुनौतियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के अलावा डीडी फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। फिल्मी मौसीकी का आगाज कर रहे हैं धरती कहे पुकार के फिल्म के नगमे से, मोहम्मद रफी की आवाज में।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में ये नगमा सुन रहे थे धरती कहे पुकार के फिल्म से रफी साहब की आवाज में। और ये जब सुनिए जब प्यार किसी से होता है फिल्म का दो गाना आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, नगमा निगार हंसी जयपुरी, मौसीकी तरतीब दिया शंकर जयकिशन ने।

इन अखबार सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से फिल्मी मौसीकी के तहत। अगली पेशकश आमने सामने फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने इस नगमे को लिखा और मौसीकी तरतीब दी कल्याण जी आनंद जी ने।

प्रिंस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। मौसीकी तरतीब दी थी शंकर जयकिशन ने। और लीजिए सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म सुहाना सफर का दो गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है मौसीकी।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे चेतना फिल्म का ये नगमा। और लीजिए प्रोग्राम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये नगमा है, फिल्म है जहां प्यार मिले।

0: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव से खजारी खतर के लोकर्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस तिंदी ए पंजाबी सेवा है। शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सब तो पहला समात फरमाओ सराय की प्रोग्राम झोक माहिती।

ए ऑल इंडिया रेडियो दा सिरहिकी प्रोग्राम है। तुहाडे किते अज दा सिरहिकी प्रोग्राम कुछ बाता कुछ गीत घिन के मैं हाजर हां हरजीत कौर। मेरा ख्याल है तुसा सारा ठीक ठाक हो सो। ते वाला शुरू करेंदे हां गीतां दा सिलसिला। आजकल तुसा देदे हो धिया हर पासे कितना अगु वध दिया पईया हैं, पढ़ लिख के वड़े वड़े ओहदा ते काम करेंदिया पईया हैं, ओ छोहरां दे बराबर हैं। उल्टा आजकल ता पुत्रा कोलू वध धिया मां पिओ दा साथ देंदिया हैं। ते पंजाब दिया धिया दा ता आखना ही के है। पंजाबी दे मशहूर गीतकार नंद लाल नूरपुरी ने इस ते हिक बहु शानदार गीत लिखा है, बल्ले ने पंजाब दिए शेर बचिए, ते गाया है पंजाब दे मशहूर कलाकार आसा सिंह मस्ताना ने। आओ मजे चाओ।

हुणे तुसां इह गीत सुणा है आसा सिंह मस्ताना दी आवाज विच। बहुडिया बाद ए गीत सुनन किते मिलना ना। हुण मैं तुहां को सुनवेंदी पई हां इक बहु मजेदार गीत। सारा गीत वंगां दे उत्ते है। तुहां को याद हो सी पहला गलियां विच वंगां चढ़ावन आले फेरी लाया करेंदे हन के वंगां चढ़वा घिन्नो, खास तौर ते गरावां विच। गरावां विच तां हाले भी वंगां वेचण आले आ वेंदे हन। बहु चंगा माहौल बन वेंदा है। जडन छुहेरा रंग बिरंगियां वंगां पैंदियां हन। हुणे सवेले दा इक गीत मैं तुहां को सुनवेंदी हां आशा भोसले दी आवाज विच। गीत है जरा हौली हौली चूड़ियां चढ़ा वे चूड़ियां चढ़ान वालिया। अगू क्या आधी है मेरा रुक रुक जांदा ही सा वे चूड़ियां चढ़ान वालिया। बहु मजेदार है गीत। असी गिद्दा है फिल्म गोरखतंदा तू। गायिका हीन आशा भोसले।

ए हरी नरेंद्र बीबा दा गाया गीत पसंद आया ना? सुनन आलियो, मिलन है ता विछोड़ा भी है। तुसी समझ गए हो सो कि हुन जेड़ा गीत मैं तुहा को सुनवेंदी पई हां, उस विच विछोड़े दी गल है, प्रेम मोहब्बत दी गल है, छेरियां दे मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत दी गल, जाली मर्द दी मोहब्बत विच विछोड़े दी गल। अपने माही नाल दिल दियां डूंघाइयां तो वध के प्यार करने वाली छुहेर क्या दी है, छड़ जान वालिया तू किथे दिल ला लिया। विछोड़ा तदन ही पौंदा है जडन दिल किथाई बिया वांज लगदा है। माही दे विछोड़े विच छुहेर दे दिल दा हाल दसेंदा ए गीत सुनेंदे हां सुखविंदर बिट्टी दी आवाज विच।

प्रोग्राम चल रहा है माझी दी महक. सो आप सारे जानते हैं माझा खेतर जड़ा या एक खास खेतर है पंजाब दा. जदों असीं माझे दे साहित्यिक योगदान दी गल करदे हां ते इस धरती ते अजिहे महान कवि नावलकार नाटककार ते कहानीकार पैदा कीते ने जिन्हां ने पंजाबी साहित्य नूं विश्व पद्धर ते पछाण दित्ती है. माझे दी मिट्टी विच साहित्य दीआं जड़ां बहुत डूंघीआं हन. गुरमत साहित्य तों लैके किस्सा काव्य तक इस खेतर ने पंजाबी शायरी नूं बुलंदियां ते पहुंचाया. लाहौर दे जमपल शाह हुसैन ने सूफी काव्य विच काफियां दे रूप विच जो विप्रोता अते बिरहा दा प्रकटावा कीता ओ अज भी अमर है. जंडियाला शेर खान चढ़दा लैंदा माझा दे जमपल वारिस शाह ने हीर दा किस्सा लिख के पंजाबी भाषा नूं शब्दां दा अमीर खजाना दित्ता. उन्हां दी रचना नूं पंजाबी सभ्याचार दा एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है. वारिस शाह दी लिखी हीर अपने वेले ते भी गाई जाती सी ते आज भी उसनों गाया जाता है.

बाकी जी एक खूबसूरत रिश्ता जो कि ताम्र नब्दा है और अगले वादियां हुण अगले गीत वाल जिस तरह आप सारे जान दिया सौण दा महीना जड़ा या अपना ही अंदाज अपना ही खूबसूरती लेके आंदा है। सो ऐसे तो महीना मुक चलिया मुक गया भी है जी पर जिहड़े सौण दी एक एहसास है ना वह हमेशा रहिंदा है और जिथे मुटियारा होण ते वाकई ही उन्होंने दिल दे विच एक अलग ही खुशी उमंग हुंदी है सौण दे महीने। सौण सुणदे आं ससिंग मस्ताना नूं सौण बारे की कहिंदे ने।

0: श्री रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितम्बर को होगी। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की प्रगति, विकास और हितों से जुड़े साझा मुद्दों तथा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कोष, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामलों में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और आपसी विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भी भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम ये दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और जमीनी स्तर पर नीतियों को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीपीएन के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद, जातीय संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया, जो दक्षिण पंथी बांग्लादेश जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट प्राप्त हुए। एम्स्टरडैम में महिला हॉकी विश्व कप में इस समय भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुने किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार।
4: किसान वाणी में श्रोताओं को देंगे खेती से संबंधित जानकारी के साथ साथ होगा ढेर सारा मनोरंजन भी।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ने वाले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे सजावटी घास के क्षेत्र की देखरेख और नवीनीकरण के उपाय के बारे में।
4: सिद्धार्थ, और साथ में हम आपको बताएंगे किसान रथ ऐप के बारे में और किस तरीके से किसान भाइयों को इसका फायदा पहुंचेगा।
3: और मंजीत, हम अपने किसान भाई बहनों से साथ ही साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव।
4: और सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के ऊपर सुनवाएंगे आपको लोकगीत।
3: बिल्कुल। और मंजीत, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और जहाँ पे एक मोबाइल एक ऐसा संसाधन है कुछ डिजिटली अवेलेबल है, तो खेती से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है फसल को खेत से बाजार तक समय पर पहुंचाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी किसान के लिए।
4: और इसको ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप विकसित किया गया है। ये एक ऐसा ऐप है जो किसानों को किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs और व्यापारियों को कृषि उपज के परिवहन सेवा प्रदाताओं से जोड़ने में मदद देगा।
3: और किसान रथ ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के परिवहन की आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं। इसमें उन्हें उपज की मात्रा, कहाँ से लोड करना है यानी लोडिंग का स्थान, और जहाँ आपको अपनी उपज पहुँचानी है उस स्थान जैसी जानकारी देनी होती है।
4: और इसके बाद उपलब्ध परिवहन सेवा प्रदाताओं किसान की आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं।
3: और ये सुविधा विशेष रूप से फल, सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है।
4: और किसान इस सुविधा का उपयोग अपनी उपज को मंडी से गोदाम और अन्य बाजारों तक पहुंचाने के लिए कर सकता है। किसान रथ को ई नैम से भी जोड़ा गया है जिससे कि कृषि उपज के व्यापार और परिवहन के बीच बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी।
3: और मंजीत, यहाँ पर अपने किसान भाई बहनों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप ध्यान रखिए कि वाहन बुक करने से पहले वाहन, उसका चालक, किराया और परिवहन की शर्तों की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए।
4: और आज जब डिजिटल तकनीक किसान की पहुंच बाजार तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसे में किसान रथ ऐप कृषि उपज के परिवहन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक उपयोगी डिजिटल माध्यम साबित हो सकता है।
3: और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई बहन अपने नजदीकी कृषि विभाग या संबंधित कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो आप किसान रथ ऐप का प्रयोग करके अपने जो उत्पाद है उसको आप दूरस्थ मंडियों तक अतिशीघ्र पहुंचा सकते हैं।
4: सिद्धार्थ, आज एक विशेष दिवस भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा दिवस की। भारत में हर वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के प्रति जागरूक करना है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत प्राकृतिक से लगातार प्राप्त होते हैं और इनसे प्रदूषण भी अपेक्षाकृत कम होता है। आज सौर ऊर्जा का उपयोग घरों, खेतों, स्कूलों और उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है। किसानों के लिए सौर सिंचाई पंप ऊर्जा की लागत कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। अक्षय ऊर्जा दिवस हमें ये संदेश देता है कि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। ऊर्जा बचाएं, स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भविष्य बनाएं।
3: तो मंजीत, बिल्कुल किसान भाई बहनों को तो फायदा पहुंचेगा ही, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि शहर की बात हम करें, गांव की बात करें, कभी आपने वो कारपेट वाला एरिया देखा है वहां पे जिस तरह की हरी हरी प्यारी

0: हरी सी घास लॉन में दिखाई देती है, कितना सुंदर वातावरण लगता है।
1: बिल्कुल, और सजावटी घास क्षेत्र की देखरेख और नवीनीकरण पर बातचीत।
0: आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, किसानवाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि सजावटी घास क्या होती है और सामान्य घास की तुलना में इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किन स्थानों पर सजावटी घास का उपयोग अधिक किया जा सकता है।
2: जैसे सजावटी घास की यदि हम विवेचना करें तो सजावटी घास उस घास को हम कहते हैं जो देखने में इस तरीके से हो कि हमारे मन को मुग्ध कर दे और जिसकी संरचना बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये अलंकृत घास है। यदि इसको वर्गीकरण के हिसाब से देखें तो इसमें डिफरेंट स्पीसीज हैं, बहुत सारी इसमें किस्में हैं। यदि हम बात करते हैं कि ऐसी जगह जहां पे रफ एंड टफ यदि घास हम लगाने की बात करते हैं, वहाँ पे बुफाइलो घास होती है। यदि ब्रांच की बात करें तो काफी थिक होती है, लीफ भी काफी थिक होती है और इसलिए इसको बुफाइलो ग्रास कहते हैं कि यदि इसके ऊपर एनिमल्स भी यदि मूव कर जाए तो उसकी संरचना खराब नहीं होती है। इसी तरीके से जैसे गोल्फ में जो हम घास लगाते हैं तो देखते हैं कि उसके जो रनर्स जो होते हैं बड़े फाइन होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। उदाहरण के तौर पे देखें तो नॉर्दर्न इंडिया में एक सिलेक्शन वन नाम की घास है जो गोल्फ का मैदान होता है, उसमें इसको हम लगाते हैं। इसी तरीके से साइनोडॉन डेक्टिलॉन है जिसको हम दूब घास कहते हैं, यह दूब घास को भी यदि हम एक यूनिफॉर्म शेप में उसकी कटिंग करते रहें तो ये भी एक लान की संरचना दे देती है। वैसे हम दूब घास को हम मानते हैं ये टाइप ऑफ एक वीड है, खरपतवार है जो है। तो इस तरीके से घासों की विवेचना वर्गों में जो है विभाजित किया गया है।
0: तो जिस प्रकार से हमारा प्रयोग है, हम जहाँ पर उस घास को लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमको वो प्रजाति या उस घास का उपयोग करना चाहिए।
2: यदि हम देखें तो कुछ हमारे जो क्षेत्र होते हैं बिल्कुल खुले मैदान होते हैं। खुले मैदान का मतलब कि जहाँ पे सनशाइन लाइट इंटेंसिटी पूरी तेज आती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधे या बिल्डिंग के आसपास उसकी जो छाया होती है वो पड़ती है, तो इसमें हम कहें कि ऐसी घास जो फुल सनशाइन में ग्रो होती हो, ऐसी घास जो छायादार जगहों पे ग्रो होती हो, तो दोनों तरह के लिए एक ही किस्म उपयुक्त नहीं होती है। जिसमें जैसे नॉर्दर्न इंडिया में यदि हम सिलेक्शन वन की बात करते हैं तो वो खुले मैदान के लिए है, यदि हम छायादार की बात करते हैं तो उसमें जो किस्म आती है उसका नाम है नीलगिरी। दोनों को देखने में पत्तियों की संरचना थे और उनके रनर की संरचना से पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कंपेरेटिवली ये देखा गया है कि जो नीलगिरी घास है उसकी जो पत्ती है वो थोड़ी सी सिलेक्शन वन से अधिक ग्रीन होती है, लेकिन इनका जेनेटिक जो संरचना जो होती है नीलगिरी छाये में चलती है, बहुत अच्छा चलती है। दूसरा जो सिलेक्शन वन है वो छाये में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, वो खुले मैदान में परफॉर्म करता है
0: जी। और इस समय डॉक्टर साहब जैसे कि मॉनसून का समय है और बारिश भी हो रही है तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, क्या ये उपयुक्त समय है इस तरह की घास को लगाने का?
2: इसमें दो चीजें हैं, बहुत जगह तो पहले से ही लान लगा हुआ है, बहुत जगह जो लोग अपने नए लान को लगाने के लिए तैयारी करके छोड़े हुए हैं, तो जून लोगों ने मई जून के महीने में प्लॉट को लान लगाने के लिए डीप जो है कि खुदाई करके और हाई टेम्परेचर पे उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु हैं उनको यदि किल कर दिया है, उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल दिया है, लेबलिंग कर दिया है, तो बिल्कुल राइट टाइम है कि इस टाइम पे डीबलिंग मेथड से चाहे छायेदार जगह पे लगाना हो और चाहे खुले खेत में लगाना है। डिबलिंग का मतलब ये है कि कहीं से भी आप इन किस्मों का, चाहे सिलेक्शन वन की बात हो, नीलगिरी की बात हो, इनका कारपेट खरीद के ले आइए, उसमें तीन से चार रनर्स होने चाहिए, उनके जड़ को तीन से चार इंची के दूरी पे तीन तीन चार चार रनर पकड़ करके आप दबाते जाएं, तो ये देखेंगे ये लगभग डेढ़ से दो महीने के अंदर एक कारपेट का संरचना ले लेगा, इसको हम बोलते हैं डिबलिंग विधि। दूसरा, जो ऑलरेडी पहले से लान लगा हुआ है तो इस टाइम पे देखा जाता है कि जब हाई रेनफॉल होता है तो न्यूट्रिशन की कमी जो है कि फील्ड के अंदर हो जाती है, क्योंकि लीचिंग करके बहुत सारा न्यूट्रिशन नीचे की तरफ चला जाता है, बहुत सारा जो है कि रन कर जाता है, तो इसमें

0: देखा गया है कि पहले तो इसको फ्रीक्वेंटली जो है कि कटिंग करने की जरूरत होती है, क्योंकि ह्यूमिड है, टेम्परेचर है, ग्रास का जो ग्रोथ होगा बहुत तेजी से होगा, तो फ्रीक्वेंटली हमको कटिंग करने की जरूरत है। दूसरा, जब मौसम खुला रहे तो उस टाइम पे आप चाहें तो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि एक एकड़ क्षेत्रफल का लान है, 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल मंथली इंटरवल पे आप कर सकते हैं। दूसरा, एक बैलेंस फर्टिलाइजर मार्केट में है जिसको एनपीके के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मार्केट में है, 13:13:13, 19:19:19। इसका मतलब 100 ग्राम के अंदर 19 ग्राम नाइट्रोजन है, 90 ग्राम फास्फोरस है और 19 ग्राम ही पोटास है। यदि इसको हम फोलियर स्प्रे के तौर पे यदि देखें तो लगभग इसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव करते हैं, तो उस टाइम पे ये ध्यान देना चाहिए कि लान की मोइंग हुई हो और 2-3 दिन मोइंग किए हुए हो गया हो, ताकि उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई हो। यदि फोलियज नहीं है तो इसका अपटेक न्यूट्रिशन का कम हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से लान को मेंटेन कर सकते हैं। एक एस्पेक्ट आता है इन दिनों में वीड का, खरपतवार एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है, और इसमें 2 तरीके से खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। एक तो होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब मैनुअली, जो हम खुद खुरपी के या खुटी के सहारे जो घास स्पीसीज के अलावा अन्य उसमें जो ग्रास है, जैसे साइनोडॉन डेक्टिलॉन जिसको हम मोथा कहते हैं वो है, या ऑक्जेलिक एसिड जिसको हम पथरचट्टा टाइप की घास कहते हैं, या सिलेक्शन 1 के अंदर दूब ग्रास हो गया, तो उसको मैनुअल हम निकाल देते हैं। एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है कि जो सेलेक्टिव वीड को मारे, खरपतवार को मारे लेकिन घास को न मारे जो है। और एक बहुत बड़ी समस्या है वो है मोथा। ये देखा गया है कि एक मार्केट में सनराइज नामक हर्बिसाइड खरपतवार नाशक है, यदि उसका 1 ग्राम पर लीटर पानी में आप डाल करके और इसको जो है कि स्प्रे कर देते हैं, तो मोथा में लगभग 1 से 2 इंची के आसपास उसकी पत्ती उसमें होनी चाहिए। तो ये देखा गया है कि ये पूर्ण तरीके से मोथा को किल तो नहीं करता, लेकिन 2 महीने के लिए वानस्पतिक वृद्धि को रोक देता है। और उससे फायदा ये होता है कि लान का जो रियल स्पीसीज है उसका ग्रोथ अच्छा हो जाता है और धीरे धीरे ये डॉर्मेंट में।
1: डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अभी बताया कि हमें किस तरीके से देख रेख करनी है, तो सही समय क्या है घास की कटाई छटाई करने का और पानी देने का?
0: देखिए, लान को देख करके ही लग जाता है कि इसमें अभी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समानता नहीं है जो है, कहीं पे नीचा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, उसमें कारपेट के अंदर कॉम्पैक्टनेस नहीं है। इसका मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस से देख करके लग रहा है कि इसकी सुंदरता खराब हो रही है। तो एक तो ये पहचान होती है कि लान काटने के लायक हो गया है। दूसरा ये पहचान है कि जमीन की सतह से यदि ये लगे कि 3 से 4 इंची के आसपास लान घास ऊपर जा रही है, तो अब भी हम मान के चलते हैं कि अब इसकी मोइंग कर देना चाहिए। फ्रीक्वेंटली मोइंग करने से ये फायदा होता है कि जो रनर्स की संख्या है वो बढ़ जाती है, और ब्रांचिंग होने से उसमें कॉम्पैक्टनेस आती है और उससे उसका देखने में जो उसकी सुंदरता है वो बढ़ जाती है।
1: जिस तरीके से हम नवीनीकरण की बात करें तो काफी सारी जगह देखा जाता है, हम लॉन को मेंटेन करते हैं तो बहुत सारे पुनः रोपण की भी जरूरत पड़ती है, पौधों को लगाने की भी, तो वो किस प्रकार से की जाए?
0: उसमें 2 चीजें हैं। नवीनीकरण की बात करें या उसको एक और शब्द देते हैं, जीर्णोद्धार, रिजुवेनेशन जिसको बोलते हैं। कभी कभी होता है कि लान जो है बहुत पुराना हो जाता है और वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है, जैसे 10 साल 12 साल 15 साल पुराना लान हो गया, तो जो ग्रीन पोर्शन उसका है उसको हम छील करके और जमीन के सतह तक हम जाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। उसके बाद उस मिट्टी को ढीला करने के लिए फॉर्किंग करते हैं, मतलब पंजे से लेकर के हम फॉर्किंग कर देंगे। फॉर्किंग करने के बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद हो और सैंड हो, जो सफेद जमुना जी का रेता है, उसको हम मिक्स करते हैं। 1:1 के रेशियो में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। खाद की यदि कमी हो तो 2 पार्ट जो है कि सैंड रख सकते हैं और 1 पार्ट जो है कि सड़ी हुई गोबर की खाद। फिर उसमें हम अच्छी तरह स्क्रैप किए हुए और फॉर्क किए हुए लान के अंदर इसको मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने के बाद हल्का सा रोलर चला दें तो ताकि वो बैठ जाए, और फिर उसमें हम फ्लड इरिगेशन कर देते हैं। यदि आपके पास पॉपअप इरिगेशन सिस्टम हो तो उसको हम रन कर दें। इससे होता यह है कि जो कॉम्पैक्टनेस थी फॉर्किंग से कम हो गई,

0: जो ओल्ड रनर्स थे वो हट गए और नीचे से जड़ से नया फुटा होगा, लान का शेप ही डिफरेंट होगा। ये एक तरीका है जीर्णोद्धार लान का करने का।
1: कितने दिनों के बाद डॉक्टर साहब ये जीर्णोद्धार की जरूरत पड़ती है, कैसे पहचाने कि अब वक्त आ गया है और कितने अंतराल के बाद इसे करना चाहिए?
0: जब लान जो है कि 10 से 12 साल पुराना हो जाता है तो सॉयल काफी कम्पैक्ट हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि साल में एक बार, और अदरवाइज यदि आपको लगता है कम्पैक्टनेस कम है तो 2 साल पे एक बार जरूर कर देना चाहिए। यदि ऐसा करते रहेंगे तो आपके जो लान की जो उम्र है वो बढ़ जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, नवीनीकरण के लिए साल का कौन सा समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है? क्या ये समय घास की प्रजाति और स्थानीय जलवायु के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं?
0: बिल्कुल, अभी इस टाइम देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों पे देखेंगे तो बिल्कुल एक्टिव है, क्योंकि टेम्परेचर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, रूट का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, फोलियज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो हम मान के चलते हैं जो अक्टूबर नवंबर का महीना या फरवरी का महीना, उस टाइम पे यदि आप स्क्रैपिंग कर देते हैं तो वो बेस्ट मैदानी क्षेत्रों के लिए होता है। यदि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो या तो सितंबर के महीने में कर लें या तो मार्च के महीने में करें, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर है पहाड़ी क्षेत्रों पे मिलता है।
2: अगर हम डॉक्टर साहब बात करें, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फूलों को हम घर में भी उगाते हैं और टेरेस गार्डन की भी बात करें, तो किस तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए? अगर हम घर की बात करें, हम अपनी छतों पे लगाते हैं तो उनको किस तरीके से मेंटेन करें, और खरपतवार भी आते हैं गमलों के अंदर, तो उनको किस तरीके से हमें देखरेख की आवश्यकता है?
0: देखिए, यदि किसी भी लैंडस्केपिंग की या बागवानी की जब हम बात करते हैं तो उसमें फूलों की बात न हो तो अधूरा होता है।
2: जी,
0: यदि फूलों की बात करें तो इसको ऋतु के आधार पे हम लोग 3 वर्गों में विभाजित किए हुए हैं, जिसमें जाड़े के मौसम का फूल, गर्मी के मौसम का फूल, अब बरसात के मौसम का फूल। बगीचे में किस तरीके से फूल की कंटिन्यूटी बनी रहे, इस बात का ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। इस टाइम पे देखेंगे तो अलंकृत बागवानी के अंदर आपको सदाबहार मिलेगा, गजेनिया मिलेगा, गिलार्डिया मिलेगा, परचुला का मिलेगा, कोचिया ग्रीन फोलियज का मिलेगा, और ऐसे ही खत्म होगा। कुछ लोगों ने गेंदे की नर्सरी डाल चुके हैं, कुछ लोग गेंदे की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। सितंबर का महीना जब आएगा तो जितने जाड़े में फूल लगने वाले हैं, चाहे कैलेंडुला हो, चाहे आपका पिटूनिया हो, पेंजी हो, हेलीक्राइजम हो, सीजनल क्राइजेंथिमम हो, बर्बिना हो, आइस प्लांट हो, उनकी सबकी नर्सरी जो है सितंबर के महीने में लग जाएगी। जो अभी खिल रहे हैं इनकी नर्सरी फरवरी से मार्च के महीने में लगी होगी। तो इस तरीके से यदि हम कंटिन्यूएशन में फ्लावर चाहते हैं तो हर सीजन के जो है कि मौसमी फूल का सिलेक्शन करना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो सजावटी घास के साथ आपने फूलों की भी बात करी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे मेरे ऐसे श्रोता भी हैं जो अपने घर पे या नर्सरी है या छोटे छोटे उद्यान में इस सजावटी घास को लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि सजावटी घास लगानी है, तो हम ये कहेंगे कि बरसात का आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। यदि खेत आपका तैयार है तब तो अभी लगा दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपका गार्डन पुराना है और आपको नई घास लगानी है, यदि खरपतवार काफी आ गया हो तो हम लोग सुझाव करते हैं 6 से 7 इंची की मिट्टी हटा लीजिए और नई मिट्टी उसमें डाल दीजिए, ताकि आपका जो नया लान लगेगा उसमें खरपतवार लगभग जो है 8 से 10 साल तक नहीं आता है। दूसरा, जो सिंचाई का साधन है, सिंचाई के साधन में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप पानी दे रहे हैं उसमें कोई वीड न आ रहा हो। कभी कभी होता है इरिगेशन वाटर भी एक सोर्स बन जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि जहां से भी आप कारपेट लान को लगाने के लिए आप खरीद रहे हो तो इस बात को जरूर एंश्योर करें जहां से आप खरीद रहे हैं रोग मुक्त है, उसमें पीलापन नहीं है, कहीं धब्बा नहीं है। यदि आपके मदर नर्सरी से ही इन्फेक्टेड मटेरियल आप लेके आएंगे, जो लान आप लगाएंगे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इसमें एक चीज के ऊपर मैं असर डालूंगा कि एक डिजीज की बात हुई, अब बरसात के दिनों में एक लान कॉमन डिजीज रोग है, उसको हम बोलते हैं फेरी रिंग। फेरी रिंग की पहचान ये होती है, चाहे छोटा लान हो या बड़ा लान हो, उसमें रिंग जैसे संरचना बनती है और वहां से लान की जो घास होती है वो ग्रीन से सफेद हो जाती है, और वाटर लॉगिंग हो गई हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वहां पे फंगस जनरेट हो जाता है।

0: इसको मारने के लिए यदि हम मैंकोजेब की बात करते हैं या बाउस्टीन की बात करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके स्प्रे नहीं करना, वाटर कैन में फुहारे में आप डालिए, एक बार आज डाल दीजिए, एक बार 15 दिन के अंतराल पर डालिए, तो ये रोग जो है खत्म हो जाता है, कवक मर जाता है, फिर दोबारा वहां लान लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके जड़ से नया फुटाव आ जाता है।
1: और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से सिंचाई करनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
0: देखिए जब पानी की बात होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज के दिन कम से कम पानी में पौधों की बढ़वार की जाए ताकि हम पानी को सेव कर सके। इसमें सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि है, स्प्रिंकलर विधि आप लान में लगा सकते हैं, पूरे लान को एरिएट करता रहता है, सिंचाई करता रहता है। यदि बहुत बड़ा लान है जहां पे हम स्प्रिंकलर से कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें एक पॉपअप इरिगेशन सिस्टम है, तो लान जब हम लगाते हैं उसी टाइम पे अंडरग्राउंड में हम पाइप डाल देते हैं और उसमें प्रेशर से पानी आता है और वो लान को इरिगेट कर देता है। तीसरा सिस्टम है कि हम पाइप के सहारे इरिगेट करते हैं, जो पाइप के सहारे करते हैं उसमें सबसे अधिक पानी लगता है। तो हम तो ये सुझाव देंगे कि यदि लान आपका छोटा है तो स्प्रिंकलर विधि को अपनाइए और कम पानी में जो है कि अपने बाग बगीचे को हरा भरा रखिए।
1: जी डॉक्टर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंजीत, जैसा कि हमने कहा था कि हम सिर्फ जानकारी ही नहीं आपका मनोरंजन भी करेंगे, तो हमारे किसान भाई बहन प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या सुनवा रही हो आज?
2: बिल्कुल, और सुनवाएंगे पूजा शर्मा की आवाज में लोकगीत,
1: तो आइए सुनते हैं।

0: पूजा शर्मा के इस लोकगीत के बाद वक्त चला है कल के मौसम के बारे में जानकारी लेने का। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और हमारे वैज्ञानिक क्या सलाह देते हैं इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो सकता है, इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि खेत के अंदर जाकर पौध के निचली भाग के स्थान पर मच्छरनुमा कीट का निरीक्षण करें। धान की फसल प्रमुख रूप से वृद्धि की स्थिति में है और फसल में कीटों की निगरानी करें। और इस मौसम में किसानों को सलाह दी जाती है कि स्वीट कॉर्न यानी मौधरी, विन, ऑरेंज तथा बेबी कॉर्न की बुआई करें।
1: और इस मौसम में किसानों को सलाह दी जाती है कि गाजर की उन्नत किस्म पूसा वृष्टि की बुआई मेड़ों पर करें और खेत को तैयार करते समय खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।
0: तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह हमारे किसान भाई बहनों को। और अब बात करते हैं आजादपुर मंडी में क्या भाव चल रहा है। और सबसे पहले आलू की बात करें तो आलू 15 रुपए प्रति किलोग्राम, प्याज की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम, टमाटर की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम, बीन्स की हम बात करें तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम और बैंगन 25 रुपए प्रति किलोग्राम। और अगर हम फल की बात करें तो फलों के रेट क्या है।
1: बिल्कुल, अब फलों की बात करें सबसे पहले आता है सेब, सेब 100 रुपए प्रति किलो, केले की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलो और वहीं अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो। मौसमी की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलो और पपाया यानी कि पपीते की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो का आज का भाव।
0: तो ये थे मंडी के भाव। और किसान भाई बहनों से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें feedback@gmail.com पर हमें आप लिख सकते हैं। तो अब वक्त है अपने किसान भाई बहनों से विदा लेने का, अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

सच्ची तो कहा है दोस्तों कि कुछ बातें कुछ मुलाकातें अक्सर अधूरी रह जाती हैं और कुछ फिर मिलने का सबब बन जाती हैं। तो आप भी हमसे कल फिर इसी समय ज़रूर मिलिएगा।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य

0: केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार और करीब 9 करोड़ रुपए की दवाएं जब्त। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में प्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम 8 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार संपन्न जांच समिति गठित की है। एक रिपोर्ट।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश V मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: केंद्र सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये दिल्ली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और समावेशी राजधानी में बदलने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे।
2: लगभग 40 लाख नए फ्लैट या आवास ये जोड़े जाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि 80 लाख की आबादी इसमें बढ़ने वाली है, तो 30 से 40 लाख नए फ्लैट इस बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर के विकसित किए जाएंगे और अधिकांश में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्लॉट्स होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका भी ध्यान रखा गया है।
0: कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि ये योजना अधिक टिकाऊ, जीवंत और भविष्य के लिए तैयार दिल्ली का निर्माण करेगी। एक रिपोर्ट।
3: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसकी अपनी कई सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्लान पूरे शहर के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ग्रामीण इलाके, अनधिकृत कॉलोनियां और नियोजित इलाके सभी शामिल है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती परिवहन जरूरतों और प्रदूषण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना भी बनाई गई है।
4: पूरी दिल्ली के सर्वांगीण विकास, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, प्लान्ड एरिया, सभी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के बढ़ते ट्रांसपोर्ट को, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भी शहरी विकास की योजना की गई है। दिल्ली की चाहे सभी रेजिडेंशियल कॉलोनियों की मैं बात करूं, मार्केट एरिया की बात करूं, लो डेंसिटी एरिया की बात हो, एजुकेशनल इंफ्रा की जब हम बात करते हैं, उसको इतना आसान किया गया है, बहुत सारी कंडीशंस को हटाया गया है ताकि दिल्ली में फैसिलिटीज जो है वो बढ़ें।
3: विकसित भारत 2047 के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी के लोगों के लिए विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर में बदलना है। बढ़ती आबादी, परिवहन और प्रदूषण की चुनौतियों के बीच यह दिल्ली मास्टर प्लान 2047 राजधानी को सुव्यवस्थित, सुविधाजनक और भविष्य के लिए तैयार करने का संकल्प है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। ये एक आधुनिक स्वास्थ्य जांच केंद्र है, जहां लोगों को अपने क्षेत्र में ही सुलभ और समय पर स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। जांच के परिणाम डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे और आवश्यकता पड़ने पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि AI और डिजिटल तकनीकें रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रही हैं।
4: आप सबको यहाँ ट्रेन करना, आपको सिखाना इस जन कौशल केंद्र में किया जाएगा, क्योंकि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से अपनी बात रखी थी तो उन्होंने

0: लिया था कि हम युवाओं को एआई की शिक्षा देंगे, एआई के कौशल से जोड़ेंगे, ताकि आज का युवा स्किल होल्डर बने जो कि आज के जमाने की हर विधा को जानता हो।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अनुव्रत भवन में रेजिंग और एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के अंतर्गत आयोजित में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 4P रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
0: जो ट्रेनिंग और होल्डिंग आप लोगों की है, ये भी सच में 4P रिफॉर्म की ओर हमें लेके जाएगी, जहां पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस और पार्टनरशिप हर चीज अपनी जगह काम करेगी और हम मिलकर के इस पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली को आगे लेकर के जाएंगे।
1: दिल्ली के उद्योग मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व में दिल्ली का औद्योगिक क्षेत्र व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है।
2: आपको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बहुत सारे आइडिया हमने आके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेजेंट किए। सोचिए, दिल्ली का पिछले हमारी सरकार आने से पहले कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर में 3,000 करोड़ रुपया लगा था और हमने 4,806 करोड़ रुपया अपनी गारंटी दिल्ली सरकार ने देकर 4,806 करोड़ रुपया लगभग 10,500 लोगों को लोन देकर काम उठाने का काम किया। ये काम करने की सोच है।
1: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज गुरुग्राम क्षेत्र के पास अरावली के संरक्षण और विकास पर चर्चा के लिए आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। श्री यादव ने कहा कि सरकार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा दे रही है। इस साल के वन महोत्सव के दौरान मानेसर के पास 2 लाख पेड़ लगाए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलकर दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
1: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए तैयार है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज नरेला, बवाना, सिंघोला और भलसवा में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्रों का निरीक्षण किया तथा उनके निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इनमें नरेला बवाना क्षेत्र में बन रहे 1200 टन और बवाना में ही स्थित निर्माणाधीन 3000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र शामिल है। साथ ही निगम आयुक्त ने सिंघोला में बन रहे नए कूड़े के निस्तारण संयंत्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा श्री खिरवार ने भलसवा लैंडफिल साइट पर बायो माइनिंग कार्यों का जायजा लिया। नगर निगम ने लाल किला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन के उपरांत लाल किला और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीम द्वारा विशेष रूप से सफाई कार्य किए जा रहे हैं। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज राजधानी के आगामी पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस दौरान प्लानिंग से लेकर काम पूरा होने तक हर

प्रोजेक्ट पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अंतर्राज्यीय अपराध शाखा ने नकली और गैर कानूनी तरीके से डायवर्ट की गई एंटी कैंसर दवाओं के अवैध कारोबार में शामिल एक अंतर्राज्यीय समूह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कई दवाइयों की हेराफेरी करते हुए पाया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एंटी कैंसर इंजेक्शन की 588 भरी हुई शीशियां, 6 खाली शीशियां, 7 खाली डब्बे और अन्य दवाओं की लगभग 3000 इकाइयां बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 लाख नकद बरामद भी किया है। मामले की जांच जारी है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू की जा रही विशेष सामुदायिक पुलिस पहल, जन कल्याण प्लेटफॉर्म और सुरक्षा के विशेष उपायों का विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कमजोर वर्गों, खासकर बुजुर्गों और महिला यात्रियों के लिए संस्थागत सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के सीनियर सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन के कामकाज, उसके इस्तेमाल और असर की भी समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा और हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिन इवानागा और की नाकानिशी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हरा दिया। वहीं पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आयुष शेट्टी को प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने 19-21, 11-21 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित अतिरिक्त बल प्रयोग और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्य समिति गठित की। केंद्र सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से सशक्त शहर बनाना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में जन कौशल केंद्र और स्वयं स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। नकली एंटी कैंसर दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बनाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

सऊदिया मुहिम और सऊदी विजन 2030। पेशकश डॉक्टर मीना दहलवी। सन 2020 में सऊदी अरब ने बाजाबता तौर पर मेड इन सऊदिया मुहिम का आगाज किया है। ये नया कदम विजन 2030 के कौमी सनअती तरक्की और लॉजिस्टिक विजन रियलाइजेशन प्रोग्राम के मुताबिक है। इसका मकसद कौमी मसनूआत और खिदमात की सपोर्ट करना और मेंबर कंपनियों के इनके मसनूआत मुल्की और आलमी सतह पर फरोग देने में मदद फराहम करना है। जो कंपनियां इस इकदाम का हिस्सा बनना चाहती हैं, वो वेबसाइट के जरिए दरख्वास्त दे सकती हैं। दरख्वास्त देने वाली कंपनियों की अहलियत जांचने के लिए इब्तदाई 3 सवाल की तस्दीक वेबसाइट के जरिए की जाएगी। मसनूआत सऊदी अरब में उगाई, निकाली या तैयार की जानी चाहिए। उन्हें 10 सनअतों के तहत होना चाहिए, यानी तामीरात, टेक्सटाइल, फार्मा, मेडिकल, प्रोसेस्ड फूड्स और ताजा पैदावार। इन मसनूआत के पास ममलकत में काम करने के लिए काबिल अमल लाइसेंस होना चाहिए। सऊदी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सनअती तरक्की के अमल को तेज करने और सऊदी अरब को एक आलमी सनअती मंजिल में तब्दील करने के लिए 2021 की पहली से माही में मेड इन सऊदिया प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। मेड इन सऊदिया इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब मकामी, इलाकाई और आलमी मार्केट में सऊदी मसनूआत को आलमी ब्रांड के मुताबिक तैयार करना था। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी जनरल सालेह सलमी ने कहा था कि इस प्रोग्राम से सऊदी मसनूआत और खिदमात के शोबे को फरोग देने में

किया था जो नंबर खर्च किया जाए। चलिए सामीन, अब इजाजत दीजिए अपनी मेजबान डॉक्टर मुनत दहलवी और हिदायतकार आयशल वहीदी को। हम दुआ करते हैं कि हमारा ये मुल्क सलामत रहे। अल्लाह।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका।

सलाम, नमस्ते, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका सुरों से सजी और गीतों से सबरी फिल्म संगीत की महफिल गीत मालिका में। दोस्तों, आज तारीख है 20 अगस्त और अभी बीते अगस्त 18 अगस्त को हमारे आपके अपने गुलजार साहब ने अपना 92वां जन्मदिन मनाया। आकाशवाणी से भी आपने गुलजार साहब के गीतों और उनके व्यक्तित्व को समर्पित कई कार्यक्रम सुने होंगे, तो फिर आज फिर से गुलजार साहब की बात क्यों? सोचने की बात है ना। तो आज फिर से गुलजार साहब की बात इसलिए क्योंकि गुलजार सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नजर है। एक ऐसी नजर जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी चीजों में भी कुछ ऐसा देख लेती है, कुछ ऐसा खोज लेती है जो हमारी आपकी नजर को नजर नहीं आता। उनकी दुनिया थोड़ी सी अलग है, उनका अंदाजी बयां अलग है और शायद इसीलिए उनकी नजरों से देखा हुआ चांद भी सिर्फ चांद नहीं रहता। कभी वो किसी की याद बन जाता है, कभी रात की तन्हाई, कहीं महबूब का चेहरा और कहीं बच्चों का खिलौना। तो चलिए आज कुछ देर के लिए अपनी नजरें गुलजार की नजरों से मिलाते हैं, कुछ देर के लिए देखते हैं उस चांद को गुलजार साहब की नजर से, देखते हैं उस चांद को जिसे दुनिया ने तो एक देखा मगर गुलजार साहब ने हर बार अलग तरह से, हजार तरह से देखा। आज की ये शाम, आज का ये चांद सा सफर आप तय करेंगे आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति के संग, और हम सुनेंगे वो गीत जिनमें गुलजार साहब ने चांद को अपनी नजर से देखा। शुरुआत करेंगे उनके फिल्मी करियर के पहले गीत के संग जिसमें चंदा चुपकी से बदली से झांक रहा है।

0: गुलजार के इस गीत में चांद का जिक्र जैसे बहुत कोमल सा एहसास, उजला सा, मासूम सा और थोड़ा सा शर्मीला सा। लेकिन गुलजार की दुनिया में चांद हमेशा संजीदा हो, अब ऐसा तो जरूरी नहीं। जरा इसी चांद को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। वही चांद, वही रात, लेकिन इस बार जरा सी शरारत के साथ, जरा सी ठिठोली के साथ, कुछ बच्चों के संग।
1: कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता,

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

अच्छा सोचो, नहीं सोच के देखो, खेत में उगते टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: दीदी ऐसा क्यों नहीं होता है? जो होता है वो क्यों होता है?
1: कारण फिर वही कायदा
2: कायदा कायदा आखिर कायदा।
3: सच ही तो है, इस कायदे का कुछ फायदा तो होता होगा, लेकिन सपनों की दुनिया में, गुलजार की दुनिया में इस कायदे का क्या फायदा? देखिए ना, उन्होंने कितने कायदे से चांद को आसमान से तोड़कर नीचे उतार लिया, मैदान में रख दिया, और फिर चांद पर दूध की नदियां, कुल्फी के टीले और फालूदा जैसी घास तक उगा दी। अच्छा, गुलजार जी का चांद भी ना कमाल का है। कभी वो आसमान में टंगा हुआ कोई दूर का ख्वाब लगता है, तो कभी उनकी कल्पना में इतना करीब आ जाता है कि बस हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। और अब जब चांद इतना करीब आ ही गया है, तो सोचिए ना रात कैसी होगी। वो रात जब चांद सिर्फ चांद ना रहे, रात भी कुछ ज्यादा नरम हो जाए और चांद में भी थोड़ी सी गर्माहट उतर आए। चलिए इसी ख्याल के साथ एक बार फिर से गुलजार साहब की रात को, गुलजार साहब के चांद को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं।

नरम नरम रात में गरम गरम चांद पर, तो गुलजार साहब की गुलजारियत में इस टाइम को भी हमने देखा बिल्कुल अलग शरारती अंदाज में, जैसे रात भी ना थोड़ी सी नटखट सी हो गई हो और चांद भी आसमान से उतरकर हमारे करीब आ गया हो। लेकिन गुलजार साहब के चांद की एक खूबी और भी है, वो सिर्फ रात को खूबसूरत बनाने नहीं आता, कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी में भी वही चांद बहुत कुछ कह जाता है। सोचिए ना, अगर महबूब पास ना हो तो चांद उतना ही अच्छा लगेगा क्या? क्या रात उतनी ही पूरी लगेगी? इसीलिए तब दिल करेगा कि आज की इस रात को यहीं रोक लिया जाए। और गुलजार साहब ने इसी एहसास को इतनी खूबसूरती से लिखा है, जहां किसी से कोई शिकायत भी नहीं है लेकिन उसके बिना जिंदगी भी शायद जिंदगी पूरी नहीं। तो अब चांद को जरा शरारत से नहीं, एक ऐसे दिल की नजर से देखिए जिसे किसी की कमी आज भी महसूस हो रही हो।

अभी इस गीत में आपने एक ऐसी रात सुनी जिसे दिल रोक लेना चाहता है, चांद से जैसे एक इल्तिजा सी है कि अभी मत डूबो, ये रात थोड़ी और ठहर जाए। लेकिन गुलजार की दुनिया में चांद सिर्फ रात को रोशन नहीं करता, कभी कभी उसकी चांदनी दिल के भीतर उतर कर उसे बेचैन भी कर देती है। एक गीत में चांद के डूबने को रोक लेने की ख्वाहिश है, और अब उसी चांदनी का असर देखिए, जब वो सामने आती है तो दिल चुप नहीं रहता। चांद वही है, रात वही है, बस एहसास बदल गया है। वहां चांद को रोकने की चाहत थी, यहाँ उसकी चांदनी से बच पाना थोड़ा मुश्किल है। आइए सुनते हैं गुलजार साहब की चांद को एक और रूप में।

चांदनी में। और गुलजार के यहाँ जब चांद दिल तक उतर आए तो बस फिर उसे दूर से नहीं देखा जाता। कभी उसकी चांदनी अंग जला देती है तो कभी वही चांद इतना अपना हो जाता है कि उसे छू लेने, चुन लेने और उसके तारों को चुन लेने का मन करता है। तो आइए अब उसी चांद को एक बार फिर दूसरी नजर से देखते हैं।

गुलजार की दुनिया में चांद कभी ख्वाब बना, कभी याद, कभी तन्हाई, कभी मोहब्बत का बहाना। और आज हमने उसी चांद के कई रंग आपकी ओर अपनी इस शाम में देखे। इसी खूबसूरत एहसास के साथ दीप्ति पाठक निधीश को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहे ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मनीष शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047

0: तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जुड़ जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री सुजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रूपये का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फ्यूल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इनोक्रेसी से बनता है एंड इसके लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन आईसीटी है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब

0: अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्पिनेला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यम।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रूपये पर बंद हुआ।
0: एस्टन फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee.

सर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के प्रोग्राम में गजल सरा है पीनाज मसानी, पेश खिदमत कलाम मिर्ज़ा गालिब का।

आज के एक फनकार प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोमिन खान मोमिन की ये गजल एक मसाफिर गजल चला है पीनाज मस्तानी।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200। इंडिया कोर इंडस्ट्रीज ग्रो बाय 5.4% इन जुलाई दिस ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 3%।
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा। भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई।

0: before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया। सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया। इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले। दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its 4-day losing streak, while Nifty snapped its 7-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in U.S. bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टर्मिनल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की। वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई, जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%, FMCG as well as focus IT gained 1%, and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. The shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined, and 225 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रूपये पर बंद हुआ। डॉक्टर एस के शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
1: अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है। सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसमें जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज है जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हाई स्प्रे में है और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ उसमें भी जो वो बरकरार है। लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रांग रिबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद 6%, 5%, 6% उससे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है और जिसमें जो बायस है अपवर्ड बायस है, जो मार्केट है वो किसी भी अच्छी न्यूज के ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफी प्रभावित करती हैं, जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी नहीं ले पाती है। तो कुल मिला के जो मार्केट्स है वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है। मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ करेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगते हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है। तो एक ये जो 1,500 का जो एक रेंज है निफ्टी में वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए हैं।
1: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चल करके?
2: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है। प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है, एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं, और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं। तो मार्केट की जो कंडीशन है, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं, तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं। तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1500 के निफ्टी का, जो अभी पीछे हम एक डेढ़ साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है, तो एक एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, मार्केट में एक संतुलन बना रहा। जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है उसको लेकर, और नेगेटिव कोई न्यूज आती है तो मार्केट्स वहां पर करेक्शन खा जाती है। तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं कहूंगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड approach.
1: Okay.
0: Dr. Sharma, the rebound that you mentioned is also short covering in the markets after a four-day losing streak. We saw again an uprise in the markets today. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the U.S. treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the U.S. Bond. You have the bill notes and bonds, 1 to 6 months, the short-term treasuries, 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in the bond market in the U.S. having on India and India's stock market? Because the national debt of the U.S. has already crossed $40 trillion. So how do you see the hedge funds looking at India? They're still net sellers, but it has an impact on the way our stock market is moving.
2: Yes, Arjun, because U.S. Market is not that much stable. Extreme volatility is existing because of the dwindling fundamentals. Sometimes the inflation becomes very sticky at the higher level and the growth is decelerating, and bond prices are very, very volatile, and dollar index is also volatile. So the market in U.S. is not taking any strong direction either side. But this volatility in the treasury and rebound because of the announcement that there may be some rise in the interest rate in the coming times, as majority of the people are in favor of increasing the interest rate. So again, the bond yields are becoming strong, and that's why the volatility is observed in the market. So nothing is stable in the U.S. market. Either the fundamentals of the economy, like their manufacturing growth or the employment creation, these things are not stable. These are very volatile month after month. So creating a confusion or uncertainty in the minds of the investors. So that's why no direction is there from the U.S. market, but remains extremely volatile. And going forward, I believe the market mood will remain volatile because there is no discussion on peace between Iran and U.S. and these developments are deepening. That may cause more volatility in the global markets.
0: When we look at the stock market, Sensex went up by 0.82%, and usually we see that the small cap and the mid cap actually go up even more, but they went up only marginally today. What is the mood of the traders right now? Do you see the markets moving similarly tomorrow, or do you expect profit booking after not covering today where the markets went up, but do you see them booking profits tomorrow?
2: Yes, Arjun, majorly traders are in a consolidating mode. They are in the range bound trajectory. They book profit at the higher level and again enter in the market at the lower levels, because market is now providing the clear direction that there is no significant upside beyond 25,000 or 25,400, but and there is no deceleration after the 23,500. So market is in a very secure zone of this 1,000 and 1500 Nifty. So that's why sometimes this can be a balanced approach, that market is not moving either side or upside or downside significantly, but remains in a range. That's why the profit booking happens in the sometimes in the mid small cap, sometimes in the mid cap, sometimes by the FIIs and sometimes by the DIIs. They again enter at some opportune time, and then they book profits at some point of time when they see that profitability is coming in their invested portfolios.
0: Do you think that the fundamentals of India's economy is a factor in this pullback in the markets right now? Because the core industrial data has also come out, which we will be reading about soon for the month of July, where core industry has gone up by 5.4%. Do you see the fundamentals and, of course, the first quarterly earnings of companies also playing a role where investors are not looking really to sell that quickly?
2: Yes, Arjun, I already mentioned that corporate earnings are very supportive and fundamentals are a great support for the stock market behavior. As I mentioned earlier also in my earlier interviews with All India Radio, that markets are in a very strong mood. But the global developments are impacting the sentiments of the markets and undermining the performance of the market. When there is some positive discussion at the global level between US and Iran, markets rebound significantly. So that is the potential of the market, that indicates that if there is peace at the global level, then markets can rebound significantly and make a new high immediately.
0: Yes. In more news, a combined index of core industries, ICI, recorded a cumulative growth of 5.4% year-on-year in July, moderating from 6% growth in the preceding month. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry, growth in the core sector for June was revised upward to 6% from the earlier reported 5%. Among the nine core sectors, iron ore production rose by 29.5%, cement production grew by 13.1%, electricity generation increased by 9%, coal production rose by 7.6%, steel production increased by 2.9%, and refinery products output rose by 2.7% on an annual basis. However, fertilizer production declined by 8%, crude oil production dropped by 5.3%, and natural gas production dipped by 3.7% on a year-on-year basis.
1: जिस तरह की आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आयरन और स्टील की बात करें, सीमेंट बिचे और कोयले के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उर्वरक और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, आपको औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से कैसा दर्शाते हैं और मार्केट की आगे की जो रफ्तार, उस पर क्या असर डालेंगे? ये
2: देखिए, जो स्टील में माइनिंग में जो अच्छी बढ़त आई है, ये सरकार की जो भी पॉलिसीज, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में कहिए, या फिर आप जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंस इन एन एफिशिएंट मैनर उसमें कहिए, तो ये सब चीजों का भी नतीजा है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जो कोर इंफ्रा में, वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गई है और विजिबल हो गई है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से पहले ये काफी ग्रोथ इसमें अंडरमाइंड था, जो कोर इंफ्रा में ग्रोथ बहुत कम आता था, तो अभी ग्रोथ एक लेवल से ऊपर उठा है, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। और कुछ खास करके जो आगे जो हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये वापस अपने पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी में आए हैं। लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं तो ज्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि उसमें वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेंड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें, जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत, अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके हैं, डबल, और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने पीछे 4-5 महीने में बिहेव किया है, तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस है उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव ऑल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉकेड बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन. You need sulfur imports for crude oil. Of course, and natural gas, we rely on the Middle East for crucial imports for our refineries. But the weightage of fertilizer, crude oil, and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel, and refinery products. And all of that has seen a great increase in its output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of coal industries.
2: Yes, Arjun, you are right, because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high, as these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%. Which is a great number in the this volatile global environment.
0: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with coal industries data and IIP, fundamentally the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
2: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals, like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4% and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13%. During the last 4 months, the average is 13%. Last month, in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So, this is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था. जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई. आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा. इस खबर से जुड़े दो सवाल है. पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव काफी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, एक दो महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है, ये काफी कुछ कहता है.
2: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है. जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशन है या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है, तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज. तो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं, या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं, या फिर चाइना में देखते हैं, या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफी लेवल तक अंडरमाइन हुई है. जो मैं समझता हूं कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा, तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्थता है.
0: डॉक्टर शर्मा, दी लुकिंग एट द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान, क्लियरली दे हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट एज अ स्टोरी इज इंडिकेटिंग द एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप, बट द इंपोर्ट्स हैव गॉन अप इवन मोर रिलेटिव टू द एक्सपोर्ट्स. एंड वी टॉक अबाउट द जापानीज yen, it is now climbed back to 158.55 to the US dollar. Earlier it was even weaker, it crossed 160, and then there was a move by the US government to strengthen the yen, because the yen is also used for carry over trade. So what's going on here between the Bank of Japan, the yen, and what the US is doing?
2: Yes, Arjun, Japan Warren is in a major structural mode, structural revival, and growth is also inching up slowly. And going forward, I believe this structural shuffle will benefit the Japanese economy because they are now connecting with the many global markets, and to increase the trade trajectory and to become once again prominent in the global trade. So I think in the coming times that will become visible, and economy will rejuvenate to the next level.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है. उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है. इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा. एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे? क्या असर देखने को मिलेगा? मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
2: देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है. नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा. अभी हम देख ही रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है क्रूड प्राइसेस की वजह से. और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा. पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है. मतलब यूएस भी उसमें शामिल है. यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा. सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा. जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहां पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है.
1: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है.
2: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते. तो मैं समझता हूं कि ऐसी अनाउंसमेंट्स दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजन है लेना चाहिए.
0: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेज रोज ओवर 3% टूडे. ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94.61 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $88.77 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन.
1: चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है. बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है. अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 1,57,080 रूपये प्रति ग्रस दाम पर था और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 2,37,766 रूपये प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया डॉलर का वीकनेस, जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था. और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4,000 का लो स्तर छू के वापिस एक रिबाउंड आया. जो सेंट्रल बैंक से वापिस वो आर इन दी बाइंग स्प्री, तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूं कि बरकरार रह सकती है. और गोल्ड का जो पहले ये 5500 का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, $5500 पर ट्राई ऑन्स, तो अभी 4500 है तो काफी स्कोप है, लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो काफी ऊपर ही।
1: डॉक्टर एस पी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
0: एंड बिफोर वी क्लोज द माइंड ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200, इंडिया स्कोर इंडस्ट्रीज ग्रो बाय 5.4% इन जुलाई दिस ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 3%। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You were listening to
1: it. सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्र। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

Frida Bano Risa Hatun गोकुल चौक गंजला शहर सा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी सविता राधे विद्यार्थी और बुल्की वाली फलना झा किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास आशा देवी और मेघा राशि मोहाली पंजाब से गुरप्रीत टगोरी जसबीर कौर और मैकप्रीत कौर पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया फुलांग निजामबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रूमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर और मोहम्मद फसी कर्नाट गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल शब्बीर बनहट्टी और आसिफ इकबाल आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से गुलाम साबिर राही मेराज जहां और ताज मोहम्मद अंसारी आसल गांव बाजार तहसील जलगांव जामू जिला बुल्डाना महाराज से राघव माठे गजानन माठे और ज्ञानेश्वर माठे टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा अधिकार डब्बाली से बसंत सिंह चंद राजकुमार और कुलदीप गांधी कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में पेइंग गेस्ट फिल्म का नगमा जिसे मौसीकी सजाया है एस डी बर्मन ने सुनने की ख्वाहिशमंद है केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन बिट्टू जैन और संजीव जैन पटाबारा छत्तीसगढ़ से एमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू दामनगांव महाराष्ट्र से समर्थ दादा थेठे पाटिल भगवत देठे पाटिल और लक्ष्मी देठे पाटिल नायवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिदा और अलकमिदा आसी गांव बाजार से करण रंजीत पुनकर जवानिया गादीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल पद्मा टाकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह और कुशल शाह सिद्धि बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर शुभम वडतकर और पूर्ण वडतकर शेरवानी स्कूल डिंडुनवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा कुणाल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी मंडू कटिल्ला दिल्ली से कमल बालूजा मधु बालूजा और सागर बालूजा नागलो दिल्ली से मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा सरवर रोड गिंडुनवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी मोहम्मद करीम अंसारी और शमसुल कमर राही ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शारुनूर अंसारी फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद इदरीसी और ये हैं जनाब पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग अश्वनी चुग और गोविंद चुग आप सबकी पसंद आपकी नजर है

इसी समय को सुनना चाहती थी बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान, और गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला खटक और शंभू दयाल खटक। हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और इमरान खान। और समझ लीजिए, अब सुनिए पतंग फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है चित्रगुप्त ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। जयराज प्लोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट। और जनाब ये हैं मारहरा गेट एटा से नबी हसन अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी और अनम यशफ अब्बासी। संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल्लाक डावर और जियालक डावर। आखिर से सुराज खान और शबाना खान। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री। तालुका निवासा खुपटी महाराज से बंडू लोहार, चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट। नाग मंदिर मैसौर सीतामढ़ी बिहार से इकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और रुबीना वसीम। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबे शेख, शेख रहीमुन्ना। नरेश्वर नगर नरवेल महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी और आशी गोस्वामी। रघुवी नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा।

आपने सुनी मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में साहिर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया खयाम ने, फिल्म है फिर सुबह होगी। सुनना चाहते हैं कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी और फराज, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चनताई गोंडानी और हेरामन शिंडे, गांव लोहगढ़ और ठाकरावाला से श्रवण सिंगिल, रंजीत और गुरनूर सिंह, धनोरा विटाली महाराज से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल, कुछ मिनी रोड क्लब श्रीरामपुर भोकर महाराज से हरिभाव बिड़वे, श्रावण बिड़वे और अनिकित सोनवाड़े, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज की तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, शिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री और मोहम्मद अयुब खत्री, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराज से हेमंत कुमार भारशंकर, श्रीमती प्रिया भारशंकर और कुमारी समीक्षा भारशंकर, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुर से अनंता भगत, अरुणा भगत और सुलोचना भगत, गंगोद्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर किल्लू परवेज और बेगम इमराना नाज, लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक और निम्नी साहू, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से वसंत रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और बेबी अन्विका तनुश्री गुप्ता, गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज और हसन नवाज, बगबड़ू व पाथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, बदलापुर मुंबई से विनोद कुमार वडलकर, छत्तीसगढ़ से सुमित रमेश साहू, अंतरा देवी और नरेंद्र कुमार जाधव, कुमारेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम, संभल से छोटे अंसारी, बिलाम गेट काजगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम और सद्दाम सोनी, और यही जनाब ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और उनके अहले खाना, आप सबकी पसंद आपकी नजर है।

जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक 5 रुकनी आला इख्तियारती तहकीकाती कमेटी एचपीईसी तश्कील दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज अगले अहकाम तक रियासती सरकार से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहान के जरिए की गई तकरीरों और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती को मंसूख करने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन ने इम्तिहान और तकरीरों को मंसूख करने से मुतालिक रियासती सरकार के मंगल के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली 3 अलग अलग अर्जदाश्तों की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत दी है कि मुंतखब उम्मीदवार बहाल रहेंगे। इसने यह भी कहा कि उन्हें फितरे इंसाफ के उसूलों और बाजाबता तरीकेकार पर अमल किए बगैर नहीं हटाया जा सकता। अदालत ने रियासती हुकूमत और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी से जवाब तलब किया है और अगले समाअत के लिए 15 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। 2 अर्जदाश्तों में 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहान और तकरीरों की मनसूखी को चैलेंज किया था, जबकि तीसरी अर्जदाश्त का ताल्लुक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की भर्ती से था। अरबी गुजारों के मुताबिक 11वीं से 13वीं जेपीएससी इम्तिहान के जरिए 342 मुंतखब उम्मीदवार फिलवक्त सर्विस में हैं। रियासती हुकूमत ने इम्तिहान के अमल में मुबैना बेजाबतगियों और टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल के सिलसिले में सीआईडी तहकीकात की बिना पर इम्तिहान और तकरीरों को मनसूख कर दिया था। हुकूमत ने 22 इम्तिहान को मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया था और 6 इम्तिहान को होल्ड पर रखा था। नीज 17 इम्तिहान की तहकीकात करने को कहा था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने इस बरस 31 अक्टूबर तक 10 लाख मैट्रिक टन खाम शक्कर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टरेट जनरल डीजीएफटी ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मखसूस सूरत हाल के पेश नजर टैरिफ की शरह के एक कोटे टीआरक्यू के तहत 10 लाख मैट्रिक टन खाम शक्कर की दरामद की इजाजत होगी। यह कदम त्योहारों के सीजन से पहले सामने आया है, जब शक्कर की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है और घरेलू बाजार में सप्लाई के मुतालिक तशवीश पैदा हो जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्कर बनाने वाला मुल्क है। हुकूमत ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का इजरा किया। यह मास्टर प्लान दिल्ली को आलमी एतबार से मुकाबला जाती माहौलियाती एतबार से मजाहिम और सबकी शमूलियत वाली राजधानी के तौर पर तब्दील करने के सिलसिले में एक तवील मुद्दती मकानी शोर का हामिल इक्तसादी और इदारा जाती खाका मुहैया करता है। यह दिल्ली की फरामा तारीखी और सकाफती विरासत को महफूज रखते हुए इक्तसादी हमाजहती तकनीकी इख्तराआत और तर्ज जिंदगी के आला मेयारात को यकजा करता है। दिल्ली 2047 के लिए मास्टर प्लान विकसित भारत 2047 के तस्वूर से मुताबिकत रखता है, जिसका मकसद कौमी राजधानी को आलमी दर्जे का सबकी शमूलियत वाला और इक्तसादी एतबार से दरख्शां शहर में तब्दील करना है, जिसमें तकरीबन 3,20,00,000 लोग रह सकें। प्लान का इजरा की तकरीब के दौरान मकानात और शहरकारी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बताया कि आने वाले वर्षों में तकरीबन 40,00,000 मुनासिब कीमत पर दस्तियाब मकानात का इजाफा किया जाएगा, जिनमें से एक बड़ी तादाद मेयारी रिहायशी यूनिटों की होगी। उन्होंने बताया कि इसका मकसद शहर के वसी आबादी के रिहायश से मुतालिक मांग को पूरा करना है। अपने मकसद के मुताबिक अगर प्लान पेशरफ्त करता है तो बड़ी तादाद में लोगों को मकानात के नए ऑप्शंस तक रसाई हासिल होंगे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने बताया कि कौमी राजधानी के अवाम इस मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सीनियर लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को आज मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया। 78 साल रहनुमा ने मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में मुनक़िद हुई सदारती इंतखाबात में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने साबिक फौजी अफसर ओली अहमद को शिकस्त दी है। ओली अहमद को बांग्लादेश की जमात इस्लामी और तलबा की क्यादत में मुल्क की पहली सियासी पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी की क्यादत वाली 11 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल थी।

0: के चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: कुछ के चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।

0: सर्विस करने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्म नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सिंगापुर में आज चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भाग लिया। ये सम्मेलन पहली बार 2022 में नई दिल्ली में, दूसरी बार 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बार 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये चौथा गोलमेज सम्मेलन है भारत और सिंगापुर के बीच और इन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करने की ओर इन नियमित मंत्री स्तरीय बैठकों के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, आपसे सर्वप्रथम यही जानना चाहेंगे कि सिंगापुर भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक बायलैटरल पार्टनर है और हमारे संबंध कितने प्रगाढ़ हैं और उस संदर्भ में इस गोलमेज सम्मेलन का क्या महत्व है।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे आपने बताया ये चौथा राउंड टेबल हो रहा है, आज के दिन अभी सम्पन्न हुआ है वहां पर सिंगापुर में। चार मंत्रियों का एक साथ आना और मिलना ये बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बिजी स्केड्यूल होते हैं, बहुत ही उनका जो टाइम टेबल होता है, कार्यक्रम होता है। इन सभी को मिलाकर, सभी को साथ में लाना, चार सिंगापुर के मिनिस्टर, हालांकि हमने देखा जो आज जो सिंगापुर में मुलाकात तो हुई है उसमें करीब 6-7 सिंगापुर के मिनिस्टर शामिल थे
2: जी।
3: और हमारी तरफ से तो जैसे आपने बताया ये चार मंत्री उसमें शामिल थे, तो इससे ये तो पता चलता है जो सिंगापुर अपने भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है। दूसरी बात इसमें यह है जो आसियान के जो 10 देश हैं उन सब में सबसे ज्यादा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग है तो वो हमारा सिंगापुर के साथ है। करीब सिंगापुर भारत का मैं कहूं तो छठा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी राष्ट्र है और करीब हमारा $36 बिलियन उसके साथ द्विपक्षीय एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है। अगर इसको हम देखें इस परिप्रेक्ष्य में जो पिछले सालों में कितना ये और आगे बढ़कर उभरा है, तो मैं ये कहूंगा 2004-2005 में जब हमारे संबंधों को और आगे ले जाने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी तो तब दोनों देशों के बीच का सहयोग था करीब $7 बिलियन। आज वो बढ़कर $36 बिलियन हो गया है। हालांकि इसमें यह भी देखना होगा जो हमारा आयात है सिंगापुर से वो कहीं ज्यादा है, निर्यात हमारा उसका करीब 50% है। करीब $24 बिलियन हम इम्पोर्ट करते हैं और करीब $11-12 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, वहां पर निर्यात है। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है जो इतने छोटा देश है जिसके 6 मिलियन लोग पॉपुलेशन है सिंगापुर की और वो हमारा छठा सबसे बड़ा सहयोगी राष्ट्र है। आखिरी बात सोनू जी मैं इसमें ये कहूंगा जो अगर निवेश के नजरिए से देखा जाए, अगर पिछले साल देखें तो करीब $19.8 बिलियन का निवेश सिंगापुर की तरफ से भारत में आया, वो करीब 1/4 निवेश है जो कि भारत को मिला पूरे विश्व से, तो उसमें 1/4 हिस्सा सिंगापुर का था। अगर आप देखते हैं 2018 से तो सिंगापुर प्रथम श्रेणी पर आता है जहां से निवेश भारत में आया है। और आखिरी बात निवेश के बारे में कहूं, अगर 2000 से लेकर 2026 तक भारत में सिंगापुर से निवेश आया है करीब $200 बिलियन। जितना भी हमारे पास निवेश आया है $800 बिलियन का इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में, तो उसका 1/4 हिस्सा सिंगापुर से आया है। तो इसीलिए व्यापारिक क्षेत्र से, निवेश क्षेत्र से, उसके बाद हम अब आजकल की जो और महत्वपूर्ण जो पहलू है जैसे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, इन सभी क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो चौथा इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल आज हुआ है उसका यही उद्देश्य है इन संबंधों کو اور آگے اونچائی پر ہم اس کو لے کر جا سکیں.
2: سو امبیسڈر سرجن ہاں, جیسے آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈ پارٹنر ہے, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور سارے جو ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹرز ہیں ان پر سہیوگ بڑھانے کی خاص طور سے آج بات ہوئی ہے. جو ہماری کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کے تحت جیسے آپ نے کہا ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ, فن ٹیک, ڈیجیٹلائزیشن, اے آئی گورننس, سائبر سیکورٹی, سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو ہائی ٹیکنالوجی کے سیکٹرز ہیں ان میں ہمارا جو آپسی سہیوگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی, چاہے وہ ہمارا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہو یا ہمارا ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہو, جس میں ہم نے سنگاپور کے پے ناؤ کے ساتھ 3 پہلے ایک سمجھوتا کیا, جو پہلا دیش تھا جس کے ساتھ ہم نے یہ کیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل اور ٹیکنالوجی کے کھیتر میں بہت پرگاڑھ سمبندھ کی پوٹینشیل ہے؟
3: جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے آپ نے ذکر کیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس کی شروعات 3 پہلے ہوئی تھی 2024 میں جب پردھان منتری مودی کا سنگاپور میں یاترا ہوئی تھی, اور پھر پچھلے سال جب وہاں کے پردھان منتری لارنس وانگ بھارت آئے تھے تو انہوں نے یہی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے لے جانے کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا, اور اس میں ہم نے قریب 8 ایسے چتر دھارت کیے تھے, اور اس میں سبھی یہ جو آپ نے بتایا ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے, گرین انرجی ہے, ہیلتھ کیئر, میڈیسن ہے, سسٹینیبلٹی ہے, یہ سبھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور آج کی جو ملاقات ہوئی ہے بھارت کے 4 منتری اور وہاں سے قریب 6-7 منتری سنگاپور سے, تو ان میں اسی کو آگے لے جانے کے لیے بہت مہتوپورن نرنے لیے گئے ہیں. 2 وہاں پر ایم او یو بھی سائن کیے گئے ہیں میریٹائم ہیریٹیج کے اوپر اور فوڈ سیکورٹی کے اوپر, لے کر کیسے ان کو اور آگے بڑھایا جائے. پرنتو میں کہوں گا جو اس میں بات چیت تو ہوتی رہی ہے, پرنتو ایک جو بہت زوردار قدم لیا گیا تھا وہ جب پردھان منتری مودی 2024 میں سنگاپور گئے تھے تو انہوں نے اس سمے شروعات ہوئی تھی جو کیسے ہم اپنے یہاں پر سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کریں, اور وہاں کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے AEM جن کے ساتھ سیمی کنڈکٹر کمپنی, وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا تھا, اس میں ان کے ساتھ سنگاپور کے پردھان منتری لارنس وانگ بھی گئے تھے وہاں پر, اور دونوں دیشوں نے یہی بات کی جو کیسے دونوں دیشوں کے سہیوگ اس کھیتر میں جو اپنا نئے تکنیکی کھیتر ہے, ہائی ٹیک کھیتر ہے, اس میں آگے بڑھایا جائے, کیونکہ ٹریڈیشنل سیکٹرز میں ہمارا سہیوگ اچھا بڑھ رہا ہے, اچھا چل رہا ہے, تیزی سے پرگتی کر رہا ہے, پرنتو اب جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا اے آئی کا زمانہ ہے, ایڈوانس مینوفیکچرنگ, کوانٹم کمپیوٹنگ, روبوٹکس, یہ سب کا زمانہ ہے, اور اس میں سنگاپور نے بہت اچھی مہارت حاصل کی ہے, تو اس کو کیسے آگے لے کر جایا جائے. پچھلے 3 میں ہم نے دیکھا ہے جو کافی پرگتی

0: जब हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आज जो उभर के आया तथ्य कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति दी जाएगी, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट लगता है स्किलिंग, ये जो अब नई उभरती टेक्नोलॉजी है उसमें?
1: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्किल डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र उभर कर आया है और उनके जो लीडर ऑफ द डेलीगेशन, जैसे हमारे यहां से निर्मला सीतारमन जी हमारी डेलीगेशन को लीड कर रही थी और उनकी तरफ से जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गैन किम यांग हैं, उन्होंने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि अगर वहां पर ये एडवांस टेक्नोलॉजी की सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं, तो बहुत सारी सिंगापुर की कंपनीज हैं जिन्होंने वहां पर निवेश किया है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें मैं ये भी बता दूं जो हमारी तरफ से अभी 2 साल पहले हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट इंडिया का ऑफिस खोला है जिससे कि और ज्यादा वहां से निवेश हो सके भारत में, वहां से इन्वेस्टमेंट हो सके और अलग अलग वहां की सिंगापुर की कंपनी भारत में आकर अपने को स्थापित कर सके और दोनों देशों के सहयोग को आगे ले जा सके। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट में ये बिल्कुल जैसे कहा जाए इंडस्ट्री बेस्ड एक एक्टिविटी इनिशिएटिव होगा, जो भी इसमें इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो कंपनीज आ रही हैं, वो अपने लोगों को कैसे स्किल किया जाए उसमें सिंगापुर बहुत हमारी सहायता कर सकता है और कर रहा है। इसको और आगे ले जाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास और चाहे क्षेत्रों में, जैसे आपने बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में हमने बहुत प्रगति की है, परंतु और जो बहुत क्षेत्र हैं जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, एआई है, इसमें हमने अपने को स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हमको जोर देना है, जो कि हम सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और सिंगापुर भी इसमें बहुत ही तत्पर प्रतीत होता है क्योंकि वो भी देख रहा है जो भारत एक सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, हालांकि हमने देखा है विश्व में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव आ रहा है, परंतु फिर भी भारत का जो दर है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है वो काफी मजबूत है। और यह देखते हुए सिंगापुर भी चाहता है जो भारत के साथ सहयोग को और तेज किया जाए और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए।
0: जी बिल्कुल, कुछ आंकड़े हैं कि लगभग 9000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में हैं, 6 हमारे पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स हैं, 10 बैंक हैं और सिंगापुर की भी 4 से 40 ज्यादा कंपनियां भारत में हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं इन्वेस्ट इंडिया को लेकर या स्किलिंग को बढ़ाने के, बायलैटरल ट्रेड आपको लगता है इससे बढ़ेगा, और जो ये आपसी संबंध है, जो प्रेजेंस है सिंगापुर की भारत में, भारत की कंपनियों की सिंगापुर में, इसमें और हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं?
1: जी, मेरे विचार से बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, हमारी करीब 9000 कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इसके अलावा हमारी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंक्स हैं बहुत मात्रा में वहां पर, सिंगापुर के बैंक्स भी यहां पर हैं, जैसे डीबीएस है जो कि वहां का सबसे बड़ा बैंक है, काफी यहां पर भारत में भी विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए और ये जो इन्वेस्ट इंडिया ऑफिस है ये वही है जो इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है परंतु सिंगापुर कंपनीज भी यहां पर हमको लेकर आनी है। और इसीलिए अगर आप देखें जो इसका अनुपात 9000 है भारतीय कंपनी वहां पर और करीब 440 कंपनी है सिंगापुर की जो भारत में है, और भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो यहां पर यकीनन और भी सिंगापुर कंपनी आएंगी तो उनके अपना फायदा होगा और मैं ये कहूंगा जो भारत का भी फायदा होगा, क्योंकि भारत में अगर निवेश होता है, भारत में अगर नई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, न केवल स्टॉक एक्सचेंज में करें, न केवल स्टॉक मार्केट में करें, परंतु वहां पर कोई नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर उसमें निवेश किया जाए तो यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा जो कि हमको चाहिए, और हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। तो इसी क्षेत्र में बात की जा रही है जो वहां से जो स्किल डेवलपमेंट के लिए है और जो सेमी कंडक्टर है और जो नए एडवांस्ड एरियाज हैं मैन्युफैक्चरिंग के, उन सभी में भारत में आया जाए, सिंगापुर कंपनीज को यहां पर लाया जाए। कनेक्टिविटी की एक और बात है, जैसे हम केवल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं, हालांकि फिजिकल कनेक्टिविटी के बारे में भी आज बात हुई, जो कैसे सिविल एविएशन से और ज्यादा फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में हो सकती हैं, परंतु उसके अलावा चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो

0: ऑप्टिकल फाइबर्स हों, इन सब प्रकार की कनेक्टिविटी को दोनों देशों के बीच में और ज्यादा जोड़ना और ज्यादा आगे ले जाना, मेरे विचार से ये दोनों देशों के हित में होगा और इसी के बारे में आज बातचीत हुई है। अगले कुछ सालों में हमें इसके जरूर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन भाई, भारत और सिंगापुर के उभरते द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर हमसे बातचीत करने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत का प्रोग्राम बज़्म-ए-मौसीकी प्रोग्राम में आज सुनिए उस्ताद राशिद खान से राग शाहना में ख्याल।

0: हिरासत होगी। यह कदम त्योहारों के सीजन से पहले सामने आया है, जब शक्कर की मांग आमतौर पर बढ़ जाती है और घरेलू बाजार में सप्लाई के मुतालिक तशवीश पैदा हो जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्कर बनाने वाला मुल्क है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इत्तला दी है कि वजारत ने अपने प्रोडक्शन यूनिटों के जरिए 238 ACAMU रैक्स और मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मुंबई शहरी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल के लिए शुरू किए जाने के ताल्लुक से रोलिंग स्टॉक की बरवक्त दस्तियाबी को यकीनी बनाने में मदद मिले। प्रोडक्शन के इंडक्टिव प्रोग्राम से मालूम होता है कि इंटेग्रल कोच फैक्ट्री के जरिए 120 ACAMU रैक्स और रेल कोचेस फैक्ट्री के जरिए 71 रैक्स नीज मॉडर्न कोच फैक्ट्री के जरिए 47 रैक्स मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। रेलवे की वजारत ने बताया कि मंसूबे के मुताबिक 2027 से सप्लाई शुरू हो जाएगी और मंजूर की गई पूरी तादाद की सप्लाई 2030 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर मकामात पर तलबा के एहतजाज के दौरान पेश आने वाले तशद्दुद के इल्जामात की आजादाना तौर पर जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सबक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की सरबराही में एक 5 रुकनी आला इख्तियाराती तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। नई तरक्यात की मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पटना में फैजयाब होने वालों के लिए तामीर किए गए 2,35,000 मकानात की चाबियां सुपुर्द की। बापू सभागार में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नए मुंतखब शुदा फैजयाब होने वालों को मंजूरी के खतूत भी तकसीम किये। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी, नायब वज़ीर-ए-आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और देही तरक्यात के वजीर श्रावण कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। उधर एक और प्रोग्राम में जरात और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान पटना के बामेती में कृषि जन कल्याण संवाद में भी हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने बताया कि दर्ज फहरिस्त जातों के तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत हकीकी अखराज 2023-24 में तकरीबन 5,475 करोड़ रूपये से बढ़कर 2025-26 में 6,208 करोड़ रूपये हो गए हैं। मरकज के ताउन वाली दर्ज फहरिस्त जातों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम मैट्रिक के बाद और सानवी तालीम के बाद की तालीम हासिल कर रहे अहम तलबा को माली ताउन फराहम करती है। समाजी इंसाफ और बाख्तियारी की वजारत ने इत्तला दी है कि 2021-22 में फायदे की बराह रास्त मुंतकली शुरू होने के बाद से स्कॉलरशिप की रकम का मरकज का हिस्सा फैजयाब होने वालों के आधार से जुड़े बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है। हॉकी में भारतीय खवातीन की टीम ने नीदरलैंड में FIH आलमी कप के पोल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रॉ होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। दोनों ही टीमों ने अपने लिए कई बार मौके बनाए लेकिन वो कोई गोल करने में नाकाम रहे। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज दिल्ली में मुनक्किद हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हम मनसब शिंजिरो कोजामी ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बहरी सलामती को मजबूत बनाने, मेक इन इंडिया के तहत दफाई टेक्नोलॉजी को फरोग देने और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद में इजाफे पर तबादले ख्याल किया गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोलंबिया ने इस महीने की 10 तारीख को आने वाले शदीद जलजले से मुतासर इलाकों के लिए 30 रोजा इकतसादी, समाजी और माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज कर दी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है।
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپرنگ شب کا ایک بجے چاہتا ہے، یہاں ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ صبح 9:30 پر اپنی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔
0: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر۔ پردھان منتری نریندر مودی نے کل نئی دلی میں کیندر سرکار کے سچیووں کے ساتھ تیسری اچ استریہ بیٹھک کی۔ بیٹھک میں دیش کے بنیادی ڈھانچے، سمپرک، سرکشا، ودیش نیتی اور سوشاسن سے جڑے مدوں پر چرچا ہوئی۔ پردھان منتری نے ادھیکاریوں سے دیش کے بھوشیہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دورگامی یوجنا بنانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری وبھاگوں کے بیچ بہتر تال میل ضروری ہے۔ شری مودی نے ڈیٹا کے صحیح استعمال پر زور دیا اور اسے دیش کی مہتوپورن سمپتی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ وبھاگوں کے بیچ سوچنے اور کام کرنے کے طریقے میں سدھار ہونا چاہیے۔ پردھان منتری نے سرکاری وبھاگوں، وشودیالوں اور یوواؤں کے بیچ بہتر سنواد پر زور دیا تاکہ نیتیاں بنانے میں نئے وچار شامل ہو سکیں۔ انہوں نے دیش کے رکشا ادیوگ کو مضبوط بنانے اور اسے ویشوک استر پر آگے بڑھانے پر بھی زور دیا۔ کووڈ مہاماری اور پشچم ایشیا سنکٹ کا ادھارن دیتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ الگ الگ وبھاگوں کے بیچ بہتر تال میل سرکار کی کام کاج کی سنسکرتی کا حصہ بننا چاہیے۔ پردھان منتری نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے بہتر استعمال کی بھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی کے ساتھ مانویہ وشیشجتا اور نگرانی بھی ضروری ہے۔ جاپان کے رکشا منتری شنزیرو کوئیزومی نے کل نئی دلی میں پردھان منتری نریندر مودی سے ملاقات کی۔ بیٹھک میں بھارت اور جاپان کے بیچ رکشا اور سرکشا سہیوگ کو اور مضبوط کرنے پر چرچا ہوئی۔ پردھان منتری نے کہا کہ دونوں دیشوں کی ساجیداری ہند پرشانت کھیتر میں شانتی، استھرتا اور سمردھی کے لیے مہتوپورن ہے۔ پردھان منتری نے رکشا کھیتر میں جاپان کی کمپنیوں اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ مل کر کام کرنے، خاص کر رکشا اپکرنوں کے وکاس اور اتپادن میں سہیوگ بڑھانے کی سمبھاوناؤں پر بھی چرچا کی۔ جاپان کے رکشا منتری نے دونوں دیشوں کے بیچ رکشا سہیوگ میں ہوئی پرگتی کی جانکاری دی اور سمبندھوں کو اور مضبوط کرنے کی پرتیبدھتا دہرائی۔ کیندری منتری منڈل نے لداخ میں جمہو کشمیر اچ نیالیہ کی ایک پیٹھ استھاپت کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ گرہ منتری امیت شاہ نے کل سوشل میڈیا کے مادھیم سے اس کی گھوشنا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس نرنے سے لداخ کے دور دراز کے کھیتر میں رہنے والے ناگرکوں کے لیے نیائے تک پہنچ آسان ہوگی۔ شری شاہ نے کہا کہ سرکار لداخ کے سروانگیڑ وکاس اور سمویدھانک سرکشا اپایوں کو سنشچت کرنے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ ہے۔ सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बनाने पर बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने और देश के छात्रों के लिए नए अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। कार्यक्रम है गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। गोल्डन एरा फिल्म संगीत की बात हो रही है, तो गोल्डन एरा यानी कि जो हर वक्त बिल्कुल चमकता रहे, हर वक्त जो पसंद आए, वही तो गीत है गोल्डन इरा के गीत। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं इस गीत से।

गीत सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ गोल्डन एरा की फिल्म संगीत है। तो फिर शमशाद बेगम हो, लता मंगेशकर हो, तलत महमूद हो, मोहम्मद रफ़ी हो, इन सारे सिंगर ने, चाहे मुकेश हो, इन सारे सिंगरों ने उस ज़माने में इतने खूबसूरत और हिट गीत दिए। सफ़र सभी का चलता रहा, लेकिन लता मंगेशकर का सफ़र काफ़ी आगे तक बढ़ता गया। लेकिन वो ज़माना जब गोल्डन एरा की बात करें, तब लता मंगेशकर से ज़्यादा शमशाद बेगम को लोग सुनते थे। और जब लता की बात आई तो धीरे धीरे उन्होंने अपना सिक्का जमाना शुरू किया, और फिर हम सभी जानते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस ज़माने में जब काम करने का वक्त था, तब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही काम किया, और जिस वक्त उन्हें आराम चाहिए था तब भी उन्होंने काम ही किया। कहते हैं सफ़र में कब कैसे निकल जाएं, कब आगे आ जाएं और कब सफ़र में भागना पड़े, यही लता मंगेशकर के जीवन में था। और कहें तो गीत और गाने जो भी देन है, इसकी शुरुआत उन्हीं गोल्डन एरा से ही हुई थी। जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन सभी ने गीतों के लिए बहुत काम किए, तब जाकर आज हम उन गीतों को समझ पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भूल नहीं सकते।

मैं दिल हूँ एक अरमा भरा। वाकई में क्या शब्द और क्या बोल, या फिर कहें गाने वाले ने इतनी खूबसूरती से उसे गाया। फिर भी कहते हैं कि एक गीत ऐसा भी आया जो अगर मैं उसका नाम ले लूं तो आप यूं ही समझ जाएंगे, लेकिन गीत ये भी गोल्डन एरा की ही है। क्यों याद है हमें? क्योंकि वो समय ही कुछ और था, वो काम करने वाले ही कुछ और थे, जो पूरी तन्मयता से अपनी चीजों को संवारने में लग जाते थे और उसे हिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो आइए इस जाने पहचाने गीत को सुनते हैं।

जहाँ प्यार होता है वहां दर्द भी होता है। प्यार जब झलकता है तो समय का पता नहीं चलता और वो समय भी बीत जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है, लेकिन जब दर्द की बात आती है तो सारा जहां बिल्कुल पराया लगने लगता है, कहीं भी दिल नहीं लगता। और फिर उन दर्द के मारों की अगर बात करें तो वो कैसे जीते हैं, गीत ने बखूबी बताया।

सुनहरे गीत की बात होती है, तब हम वो गीत कैसे भूल सकते हैं जब अपने सनम की तारीफ में बहुत सारे ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो हमें मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ उन गोल्डन एरा में। जी हाँ, उन्हीं गीतों को तो सुनकर हम बड़े हुए, और हमारे पूर्वज भी यूं कहें कि हमारे से पहले जितने भी लोगों ने गीतों को सुनना शुरू किया उन सब के दिलों में यही गीत बसे, और आज हमारे दिलों में भी ऐसा ही गीत चलता रहता है, क्योंकि ये वो गीत हैं जिन्होंने उन गीतों को, जिन्होंने उन शब्दों को, उन धुन को इतना खूबसूरत बना दिया और उसे बना दिया गोल्डन। जी हाँ, उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।

फिल्म संगीत गोल्डन एरा सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब गोल्डन एरा की बात हो रही है तो उन गीतों को ही तो याद करेंगे ना जो उस जमाने में यानी उस गोल्डन पीरियड में। क्यों गोल्डन कहते हैं हम उसे? क्योंकि उस वक्त हर एक चीज बिल्कुल अलग होती थी, बहुत शिद्दत से हर काम किया जाता था, बहुत ध्यान रखकर शब्दों को चुना जाता था, ध्यान रखकर धुन तैयार होती थी और बहुत ही सलीके से, शराफत से गीतों के बोल को आवाजों में पिरो दिया जाता था। वो गीत जहां धुन थोड़ी कम और आवाज बुलंद होती थी, उन गीतों को गोल्डन गीत ही कहते हैं। उन्हीं गीतों का सफर चल रहा है पूजा भारती के साथ। अगला गीत गोल्डन एरा के सुनहरे गीत।

आप सुन रहे हैं गोल्डन एरा फिल्म संगीत की सुनहरे गीत सुनहरे के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि गीतों के सफर में

जो गीत बनते थे वो गीत बहुत सराहे गए और आज भी सराहे जाते हैं। तो जब उन गीतों का सफर शुरू होता था तब बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से काम होता था, क्योंकि उस जमाने में इतना डिजिटल का जमाना नहीं था। कड़ी मेहनत होती थी, कई साल लग जाते थे एक फिल्म को बनने में और फिर उसके गीत को बनाने में कई महीने लग जाते थे, तब जाकर कहीं एक गीत बनकर तैयार होता था। जब इतना मेहनत किसी भी काम में हो जाए तो वो खूबसूरत तो होगा ही।

और फिर जब गोल्डन एरा की बात चल रही है और तलत महमूद के गीत हम सुन रहे हैं, तो फिर शमशाद बेगम क्यों पीछे रहे? क्योंकि वो जमाना ही उन्हीं का था। सुनते हैं शमशाद बेगम के आवाज़ में ये गीत।

और बड़ी बड़ी मुश्किल से याद आया। तो वो शाम भी आती है जब तन्हाई ज्यादा सताती है, उस वक्त अपनी मोहब्बत को याद करते हुए तलत महमूद के स्वर में ये गीत कुछ अलग ही लगता है। आइए सुनते हैं गोल्डन एरा गीत सुनहरे का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और अब घड़ी की सुइयां कह रही है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहिए, तो क्यों न एक आखिरी नगमा आपके लिए छोड़े जाऊं तलत महमूद के स्वर में। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7। 2 बजने को है, आप कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की रिन इवानागा और की नाका निशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीन की जिया यीफेन और झांग शू शियान से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 है। 2:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। आई श्रोताओं, सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मनीष शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिन्हा करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the 3rd high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गजल। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदुनुरे कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आपने सुना भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 होने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चरण्य लक्ष्मी कुमारन का गायन। आपके साथ वलन प्रसंगत किया है जी राघवेंद्र प्रसाद ने और साथ ही आर नारायणन ने। तो लीजिए सुनिए चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे चरण्या लक्ष्मी कुमारन का गायन। आपके साथ वायलिन प्रसंगत किया जी रघुवेंद्र प्रसाद ने और आर नारायणन ने।

यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर में यानी 5:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग

पद्मासन। उसके बाद 15-20 मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम देशभक्ति गीतों का। 5:30 बजे सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाएंगे आम्रपाली का गाया राग ललित। भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का समय रहेगा 6:10। उसके 40 मिनट पर सुनिएगा चिंतन तुलसी के राम। 6:45 पर रामचरित मानस से पाठ सुनिएगा। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 24। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर संगीतिका प्रसारित की जाएगी। आज आप सुनेंगे संजुक्ता मुखर्जी के गाय भजन। 7:30 बजे गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे। 8:45 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा सुनिएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित निर्मला डे अगाया द्रुपद धमार। आप प्रस्तुत करेंगे राग तोड़ी। नमस्कार 15 मिनट पर सुनिएगा गांधी चर्चा। आज वार्ता का विषय रहेगा प्रसिद्ध महिला गांधीवादी विचारक और उनका योगदान। वार्ताकार होंगी रीमा यादव। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक प्रसारित की जाएगी 9:30 पर। आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी रविंदर कौर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा 10:10 पर। सुनिएगा कार्यक्रम सबरस सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुल लोत्सव जी महाराज का गाया राग गुजरी तोड़ी। 12:10 पर सुनिएगा घर आंगन ये महिला कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक कदम बुजुर्गों की ओर। प्रस्तुत करेंगे सिमरन कौर। 1:10 पर सुनिएगा एक ही फिल्म से और आज की फिल्म होगी काला पानी। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 बजने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार।

मत सज्जय कंतना आवई एव विरथा जाए राग सूही की वार पौड़ी नावी

चरण लगे बचे अनहद तूबे। बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लईते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो समराओ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निदया वैताय। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान तर के बोलो जीवा हे गुरु।

दान रहत दान बबेक दान विसाहु दान प्रुसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया चंडे बंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जीवा गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा पवाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ